0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC, साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है
4: हो भी क्यों ना भाभी राज कलेक्शन ने जो सजाया है आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद
6: ब्रदर्स फॉर लाइफ मिक्का सिंह

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: लेकिन खाटू वाले की सबसे बड़ी खासियत सबको खुश रखने वाले का,
1: खुश रखने वाले का।
0: सारी दुनिया दावा करती है कि बाबा हमारा है, फ्लाइट से आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है, पेट पलनिया आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है। लेकिन बाबा की खासियत देखो, कोई खाटू आकर बोले ना बोले कि बाबा हमारा है, लेकिन बाबा शाम पूरी दुनिया का आज हो रखा है। बाबा बोलता है तू मेरा।

विश्व की सबसे सुंदर आवाज मैं कहूंगा। हम उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहे हैं। मेरे बाद वो आएंगे। कोई वक्त होता था आज से 22 साल पहले जब मैं भी वहां खड़ा होकर देखता था कि इस सूरज को कब नजर से देखूंगा। यह उसी की कृपा है कि उस सूरज के साथ खड़ा हूं। यह उसकी कृपा के बगैर नहीं होता।

मुरली। अभी रोहतक गया मैं कीर्तन के लिए, तो वहां एक भाई मिले, बोले मेरे को एक बुजुर्ग माताजी मिली। मैंने उसको पूछा, माताजी कहां जा रहे हो? बोली मैं वहां जा रही हूं जिसके भजन कन्हैया मित्तल गाता है। तो मैंने शब्द बदल दिए, कन्हैया।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
4: नमस्कार श्रोताओं आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पहला सामुदायिक रेडियो और इस रेडियो पर पहला प्रोग्राम जो चल रहा है आपकी सुबह को एनर्जेटिक बनाने वाला जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग और इस प्रोग्राम में आज मैं हूँ आपका दोस्त आनंद और आज हमारे साथ हैं रीना तो रीना आपका स्वागत है कैसी हैं आप इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगे गुड मॉर्निंग
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ तुम बताओ तुम कैसे हो
4: बहुत अच्छा हूँ और आज सुबह सुबह उठने में ठंड लगी या नहीं आपको
5: नहीं नहीं यार मेरे को सुबह उठने में ना सच बताऊं जिंदगी का काम बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठना
4: मुझे भी लगता है यार लेकिन फिलहाल आज का विचार कहता है कि मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा
5: बिल्कुल
4: तो देखिए हर चीज हमारे मन से हो जरूरी नहीं है जब हमारे मन से नहीं होती है तो वो ऊपर वाले के मन से होती है यानी कि उस परमपिता परमात्मा के मन से होती है और जब उसके मन का होता है तो सब कुछ अच्छा होता है जी हाँ तो चलिए श्रोताओं आज का हम आपका वार्म वेलकम करते हुए स्वागत करेंगे आज प्रोग्राम में बहुत सारी खास बातचीत आपको बतानी है तमाम जानकारियां हैं जो हमारे आसपास के लोगों के डेली रूटीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलने वाली है और कहीं ना कहीं आपके काम में भी आने वाली है तो मैं और रीना तमाम सारी जानकारियों के साथ आपके रेडियो पर हमने दस्तक दे दी है आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं हमें संदेश पहुंचाकर दोस्तों 9837896896 श्रोताओं एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतजार कर रहा है इस गाने के बाद मैं और रीना पुनः लौटेंगे आपसे और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे तो आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6

0: चैन तो हमें भी मिल जाता है श्रोताओं जब हम आपसे बातचीत करने आते हैं, क्यों रीना? मैं रीना को भी लेकर आ गया हूँ सुबह सुबह। आज आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों बिंदास मॉर्निंग में हम बातें कर रहे थे अभी आज 1 मार्च को क्या स्पेशल, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठंड है ना इसका असर भी अभी देखने को मिल रहा है। देखो भाई मार्च शुरू हो गया लेकिन ठंड फिर भी जो है लगातार जारी है।
1: बिल्कुल, जब आनंद ने मेरे को कॉल किया कि रीना तुम्हें शो में आना है भैया, मतलब आने से पहले ना 10 बार तो मैंने सोचा मैंने कि जाऊं ना जाऊं, कंबल से बाहर निकालो तो पैर तो ठंड लगने लग जाती है।
0: और सुबह सुबह तो यार बहुत मुश्किल होता है, मतलब रेडियो आना शो करना, लेकिन वो ये ना जब श्रोताओं से प्यार होता है तो आना ही
1: मजा आ जाता है,
0: मजा ही आ जाता है। लेकिन आजकल ना हमारे आसपास में ये लाइट की समस्या बड़ी हो रही है रीना,
1: मतलब ये तो
0: मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रात में जब ये लाइट चली जाती है ना, तो हालांकि मच्छर भी जो है अभी आने शुरू हो गए हैं,
1: ऊपर से हमें कुछ दिखता नहीं है भैया, किचन में जाए तो चले जाते बाथरूम में,
0: वो बात अलग है कि तुम्हें उसके लिए हमेशा लाइट का सहारा लेना पड़ता है। सो दोस्तों ये तो मस्ती मजाक है, फिलहाल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। सुबह सुबह मुझे लगता है कि हर इंसान को ना एक अच्छे रूटीन की जरूरत होती है, एक अच्छे लाइफस्टाइल की जरूरत होती है, क्यों रीना?
1: बिल्कुल।
0: तुम अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हो रीना?
1: जब भी मैं उठती हूँ गर्म पानी पीती हूँ सबसे पहले, फिर चने में रात को जो भिगो कर रखती हूँ उसको खाती हूँ, और उसके बाद मैं जस्ट 1-2 घंटे बाद फिर मैं जूस पीती हूँ।
0: अच्छा, मतलब तुम इस तरीके से अपनी सुबह की शुरुआत करती हो।
1: हाँ।
0: तो दोस्तों ये तो थी रीना की दिन की शुरुआत। अगर मैं बात करूं अपने आसपास के लोगों की, अगर आसपास की महिलाओं की या पुरुषों की या उन छोटे बच्चों की जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, या वो बुजुर्ग जो घर में हैं और अपना मतलब जो है ख्याल तो रखते ही है, लेकिन अपने दिन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो हर किसी का तरीका बहुत अलग होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अलग।
0: तो आप लोग अपने दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं? आप योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं? कैसे अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं आप जरा हमें फोन करिएगा 9837896896, यानी कि 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग, आरजे रीना और आरजे आनंद आपके साथ इस प्रोग्राम में बने हुए हैं। कुछ संदेश आ गए हैं, जैसे हमारे पास शुरभी का मैसेज आया है, ये लिखती है सर आज तो खासी ठंड है लेकिन आप दोनों को सुन के बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है रीना, मुझे तो अच्छा लगा इनका मैसेज।
1: और ये गर्मा गर्म चाय भी पी रही है, अदरक वाली देख नहीं रही और भेज रही है।
0: देखो आप गलत कर रही है शुरभी जी, मैं बताऊं तो हमें भी भेजो इस तरह की चाय बनाकर।
1: बिल्कुल, हमें भी ठंड लग रही है, मजा आएगा थोड़ा चाय पीते पीते शो करेंगे तो।
0: चलो एक काम करते हैं, अब एक कार्यक्रम में गीत सुनते हैं और अब लौट कर आते हैं थोड़ी देर में, तो तब तक आप हमें फोन करते रहिए 9837896896। बताइए आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम आएंगे, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद,
1: रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे।
0: क्या बात,

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। एफएम मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम में आनंद आपके साथ है, रीना भी मेरा साथ दे रही है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने म्यूजिकल ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात की थी कि सुबह की अपनी शुरुआत आप कैसे करते हैं, अपने दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं, आप हमें फोन करके बता सकते हैं। और यही बताने के लिए एक बड़े प्यारे श्रोता का फोन आया है हमें, कहाँ से कौन जुड़े हैं आइए जरा इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सर।
1: नमस्कार आनंद जी, मैं बोल रहा हूँ प्रणव लाजपत नगर से।
0: जी लाजपत नगर से प्रणव जी जुड़े हैं सुबह सुबह। सर स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं, पहले बताइए कैसे हालचाल है।
1: हालचाल बहुत बढ़िया है आनंद जी। और आनंद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं रेडियो पे,
0: जी,
1: मतलब एक तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुरादाबाद का ये पहला रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जो इतनी सारी बातों से हम लोगों को आप बताते हैं हमारे शहर में क्या चल रहा है। कभी कभी होता है ना, कभी हमें नहीं रहता तो सुन लेते हैं, हम ट्यून अप कर लेते हैं सुबह सुबह, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे शहर में क्या चल रहा है, मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसके लिए तो आपको और आपकी टीम को मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। जी बताएं अखिल जी, क्या करते हैं वैसे आप असल जिंदगी में?
1: असल जिंदगी में मैं जरा अभी जॉब करता हूँ।
0: अच्छा, मैं जरा अभी जॉब करता हूँ, ये जरा समझ में नहीं आया बीच में क्यों आ गया।
1: इसका ये रहता है ना, क्योंकि मन करता कि अब इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी में जाके
0: समझ सकते हैं। वो देखिए, जब इंसान धरती पर आता है तो उसकी इच्छाएं और उसकी जो अंदर की चीजें वो बदलती रहती है समय समय पर, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बस जॉब जो है आज का जगह जरा जरा सी चलती रहती है।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी है साहब। अच्छा तो अखिल जी बताइए, आप अपने सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, जैसे कि हम पूछ रहे हैं आज अपने श्रोताओं से।
1: सुबह की शुरुआत तो सबसे पहले जो है हमारी बैग टी से होती है।
0: जी,
1: जब एक बैग टी आ जाती है, गरम गरम प्याली सी चाय आ जाती है, और आपके शो से होती है सच में तो।
0: अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और विद आनंद के साथ, और उसके साथ चाय, गरम गरम चाय।
0: क्या बात है, चाय से आप सुबह की शुरुआत करते हैं। और कई लोग जैसे हमें कहते हैं कि सुबह सुबह फ्रूट्स खाने चाहिए, सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, और हेल्दी ब्रेकफास्ट को शामिल करना चाहिए सुबह सुबह अपने रूटीन में।
1: ये भी मैंने किया है और मैंने करके भी देखा है, और होना भी चाहिए। एक्चुअल में होता है कि आपके पास फ्रेश फ्रूट्स हो, सब कुछ आपके पास स्टार्टिंग में, अगर मॉर्निंग आपकी फ्रेश फ्रूट्स हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और बस ये है, चाय हमारी रेगुलर उसमें आ गई, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अभी ये हैबिट्स चेंज होंगी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और अखिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखिए, चाय बिल्कुल आप पीजिए, बहुत जरूरी है। सुबह सुबह चाय की तलब तो हर हिंदुस्तानी को होती है सुबह उठते ही, है ना? लेकिन उसके
1: आनंद जी, मेरा नाम प्रणव है। प्रणव
0: जी, जी जी प्रणव जी, माफी चाहूंगा। मैं बस यही कहना, आपसे पहले हमारे जो कॉलर जुड़े थे उनका नाम था, इसीलिए वो दिमाग में आ गया। सी, मैं कहना चाह रहा था आपसे प्रणव जी कि देखिए क्या है ना, कि सुबह सुबह एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है खान पान के साथ साथ।
1: हाँ, एक्सरसाइज तो है, मैं ये थोड़ा सा मिस तो करता ही हूँ कि एक्सरसाइज एक्चुअली क्या है, अगर एक्सरसाइज रहता है तो पूरे दिन आपका फ्रेश रहता है, थोड़ा सा आप पूरे एक्टिव जोन में भी रहते हैं। एक्सरसाइज तो मैं मतलब करता हूँ रेगुलर, उसमें मतलब वैसे तो नहीं कह सकता कि जिम ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि अब इस समय मेरे पास टाइम नहीं रहता सुबह सुबह जिम का,
0: भाग दौड़ वाला समय रहता है मतलब काफी।
1: तो मैं ये है कि सुबह सुबह अपना, हाँ, जब अपने बेड से उठा, थोड़ा सा एक्सरसाइज हुई, थोड़ी सी वॉक भी करके आता हूँ, क्योंकि कॉलोनी में वॉक से ये भी पता चलता रहता है कि क्या एक्टिविटी चल रही है आपकी। तो ये करके उसके बाद अपने एक्सरसाइज करके, और फिर अपना एक चाय और आपका शो, और उसके बाद फटाफट तैयार हो जाए भैया, काम पे निकल।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया प्रणव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहाँ से फोन किया था मुरादाबाद में?
1: लाजपत
0: नगर से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे, आपने फोन किया, ख्याल रखिए अपना और ध्यान रखिए, और रेडियो सुनते रहिए साहब।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जुड़े थे हमारे साथ प्रणव जी लाजपत नगर से, इन्होंने बताया ये तो अपनी सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म एक कप कड़क चाय से करते हैं। बाकी श्रोताओं आप भी बता सकते हैं, दीदी जी आप भी बता सकती हैं, आप सुन रही हैं आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज हम बात कर रहे हैं अपने श्रोताओं से आज की सुबह की, आप बताइए आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। ये रीना अभी तक नहीं स्टूडियो में आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी अपनी सुबह की शुरुआत करने गई हो, कभी ब्लैक कॉफी बनाने गई हो। चलिए मैं उसको ढूंढ कर लेकर आता हूँ, कुछ शॉर्ट एड ब्रेक आएंगे, उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, उसको सुनेंगे आप, और हमारी आपकी मुलाकात होगी जरा सी देर में। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

इस खूबसूरत सी गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, मुझे तो लगता है कि रीमा वाकई में गायब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ प्यारे प्यारे संदेश पहुंचे हैं। सबसे पहले एफएम मुरादाबाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इस खूबसूरत सी सुबह में। और मेरे पास संदेश पहुंचा है यहाँ पर निधि जी का, ये मुझे लिखती है आनंद जी, सुप्रभात, और सुबह सुबह आपका कार्यक्रम सुन के बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ एक गिलास गर्म पानी से, और ये गर्म पानी जो है मेरी स्किन के लिए और मेरे बालों के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा है और सभी को पीना चाहिए। और मैं योगा भी करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ, और आनंद जी आपके प्रोग्राम के माध्यम से हमें तमाम सारी जानकारियां भी मिलती हैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसी बीच हमारे पास मनोज पाल जी का भी संदेश आया है, इन्होंने लिखा है आनंद जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आपका कार्यक्रम हमें काफी अच्छा लगता है और हम अपनी सुबह की शुरुआत आपके रेडियो से करते हैं। अरे भैया, हमने पूछा था मतलब कैसे करते हैं, मतलब खाने पीने से रिलेटेड बातें हो रही थी यार। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हमारा रेडियो सुनते हैं और उससे अपनी दिन की जो है शुरुआत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, बात कर लेते हैं अपनी महिलाओं से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। तो बहुत जरूरी है उनके अधिकारों को पहचानना, उनके राइट्स को पहचानना। तो देखिए, अब जो है जमाना, महिलाओं अब जितनी भी लेडीज हैं मुझे सुन रही हैं सुबह सुबह, उन सभी से कहना चाहते हैं जमाना बहुत आगे हो गया है। अगर अभी तक आप डिजिटली एक्टिव नहीं है, अगर आप अभी तक ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती है, तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि आप बहुत पीछे हैं। तो देखिए, ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अकाउंट्स बनाने हैं आपको ऑनलाइन। आपको अपने फोन पे जो भी आप डाउनलोड करती हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए और उसके बाद सीधा आप भी डिजिटल हो जाइए। आजकल तो खैर तमाम सारे वीडियोज और तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके फोन पर ही मिल जाती है, तो जरा डिजिटली हो जाइए, ये सब चीजों में जुड़ना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है। जितनी भी महिलाएं हमें सुन रही हैं इस प्रोग्राम में, उनसे यही कहना चाहते हैं कि भाई साहब, आप जो है चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको राइट है सही समय पे सही चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और समय के साथ मिलकर जो है कंधे से कंधा मिलाकर कदम को चलाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मुझे जो है घड़ी की सुइयां और ज्यादा वैसे खैर इजाजत नहीं दे रही हैं कि मैं आपसे और ज्यादा बातचीत करूं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि अगला प्रोग्राम भी तो आपके लिए आने वाला है। अगला प्रोग्राम यानी कि अगला कार्यक्रम लेकर अगली आरजे प्रस्तुत होंगी आपके बीच में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कल सुबह सवेरे फिर जुड़िएगा मेरे साथ इसी प्रोग्राम में, जहां कुछ नई बातें होंगी, कुछ नई चर्चा होगी और कुछ नई खबरें होंगी। अभी के लिए आरजे आपसे लेता है जाने की इजाजत। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, कल का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, कल का प्रोग्राम बहुत खास होगा। क्यों, इसके विषय में अगर आपको जानना है तो आप स्टे ट्यून रहना पड़ा एफएम मुरादाबाद 89.6 FM पर, यानी कि आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। चलिए श्रोताओं, अभी मैं लेता हूं आपसे जाने की अनुमति। नमस्कार, गुड डे, बाय।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पहला सामुदायिक रेडियो। और इस रेडियो पर पहला प्रोग्राम जो चल रहा है आपकी सुबह को एनर्जेटिक बनाने वाला, जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। और इस प्रोग्राम में आज मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और आज हमारे साथ हैं रीना। तो रीना, आपका स्वागत है, कैसी हैं आप इस प्रोग्राम में? आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगी। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूं, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: बहुत अच्छा हूं। और आज सुबह सुबह उठने में ठंड लगी या नहीं आपको?
1: नहीं नहीं यार, मेरे को सुबह उठने में ना, सच बताऊँ, जिंदगी का काम बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठना।
0: मुझे भी लगता है यार, लेकिन फिलहाल आज का विचार कहता है कि मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा।
1: बिल्कुल।
0: तो देखिए, हर चीज हमारे मन से हो जरूरी नहीं है। जब हमारे मन से नहीं होती है तो वो ऊपर वाले के मन से होती है, यानी कि उस परमपिता परमात्मा के मन से होती है। और जब उसके मन का होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। जी हाँ। तो चलिए श्रोताओं, आज का हम आपका वार्म वेलकम करते हुए स्वागत करेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत सारी खास बातचीत आपको बतानी है। तमाम जानकारियां हैं जो हमारे आसपास के लोगों के डेली रूटीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके काम में भी आने वाली है। तो मैं और रीना तमाम सारी जानकारियों के साथ आपके रेडियो पर हमने दस्तक दे दी है। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं हमें संदेश पहुंचाकर, दोस्तों 9837896896। चलिए श्रोताओं, एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतजार कर रहा है। इस गाने के बाद मैं और रीना पुनः लौटेंगे, आपसे और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

दोस्तों कहते हैं सफलता की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब उमड़ता है जीतने के बाद। और अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो आपके अंदर पैशन है कि आप अपनी सफलता की इस जंग को अकेले लड़ सकते हैं और अकेले आप जो है अपनी सक्सेस का परचम लहरा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर ऐसी थॉट आप रखते हैं तो आपका स्वागत है आज की सुबह में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 10:18 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। संडे का दिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 जुलाई का दिन है, मौसम बहुत ही औसम है और इस औसम वाले मौसम में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने देसी रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 MHz पे आरजे आनंद के साथ। श्रोताओं आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, ढेर सारे अपने प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं 9837896896 इस माध्यम के जरिए। प्रोग्राम की अभी शुरुआत हुई है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको पता लगेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ट्यून इन रहिएगा आरजे आनंद के साथ। एक अच्छे से गाने के साथ हमने कर ली है यहाँ पर शुरुआत, वो अच्छा सा गाना बिल्कुल आपके लिए निकलेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। लेकिन उससे पहले आपको मुझे मैसेज करना है 9837896896 पे, व्हाट्सएप करके मुझे बताएं। आज संडे का दिन है, सबसे पहले तो अपने हेलो हालचाल वाले मैसेज करो यार, अपने हेलो हाय के प्यारे प्यारे मैसेज पहुंचाओ, मैं लौट कर आता हूं, तब तक आपके मैसेज आ जाने चाहिए। एक ब्यूटीफुल ट्रैक जिसके साथ करेंगे अभी हम अपने शो का आगाज, एक बहुत ही प्यारा गाना है। इस गाने के बाद हम लौट कर आएंगे तो आपसे और ढेर सारी बातचीत करेंगे आज की सुबह।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
4: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

संडे की सुबह आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। क्या बात है यार, बहुत ही बेहतरीन तारीख है, बहुत ही प्यारा दिन है और बहुत ही खूबसूरत गानों का आलम है। लगातार ये गाने आप तक पहुंचते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप कर रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आपके संदेशों के लिए। आज संडे है, हम आपके साथ स्टूडियो में हैं, ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आज 5 जुलाई का दिन है, रविवार का दिन है, मौसम बहुत औसम है। फिलहाल अगर बात करें आज के वेदर की, तो आज बारिश जो है दिखा रहा है मुझे यहाँ पर, 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आज हवाएं 6 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है। ह्यूमिडिटी ठीक ठाक रहने वाली है। एयर क्वालिटी थोड़ी सी जो है बेटर है, थोड़ी सी मतलब बेटर है, मतलब बेटर है ना। विजिबिलिटी ओके है। टेम्परेचर 37 डिग्री पहुंच सकता है। तो यानी कि आज का जो मौसम है वो कुल मिला के थोड़ा सा ताजा तरीन और कूल और बेहतरीन रहने वाला है। हमारे पास ढेर सारे मैसेज पहुंचे हैं। शालू जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद भैया, आप कैसे हैं? संडे को आपको सुनना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच शालू जी। ये लिखते हैं, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकता है, बस उसकी सोच अगर पॉजिटिव है तो सब कुछ वो पा सकता है। ट्रू, बिल्कुल सही कहा। एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है दीपक जी का, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। दीपक जी मुझे मैसेज करते हैं इस वक्त कांट रोड से और लिखते हैं, आनंद जी सुबह सुबह संडे में आपको सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू सो मच। कोई भी एक पंजाबी गाना आप प्लीज प्ले करिएगा, आई एम श्योर की जो अगला गाना है वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। एक मैसेज मेरे पास हो रहा है, गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हाल चाल है? दिस इज मी प्रियांशी। गुड मॉर्निंग प्रियांशी, थैंक यू सो मच आपने मुझे मैसेज किया। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। रणवीर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? और सुबह चाय ना मिले तो चलेगा, मगर अगर नाश्ता नहीं मिले तो हम रह नहीं पाते हैं। और चाय और नाश्ता मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आनंद जी, सबसे पहली गुड मॉर्निंग आपकी श्रोताओं को मेरी ओर से, थैंक यू वेरी मच साहब। और गुलाम जलानी पाशा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ आज की मॉर्निंग, एंड और भी ढेर सारे श्रोता हैं जो लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए, थैंक यू सो मच। चलो जी एक काम करते हैं, अभी जो आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो ये उसके लिए थैंक यू। कुछ अच्छे गाने आप ही की पसंद के हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। और एक ये किसी का वॉइस नोट भी मेरे पास आया है, जरा ये भी सुनते हैं, कौन है ये, क्या मैसेज कर रहे हैं आज की सुबह। ये काठमांडू से मैसेज कर रहे हैं हमारे प्रिय मित्र गणेश प्रसाद हुजदार, और इनका हमेशा बहुत ही अच्छा जो मैसेज है वो मिलता रहता है हमें। कुछ तो इन्होंने पहुंचाया है, तो अगर प्ले हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, बट आई थिंक नेटवर्क इशू, अनफॉर्चुनेटली प्ले नहीं हो पा रहा इनका वॉइस नोट। मैं ट्राई करूंगा जरूर, अगर चल जाए तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इन्होंने अपनी जो है कुछ प्यारी प्यारी थॉट भेजी होंगी आई एम श्योर। चलिए मैं डेफिनेटली अभी आऊंगा तो जरूर मैं प्ले करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल एक काम करते हैं, एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद जल्दी से लौट कर आएंगे। 10:34 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ब्यूटीफुल ट्रैक निकाल दिया है मैंने आज की सुबह, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे मैं और आप। संडे की सुबह है, वेरी गुड मॉर्निंग, इंतजार कर रहे हैं हम आपके मैसेजेस का।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: क्या बात है यार, एक बढ़िया वाला गाना। ये जो गाना मैंने बजाया ना, ये किसी की रिक्वेस्ट नहीं थी, लेकिन बस मुझे एक मैसेज आया था कि कोई पंजाबी गाना प्ले कर दो, तो मैंने इस गाने को प्ले कर दिया आज की सुबह। गुड मॉर्निंग है, 10:44 का समय हो रहा है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। यह है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आपने ट्यून इन किया है आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। हर साल, मतलब मैं आपको बताता हूँ, हर साल जो है ना 5 जुलाई को बहुत सारे स्पेशल दिवस आते हैं, लेकिन जुलाई के पहले संडे को हर बार जो है वर्ल्ड बिरयानी डे मनाया जाता है। तो आज जो बिरयानी लवर है ना मेरी तरह, जो प्योर हार्डकोर वेज वाले बिरयानी बॉय हैं उनको, और या जो भी बॉय गर्ल एवरीबडी जो भी बिरयानी खाते हैं, बट आई एम प्योर वेज वाला बॉय, तो मुझे तो वेज बिरयानी पसंद है, लेकिन आप जो भी बिरयानी खाते हैं बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अपने अपने टेस्ट होता है, अपना अपना फेवरेट होता है। एंड आज वर्ल्ड बिरयानी डे है, तो आपको भैया बहुत बहुत बधाई है वर्ल्ड बिरयानी डे की। तमाम जो लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद आप में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज वर्ल्ड बिरयानी डे है। क्या क्या, बिल्कुल हाँ, जी हाँ, जुलाई के पहले रविवार को जो है हर साल वर्ल्ड बिरयानी डे मनाया जाता है। अब ये देखो, मुरादाबाद में हम हैं, है ना, चाहे हैदराबाद की बिरयानी हो या मुरादाबाद की बिरयानी हो, बिरयानी इज ऑल्सो बिरयानी एंड दिस इज वेरी पॉपुलर बिरयानी, है ना। तो आज की मेरी जो है ना भाई साहब, यहाँ पर वाइफ फुल ऑन सेट होने वाली है। कौन कौन है जो बिरयानी लवर है, आप कौन सी वाली बिरयानी पसंद करते हैं, वेज वाली या नॉन वेज वाली? मुरादाबाद में कहाँ अच्छी वेज बिरयानी मिलती है, स्पेशली अगर मैं वेज बिरयानी की बात करूँ तो वो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा, क्योंकि आज वर्ल्ड बिरयानी डे के मौके पे सोच रहे हैं कुछ बिरयानी को फीचर्स करें अपने इस शो में। एंड आज वर्ल्ड बिरयानी डे है, तो कितने लोग हैं जो बिरयानी खाने के शौकीन है, पहले तो वो लाइन पे आ जाओ भाई, फटाफट से मैसेज करो और मुझे बताओ मुरादाबाद में कहाँ कहाँ पर बढ़िया और एकदम लजीज बिरयानी मिलती है, वेज वाली बताना यार। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, बहुत सारे लोग जो है घर पे बिरयानी बनाने का प्लान करने वाले हैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आप घर पे बना रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। तो भैया देखिए, खुशबूदार मसालों से और लजीज स्वाद जो होता है ना, लजीज वाला टेस्ट, उसके स्वाद से बनाए, खास उत्सव का दिन है आज, यानी कि विश्व बिरयानी दिवस। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बिरयानी डे। आज का दिन बहुत ही स्पेशल, तो जो लोग मेरी तरह, मैं फिर से बोलूंगा, प्योर वाले वेज वाले बंदे हैं, तो वो मुझे बताओ आप लोग कहाँ जाते हो बिरयानी खाने की, जब आपको क्रेविंग होती है मुरादाबाद में कहाँ पर अच्छी बिरयानी मिलती है, जरूर डेफिनेटली व्हाट्सएप करके बताइएगा मुझे। इंतजार रहेगा हमें आपके मैसेजेस का। फिलहाल मेरे पास मैसेज आया है विकी जी का, लिखते हैं, हेलो एफएम मुरादाबाद के आरजे आनंद, कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आपका दोस्त विकी सागर मेरे साथ जुड़ गए हैं, थैंक यू विकी भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आज की सुबह मेरे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर प्रतीक का, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए और हमें सभी को बताने के लिए कि आज वर्ल्ड बिरयानी डे है, हमें नहीं पता था। ऑल राइट ब्रो, दिस इज माई ड्यूटी, ये मेरा फर्ज है। और कहाँ कहाँ पर बिरयानी फेवरेट होती है डेफिनेटली बताऊंगा, कहाँ की बिरयानी बहुत पॉपुलर है, कुछ बिरयानी पे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। और आज बिरयानी डे पे हम मुरादाबादीज हैं, तो मुरादाबाद की बिरयानी भी अपने आप में बहुत सॉलिड है। तो आपसे मैं वही पूछ रहा हूँ, आप बिरयानी खाने के लिए कहाँ जाते हैं मुरादाबाद में, आपके हिसाब से कहाँ पर बेस्ट बिरयानी मिलती है, डेफिनेटली आप बताइएगा मुझे मैसेज करके। एंड एक मैसेज हमारे पास पहुँचा है, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है? रेडियो वाले आनंद जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाने बहुत ही अच्छे प्ले करते हैं आप, और जब आप आते हैं तो हमारा जो है दिन बन जाता है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेज के लिए। सोनू कुमार सेक्टर 10 बुद्धि विहार से जुड़े हैं आज की सुबह। रामपुर से हमारे साथ शबनम जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? साथ में ये लिखती हैं राहत अली, नेहा, लाइबा, काजमी, गुड मॉर्निंग आनंद भाई, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। और इन्होंने एक बहुत ही अल्टीमेट गाने की रिक्वेस्ट डाली है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग सॉन्ग, बहुत ही पुराना है बट मज़ेदार गाना है, इसको सुनते हैं भैया हम जरा सी देर में। बट उससे पहले आज वर्ल्ड बिरयानी डे पे हम आपसे पूछ रहे हैं मुरादाबाद में कहाँ पर बढ़िया बिरयानी है जो आपको लगता है कि यहाँ मिलती है, आप जा सकते हो डेफिनेटली। या आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हो, जरूरी नहीं आप मुरादाबाद में मुझे सुन रहे हो, आप जहां भी सुन रहे हो आप मुझे बताओ आप बिरयानी आपको क्यों पसंद है, आप कौन सी वाली बिरयानी लवर हो, आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करके बताइएगा। फिलहाल ये गाना सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक निकल गया है ये आप ही में से किसी की रिक्वेस्ट पर। ऑफ कोर्स बरसात वाली फील आपको आ रही है, बहुत ही अच्छा सा म्यूजिक, काफी नॉस्टैल्जिया म्यूजिक है। क्या बात है, चलिए और क्या कुछ खास आज सेलिब्रेट होता है उस पे हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. आई विल बी राइट बैक, कुछ एड ब्रेक, उसके बाद ये गाना एंड उसके बाद जल्दी से हम लौट कर आते हैं. ठीक है जी.
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद.
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक.
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में.
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई.
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी.
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट.
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077.
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा. चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री. साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है. ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट. विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद. कॉल नाउ 9412211111.
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा. डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है. एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा.
7: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं.
8: नामुमकिन.
9: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है. सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने. ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे यार ये म्यूजिक चले जा रहा है, आनंद क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैं आपके मैसेज को रीड आउट कर रहा था। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। 11:03 हो गए स्टेशन की घड़ी में एंड आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ इस वक्त, क्योंकि भैया संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो हम आपके साथ बातचीत करने चले आए हैं आपके संडे को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने। भाई साहब
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
7: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
6: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: कॉल 9045912348।
0: वेलकम बैक है वंस अगेन। जैसे कि मैंने कहा था मैं जस्ट अभी लौट कर आता हूँ और देखो मैं एकदम लौट के आया। वेलकम बैक है आप सभी का, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद।
8: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
0: वर्ल्ड बिरयानी डे मनाया जाता है हर साल जुलाई के पहले रविवार को। आज वर्ल्ड बिरयानी डे है और मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था मुरादाबाद में कहाँ पर बढ़िया बिरयानी मिलती है। आप लोग जब भी कभी बिरयानी खाने का मूड बनाते हो तो कहाँ जाते हो? आपको कौन सी बिरयानी पसंद है? आप वेज वाली खाना पसंद करते हो या नॉन वेज बिरयानी? आपका फेवरेट कौन सा है बिरयानी, आप मुझे डेफिनेटली बताइए। जैसे आई एम प्योर मतलब हार्ड कोर प्योर वाला बॉय मतलब वेज बिरयानी, आई लव वेज बिरयानी। मुरादाबाद में वेज बिरयानी कहाँ मिलती है मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ, डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। मैसेज मेरे पास आया है, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है? हाय माय नेम इज प्रेम। हाय प्रेम गुड मॉर्निंग। ये लिखते हैं आनंद जी आप मंडी गेट की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पर अच्छे अच्छे बिरयानी के ढेर सारे स्टॉल्स मिलेंगे, आप वहाँ पे बिरयानी खा सकते हैं।
9: जो रखेगा बचा।
0: एक मैसेज मेरे पास कुंदनपुर से आया है, हाय गुड मॉर्निंग मेरा नाम सुमन है। आनंद जी आप अगर वेज बिरयानी खाना चाहते हैं तो आप हमारी साइट आइए, बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है। एक मैसेज और पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग दिस इज मी शुभांग। गुड मॉर्निंग शुभांग लिखते हैं आनंद जी प्रकाश नगर पे भी अच्छी वेज बिरयानी मिलती है। ऑलराइट आज वेज बिरयानी है और सॉरी आज वर्ल्ड बिरयानी है, वर्ल्ड बिरयानी डे है आज, वेज बिरयानी मैंने इसलिए बोलते बिकॉज आई लव वेज बिरयानी, मुझे पसंद है इसलिए वो बार बार फ्लो में निकल रहा है। सच बताऊं तो आप घर पे भी वेज बिरयानी बना सकते हो नो डाउट, बहुत ही यम्मी होती है, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी और बहुत ही इमिडिएटली बन जाती है यार बिरयानी। ये सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। यार बड़े अजीबोगरीब किस्से होते हैं ना अपने इंडिया के अंदर, ऐसे ऐसे किस्से हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब बड़ी अजीबोगरीब चीजें चल रही होती हैं, इनफैक्ट देश दुनिया में ही चल रही होती है बॉस। चलो पहले मौसम विभाग की अपडेट आपको फटाफट बता देता हूँ। तो भैया देश में मॉनसून अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका है, बताया जा रहा है कि अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है मॉनसून, एंड जहां एक तरफ महाराष्ट्र में मॉनसून ने दस्तक दी है वहीं अपने जो है उत्तर भारत में भी अब मॉनसून की दस्तक जो है लगभग शुरू हो गई है। आपको बता दें मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों में आंधी तूफान और तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो देखिए वेदर तो ऑलरेडी चेंज हो ही रहा है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ठीक है मॉनसून तो अब आने ही वाला है और मतलब बारिश का सिलसिला मुझे लगता है शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि गर्मी ने बहुत सता लिया है। अब ये बारिश आएगी तो थोड़ी तो एटलीस्ट राहत मिलेगी, थोड़ी तो एटलीस्ट ठंडक मिलेगी यार।

0: चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आप मुझे वेज बिरयानी के बारे में बता रहे हैं, आप मुझे और भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, देखता हूँ कितने लोग मुझे जवाब देंगे। आप मुझे बताओ शाहरुख खान साहब की जो डेब्यू फिल्म थी उनके करियर की, पहली जो जिसमें वो नजर आए थे, वो कौन सी पिक्चर थी, वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो पहली बार उन्होंने जो है कदम रखा था मूवी इंडस्ट्री में आके, वो कौन सी उनकी डेब्यू फिल्म है। कितने लोगों को पता है शाहरुख खान का डेब्यू मूवी कौन सा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। उनके करियर का पहला फिल्म कौन सा है जरा मुझे मैसेज करके बताना आप लोग 9837896896। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप कर सकते हैं। जरा बताओ मुझे कि शाहरुख खान साहब की डेब्यू फिल्म कौन सी है, उनकी करियर की पहली फिल्म का नाम क्या था। देखते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ शाहरुख खान वाले फैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सएप किए हैं, थैंक यू वेरी मच। जैसे हमारे पास ये मैसेज आ गया है ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर से लिखती हैं, हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, आज मौसम बहुत ही ऑसम है, एक गाना शेकी शेकी सुनवा दीजिएगा मुझे, रात में लाइट बहुत बार भागी थी, आई थिंक मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लाइट जो है आजकल ज्यादा भाग रही है, बत्ती गुल मीटर चालू हो जाता है, मीटर कैसे चालू हो जाए बत्ती नहीं होगी तो। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज आए, गुड मॉर्निंग आनंद कैसे हालचाल है, वेरी गुड मॉर्निंग, आज संडे में आपको सुन के बड़ा मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच, हाय दिस इज मी प्रणव, हाय प्रणव थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू भैया। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हेलो नमस्ते जी, शिखा बात कर रही हूँ आनंद जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपको बढ़िया बिरयानी खानी है तो आप इस वाले एरिया में आइए, आपको बहुत अच्छी बिरयानी मिलेगी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, मुझे ये एरिया का नाम भी लिख के बता दो, इस वाले एरिया में मतलब कौन सी एरिया की बात कर रही है आप ये भी बताइएगा, ठीक है शिखा मैम, थैंक यू वेरी मच। ये बीबी राधिका मेरे साथ जुड़ी है, लिखती है हेलो आनंद जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग जी, सब बहुत ही बढ़िया, हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, आपका शो अच्छा लग रहा है। मोहम्मद हनीफ मेरे साथ जुड़ गए हैं, अमरोहा से लिखते हैं, सर आज बिरयानी डे के मौके पर हम आपके साथ हैदराबादी बिरयानी का आनंद लेना चाहते हैं। बिल्कुल जी, आपका स्वागत है।
1: तेरा कड़े कड़े बाल तेरे डूब गया मैं बिली बिली आँखें।
0: एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है। ये मैसेज मुझे आया है यहाँ पर गीता कश्यप बबली अंजान जी का, इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया है, साथ में ललिता जी भी लिखा है, गुड मॉर्निंग आप कैसे हैं, सब बहुत ही बढ़िया है, सब एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, सब लोग बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेज कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऐसे ही आप मैसेज करते रहिए और मुझे जरा बताइए जरूर कि शाहरुख खान साहब की पहली करियर की कौन सी फिल्म थी, कितने लोगों को पता है उनकी डेब्यू मूवी का नाम, बिकॉज सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता है मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को, तो अभी देखते हैं कितने लोग जानते हैं इस विषय में, आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करिएगा। आप में से किसी एक का फेवरेट गाना निकल गया है हमारे रेडियो सेट पर, 11:11 हो रहे हैं, कहते हैं दिस इज द मैजिकल नंबर, बहुत कम लोग होते हैं जो 11:11 का समय देख पाते हैं, अगर आपकी स्क्रीन पे आज 11:11 दिख जाए तो भाई समझ लेना आज कुछ लक काम करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस गाने को सुनते हुए लौट कर आएंगे तो कुछ और खास बातें करेंगे, आज का दिन क्यों खास है।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: कर लो तुम,
0: आप जुड़े हुए हैं आरजे आनंद के साथ। ये है आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं जी, बाहर का मौसम एब्सोल्युटली ऑसम है। कोई गाना सुनना चाहते हैं तो मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप कर सकते हो, यार आनंद आज ये वाला गाना सुना दे यार, बहुत मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए मैंने सुना नहीं इस गाने को। बस मैसेज कर दो यार, आपका गाना प्ले हो जाएगा थोड़ी सी देर में। फिलहाल इस गाने को सुनते हैं, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक। उदित साहब की आवाज, क्या सॉन्ग है यार।

0: ढेर सारे मैसेज आपके मिल गए मुझे। भावना जी जुड़ी है हमारे साथ, लिखती है हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? बहुत बढ़िया। मुरादाबाद वाली चिकन बिरयानी तो नैनीताल में भी मिलती है, आप नैनीताल में जरूर ट्राई कीजिए। देखिए हम तो वेजिटेरियन हैं तो हमें तो वेज बिरयानी बहुत पसंद है मैम। वेल थैंक यू सो मच, आपने ये सजेशन दिया उसके लिए शुक्रिया। एक मैसेज आया है जो आरजे बोलता है, आई थिंक वो सच हो जाता है। आरजे की पॉजिटिविटी जो वाइब्रेशन है उससे पूरा दिन हैप्पी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आगे आगे जो भी मैसेजेस आपके आ रहे हैं उसके लिए इट मींस अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल हैं? मैंने आपसे कहा था शाहरुख खान साहब की डेब्यू फिल्म कौन सी है, उसमें ढेर सारे मैसेजेस आपने किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अमेजिंग मैसेजेस के लिए। हमारे पास लगातार मैसेज आते जा रहे हैं। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आनंद जी मैं बढ़िया हूँ जी, गुड मॉर्निंग, आई होप आप भी अच्छे होंगे। एंड ये मैसेज हमारे पास किन का आया है, चिंकी, इन्होंने अपना नाम बताया। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और एक मैसेज बड़ा प्यारा आया, रुको मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ जी, इन्होंने लिखा है, आनंद जी देखिए बिरयानी खाने के लिए ना सबसे बढ़िया एरिया है मुरादाबाद की, तो बिरयानी वैसे ही फेमस है, आप जहाँ भी जाओगे वहीं बिरयानी बढ़िया मिलती है, ऐसा नहीं है। मुरादाबाद की बिरयानी ऑलरेडी बहुत फेमस है, आप जो है कहीं भी जाएं बिरयानी खाएं, बिरयानी हर जगह अच्छी होती है। अरे वाह क्या बात है यार, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह अच्छी तो होती है लेकिन कई जगह पे ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी वाली बिरयानी जो है आज आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वो उस बिरयानी के बारे में बात कर रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवे थैंक यू सो मच मेरे भाई मुझे मैसेज करने के लिए। एक और संदेश मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो हेलो हेलो, रणवीर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर जी थैंक यू सो मच, आपने एक ब्यूटीफुल गाने की रिक्वेस्ट की है, मैं ये गाना थोड़ी देर में डेफिनेटली प्ले करूंगा। एंड इन्होंने मुझे मैसेज किया है और साथ में बताया कि एसआर खान की डेब्यू फिल्म ये वाली थी। थैंक यू सो मच हमारे साथ। हरे कृष्णा, रामगोपाल गुप्ता बुद्धि बिहार से जुड़े हैं, इन्होंने भी मुझे बता दिया शाहरुख खान, इन्होंने लिखा है शाहरुख खान साहब की डेब्यू फिल्म का नाम। हमारे पास जुड़े हैं गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से, इन्होंने बहुत ही प्यारा गाना जो है सुना था और वो गाना हमने चला भी दिया था। गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से जुड़ते हैं, साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही यू नो अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया है कि आनंद जी शाहरुख खान साहब की डेब्यू फिल्म ये वाली थी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये अजीत कसाना जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना कांट रोड लदावली से, इन्होंने मुझे एब्सोल्युटली एकदम राइट आंसर दिया है कि साहब आनंद जी ये वाली फिल्म जो थी शाहरुख खान साहब की डेब्यू फिल्म थी, उनके करियर की पहली मूवी थी। हेलो आनंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग, आज संडे में बहुत ही धमाल मचा रहे हो आप, थैंक यू सो मच सर। एंड आप संडे में भी आते हो बहुत अच्छा लगता है और हमारा दिल जो है गार्डन गार्डन हो गया है, थैंक यू वेरी मच। आज कार्यक्रम में कुछ जो है धमाल वाले सॉन्ग बजा रहे हो आप, तो हमें भी सॉन्ग सुनवा दीजिएगा एक बहुत ही बढ़िया सा। रिजवान खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये ग्राम बीजना से जुड़े हैं, शुक्रिया जनाब। लिखते हैं आनंद जी मुझे लगता है कि राजू बन गया जेंटलमैन। राजू बन गया जेंटलमैन कहाँ यार, शाहरुख खान साहब की डेब्यू फिल्म थी, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लगता है आप बिगेस्ट फैन नहीं हो एसआर खान साहब के, इसीलिए आपने जो है ये लिख दिया है। अगर आप असली वाले फैन होते ना भाई साहब तो आप बिल्कुल सही वाला जवाब देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खैर बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वैसे शाहरुख खान साहब का एक टीवी सीरियल भी बहुत पॉपुलर हुआ था जो फौजी, जिसमें उन्होंने यू नो किया था रोल, एंड बहुत ही अच्छी यू नो मूवी थी वो भी। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के मैसेज ढेर सारे आ रहे हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए रिजवान जी, मैंने अपनी आपकी पसंद पर एक ट्रैक निकाल दिया है दीपा पाजी की आवाज में। 11:25 हो रहे हैं, कुछ एड ब्रेक आएंगे उसके बाद हम वापस इन गानों को लगाएंगे आप ही के स्टेशन पर। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पे जो है आप डेफिनेटली अपने हालचाल बता सकते हैं। आज 5 जुलाई को क्या स्पेशल है डेफिनेटली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अभी के अभी थोड़ी देर में। कुछ आसपास में जो चल रहा है वो भी बताकर जाऊंगा, जब आया हूँ तो सारी लेटेस्ट जो चीजें चल रही है ना आसपास वो सब कुछ आपको बताऊंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही आरजे आनंद को सुनते जाओ। मैं अभी जस्ट कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, उनके बाद जल्दी से लौट कर आ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आज के दिन के बारे में, ठीक है जी।
1: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिला।
2: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
3: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
4: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
3: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
3: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
4: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
3: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
4: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
3: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
4: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
3: KCC साख से समृद्धि।
4: नियम और शर्तें लागू।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस, एब्सोल्युटली फ्री टायर्स। ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस, एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: विक्रांत मैसी यामी गौतम नेहा कक्कड़ बादशाह एंड साथ में अपने मीका पाजी डाकड़ गाना भी आपने सुन लिया। और सच बताऊं इतने अच्छे गाने जो सुनते हैं ना, सच बता रहा हूं यार, मॉर्निंग डेफिनेटली झकास होती है। ये तालियां उन लोगों के लिए जो बॉलीवुड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नया नया लेकर आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। चलिए फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं, आज 5 जुलाई है, क्यों खास है 5 जुलाई की तारीख, क्या स्पेशल रहा है आज की तारीख में, डेफिनेटली आपके साथ साझा करता हूँ इमीडिएटली आज के दिन के बारे में क्या कुछ खास रहा है 5 तारीख को। तो देखो यार, 5 तारीख जो है ना अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन 1995 को जन्म हुआ था PV सिंधु जी का, जो भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है, उनका जन्म हुआ था आज के दिन 5 जुलाई सन 1900 बताइए कौन सा वाले डे की बात कर रहा हूँ मैं, 55 या 95, मैं 95 की बात कर रहा हूँ जी, 1995 की बात कर रहा हूँ भाई। एंड इसके अलावा आज ही के दिन जन्म हुआ था सन 1960 में राकेश जी का। एंड इसके अलावा आपको बताते चलें, आज ही के दिन 1947 में जन्म हुआ था लाला सिंह जी का, जो भारत के मतलब जो है बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी रहे हैं, इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। एंड आपको बताते चलें, आज ही के दिन शरद पागरी जी का जन्म हुआ, जो हिंदी साहित्य के जाने माने लेखकों में से एक रहे, 1931 को इनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन सचिन नाग, जो प्रसिद्ध भारतीय तैरक थे, उनका भी जन्म हुआ था आज के दिन 1920 में। और आज का दिन और भी तमाम सारी बातों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको बताते चलें, 1954 में आज के दिन BBC ने अपना पहला दैनिक टेलीविजन समाचार बुलेटिन प्रसारित किया था आज के दिन 5 जुलाई को। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, BBC ने अपना पहला दैनिक टेलीविजन समाचार बुलेटिन प्रसारित किया था आज के दिन 1954 में। और आपको बता दें, 1971 में अमेरिकी संविधान के 26वें संशोधन के तहत मतदान आयु घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी, श्रोताओं उनकी जो आयु मतदान आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी आज के दिन, यानी कि 5 जुलाई का वो दिन था। ये आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें जो मैंने आपके साथ फटाफट शेयर करी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जुलाई के पहले संडे को हर साल जो है वर्ल्ड बिरयानी डे मनाया जाता है, जिसपे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। एंड बहुत सारे मैसेजेस आपने किए, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मुझे सजेशंस भी दिए कि बिरयानी हम कहाँ खाने जा सकते हैं, यू नो, एंड कौन सी बिरयानी आपकी फेवरेट है। ढेर सारे संदेश आपने पहुँचाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, एक मैसेज मेरे पास पहुँचा है, गुड मॉर्निंग जी, हाय, हेलो हेलो, माई नेम इज़ हेमा, हाय हेमा जी, गुड मॉर्निंग। हेमा जी लिखती है, आनंद जी हमें तो पता ही नहीं होता है कौन सा डे कब मनाया जाता है, आपका रिव्यू सुनने के बाद ही पता लगता है, हमें अभी पता लगा इल्लो जी कि आज वर्ल्ड बिरयानी डे है। बिल्कुल जी, हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है, हम तो इतनी सारी स्टडी करके लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ आपको रेडियो पे सुनने को मिल जाए। आज 5 जुलाई है, बिल्कुल आज वर्ल्ड बिरयानी डे मनाया जाता है, आप वेज वाली खाओ या नॉन वेज वाली खाओ, बिरयानी बिरयानी होती है यार। मैं आपसे मैसेज करके मैंने आपको ये भी कहा था, मुझे बताओ जरा शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म कौन सी है, शाहरुख खान से आपने कौन सी फिल्म के साथ जो है अपने करियर की शुरुआत करी थी, ये आप मुझे मैसेज करिएगा। अलका वर्मा जी का वॉइस नोट आया है।
1: राधे राधे राधे राधे, और आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ,
0: मैं भी अच्छा हूँ,
1: और आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है।
0: धन्यवाद मैम, थैंक यू।
1: आपने जो क्वेश्चन किया था
0: जी, जी
1: शाहरुख खान की पहली मूवी दीवाना,
0: अच्छा क्या बात है, बिल्कुल
1: सही, हीरोइन दिव्या भारती,
0: बिल्कुल, और साथ में ऋषि कपूर साहब भी थे। थैंक यू मैम, बिल्कुल बहुत सही, मतलब शाहरुख खान साहब बहुत ज़्यादा तो यू नो ऐसे स्क्रीन पे नहीं इतना ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली, बट उनकी जो प्रेजेंस थी वो भी माइंड ब्लोइंग थी इस मूवी के अंदर। एंड ऑफ कोर्स ऋषि कपूर साहब, एंड जैसे कि अभी मैम ने बताया दिव्या भारती मैम, बहुत ही पॉपुलर स्टार कास्ट, एंड साथ में शाहरुख खान साहब का एक वो एकदम यंगेस्ट लुक जो उनकी प्रेजेंस थी बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी। ऑफ कोर्स गाने बहुत ही बढ़िया हैं, पिक्चर के पिक्चर बहुत ही अल्टीमेट है, लेकिन उसके बाद जब उनकी प्रेजेंस, वो कहते ना कि जब कोई इंसान का ऑरा होता है ना वो बहुत मैटर करता है, जब उनकी प्रेजेंस दिखी तो लगा कि हाँ यार कुछ तो इंडस्ट्री को नया मिलने वाला है। और दीवाना फिल्म अपने आप में बहुत ही पॉपुलर मूवी रही है, बहुत ही अच्छी मूवी रही है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एसआर खान साहब की डेब्यू फिल्म है, उनके करियर की पहली मूवी है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी एक और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी वो हेमा मालिनी वाली फिल्म में भी वो थे उनकी डेब्यू फिल्म, लेकिन एक्चुअल में दिस इज द रियल, अगर मैं रिसर्च में जो मैंने पता किया है पता लगा है कि वो जो शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म है वो दीवाना ही थी, जहां से उनकी शुरुआत हुई थी बेसिकली, जो उनकी प्रेजेंस थी वो मेन यहीं पर थी दीवाना मूवी में। थैंक यू वेरी मच, बहुत लोगों ने मुझे एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग मैसेजेस किए हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने आप में उस टाइम पर बड़ी सारी जोड़ी हैं जो बहुत पॉपुलर रही हैं, उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। और अभी फिलहाल डिस्कस करते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं 9837896896 पर। और बाहर का मौसम कैसा हो रहा है इसकी जानकारी कौन देगा, आप ही तो देंगे। बताओ जरा मुझे मौसम कैसा है अभी। 11:37 का समय हो गया है स्टेशन क्लॉक में, और आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 9837896896 पे, बता सकते हैं बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। आप चाहें तो मुझे फोटो खींच के भी भेज सकते हैं आज की सुबह। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, लता दी की आवाज में निकल गया है, साथ में सुरेश वाडेकर देंगे साथ। ये गाना ना बिल्कुल एकदम फ्लैशबैक में आपको लेके चलेगा, रेडियो पे जब ऐसे गाने सुनते हैं तो मजा आ जाता है। अलका वर्मा जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है, तो चलिए इस गाने को बिना किसी देरी के सुनेंगे।
2: आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे।
0: सच में यार माइंड ब्लोइंग ट्रैक, इसको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
0: 11:43 का समय हो गया स्टेशन क्लॉक में। आप लगातार अपने संदेश पहुंचा रहे हैं, लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे फोटोज खींच के भेज रहे हैं। आनंद जी देखिए बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, सो स्वीट यार, थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे मैसेज और साथ में इतने अच्छे अच्छे जो फोटोज आपने भेजे हैं, थैंक यू यार।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं, गाना निकाल दिया है मैंने आप ही में से किसी की रिक्वेस्ट पर।
6: बरसात के दिन
0: सारे गाने भाई साहब ऐसे लग रहा है कि आज ही सुन डालो, आज ही सारी बरसात आज ही हो जानी है, सारी बारिश आज ही होनी है।
6: कदम बेखुदी में
0: चलो कोई नहीं, फिलहाल आप लोगों ने अब रिक्वेस्ट डाली है तो ऑफकोर्स ये गाना डेफिनेटली बनता है आज की सुबह। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की प्रेजेंस, आप लोगों का जो यू नो यहाँ पे एक ये अटेंडेंस है ना, मेरे लिए बड़ा मैटर करता है यार। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए, हम आपका दिल से थैंक यू करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे श्रोता हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आपके मैसेज में अभी लौट कर आऊंगा तो पढ़ूंगा, आप बिल्कुल नाराज मत होइए। फिलहाल इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। 2005 में आई थी फिल्म बरसात, स्टारिंग बाय प्रियंका चोपड़ा एंड बॉबी देओल, साथ में एक और कमाल की एक्ट्रेस थी इसमें। और अभी जो फिलहाल ये गाना है ये सुनने वाले हैं आप कुमार शानू एंड अलका याग्निक जी की आवाजों में, म्यूजिक है नदीम श्रवण साहब का। चलिए इस गाने को साथ में सुनते हैं मैं और आप मिलकर। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: क्या बात है यार, कसम से बता रहा हूँ, गाना इतना बढ़िया था ना, इसको सुन के मजा आ गया। जिसने भी इस गाने की रिक्वेस्ट डाली थी यार, थैंक यू वेरी मच। मैं सच बता रहा हूँ, इतने बढ़िया गाने होते ना ये, इनको सुन के फ्लैश बैक में पहुंच जाते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, मैं पहुंचता हूँ आपके मैसेजेस की तरफ। बहुत जरूरी है, आपके मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये सच में बहुत प्यारे मैसेज है यार। गाइस थैंक यू वेरी मच। मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली, मेहराज अंसारी, बाबू अंसारी लिखते हैं, हेलो आनंद जी, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? संडे मॉर्निंग में मस्ती वाला शो सुन रहे हैं आपका, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड सभी की पसंद के सॉन्ग एक से बढ़कर एक चल रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है आपके प्रोग्राम में और बहुत ही बढ़िया लगता है। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमारा प्रोग्राम, हमें अच्छा लगा। और एक गाने की फरमाइश इन्होंने भी डाली है, एंड डेफिनेटली मैं ये गाना प्ले करूंगा थोड़ी देर में, बहुत प्यारा गाना है आपका इरशाद साहब। साथ में लिखते हैं, मुरादाबाद की बिरयानी बहुत ही शानदार है और बेहद ही बेस्ट होती है मुरादाबाद की बिरयानी, और मुरादाबाद में जो है इन्होंने किसी का मेरे को नाम लिख के बताया, करूला मुरादाबाद पे एक बिरयानी वाले हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, एंड इन्होंने लिखा है वो बहुत ही लजीज बिरयानी बनाते हैं और बहुत ही फेमस जो है उनकी शॉप है, और ये तीन जगह की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इन्होंने जहाँ जहाँ का नाम लिखा है। डेफिनेटली मैं समझ गया हूँ, मैं पहले जाऊँगा टेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ उसको रिवील करूँगा। लिखते हैं कि जिनकी बिरयानी बहुत ही बेस्ट होती है उनकी फेमस दुकानें हैं, एंड साथ में यहाँ की बिरयानी बहुत लजीज और बहुत ही अल्टीमेट होती है। बिल्कुल कॉज आई नो दैट कि मुरादाबाद की बिरयानी भाई अपने आप में मतलब जान है, मुरादाबाद की बिरयानी तो नो डाउट, दाल और बिरयानी तो है ही पॉपुलर, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो खैर इसकी बात तो मैं अभी नहीं करूंगा, मुरादाबाद की बिरयानी है ही बहुत सॉलिड। आज वर्ल्ड बिरयानी डे पे हम बस आपसे जस्ट नॉर्मली डिस्कस कर रहे थे कि आपको क्या लगता है कौन से एरिया में ज्यादा अच्छी बिरयानी मिलती है मुरादाबाद में, जिसपे ढेर सारे मैसेजेस आपने किए।
1: आनंद जी आज तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, इसीलिए ये सॉन्ग बजाया कि मुरादाबाद में ही बारिश हो, कहीं और दूसरे शहर में ना ये मेघा चले जाए, इसीलिए ये सॉन्ग की रिक्वेस्ट की।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सोच समझ के गाने की रिक्वेस्ट डाली थी आपने, मेघा रे मेघा, बहुत ही अच्छा एक दिमाग में आइडिया लगा के फिर जो है आपने इसको मतलब है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। चलो ठीक है, बट बारिश हो भी जानी चाहिए हल्का जी, अब है ना, तालियां यार आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अपनी वॉइस नोट भेजता है, पता नहीं क्यों आप लोग अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाते, अपनी आवाज़ पहुंचाया करो यार, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपकी आपके अंदर की जो कभी कभी होता है ना कि हम बड़े अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं यार हम क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे, मुझे समझ ही नहीं आता, बड़े अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन जब आप शुरू करोगे ना एक दो बार आपको लगेगा यार मैं कैसे बोलूँ, जब आप बोलने लग जाओगे तो आपका फ्लो वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैं आपको कहता हूँ अपनी आवाज़ पहुंचाया करो यार, बहुत बढ़िया है, मेरी आवाज़ तो सभी सुनते हैं, आपकी आवाज़ लोग सुनेंगे तो कितना मजा आएगा, सोचिए आप, है ना। अभी फिलहाल एक अच्छा सा गाना निकाल दिया मैंने आपकी रेडियो सेट पे, आप ही की फेवरेट ये रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, थैंक यू वेरी मच। इतने प्यारे प्यारे ऑसम वाले मौसम में आप इतने अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हो, थैंक यू सो मच। और बाकी थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, लगातार आप लोग मैसेज करे जा रहे हो, एक से बढ़कर एक गाने आप लोग पहुंचा रहे हो, सच बता रहा हूँ। ये जो अगला गाना है ये भी बहुत ही प्यारा ट्रैक है। इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास सुप्रिया जी की, बिल्कुल मत खोलना बारिश तुरंत भाग जाती है, मैं तो सोच रहा हूँ इस बार बारिश आएगी तो मैं स्टोरी भी नहीं बनाऊंगा यार, नजर लग जाती है। हाय हाय हाय, क्या बात है, करंट टेम्परेचर 30 डिग्री हो रहा है बॉस, क्या लगता है बारिश आएगी क्या। टीना जी जुड़ चुकी है कुंदनपुर लाइन पार से, इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट डाली है, थैंक यू टीना ज्वाइन करने के लिए, थोड़ी देर में आपका गाना बजेगा।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: चलिए दोस्तों, फिलहाल अब जाने का समय हो गया है। घड़ी की सुइयां जो है मुझे अब और इजाजत नहीं दे रही हैं कि हम आपसे और बातचीत करें, यानी कि और ज्यादा वार्तालाप करें, लेकिन कोई बात नहीं, जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे। लेकिन चलते चलते कुछ आप ही के फेवरेट गाने छोड़ के जाऊंगा। आपको बता दें भैया, अपने यूपी में 6 जुलाई से जो है मिलेगा इस महीने का जो राशन होता है, जो लोग राशन लेते हैं उनको बता दें कल से राशन शुरू हो जाएगा मिलना और ये 20 जुलाई तक जो है लगातार चालू रहेगा। तो आप जो है अगर आपके आपको राशन मिलता है, आपका राशन में नाम है, तो डेफिनेटली आप अपने जो भी आपके राशन डीलर है वहां जाके आप कल से राशन ले सकते हैं। चलो फिलहाल ये कड़क अपडेट, अभी इसी के साथ मैं निकलता हूँ। हाय हाय, जाना पड़ेगा बॉस, जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे।
2: वो क्यों भला
3: खुद से ही डरने लगी।
1: चलिए दोस्तों, आप ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। मेरी आपकी मुलाकात डेफिनेटली फिर से होगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। कब होगी? इसी चैनल पर होगी, आज ही होगी। आप बस सुनते जाइए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए ऐसे ही। और मुरादाबाद में आप जहां भी बिरयानी खाने जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, पहुंचिए बिरयानी खाने के लिए। आप जहां भी पहुंच रहे हैं मुझे भी टैग करिएगा आप कहां बिरयानी खाने जा रहे हैं। फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, रेडियो वाला आनंद के नाम से आपको मिलता हूं, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिल जाता हूं, RADIO रेडियो वाला वाला आनंद, फिर आप मुझे वहां पे डाल सकते हो। आप आरजे आनंद डाल दो, आरजे आनंद ANAND आनंद जब आप डालोगे तो मिल जाऊंगा मैं आपको बहुत इजीली, ठीक है। तो आप फॉलो करो, हमें टैग करो या हमारी ऑफिशियल आईडी फॉलो कर लो, सबसे सिंपल है FM मुरादाबाद 89.6, वहां पे भी आप वहां पे फॉलो कर सकते हो। उधर भी कुछ ना कुछ हमारा अपलोड होता रहता है सोशल मीडिया पे, तो वहां पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर भी आप आके हमें बता सकते हैं कि आप कहां पर बिरयानी डे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे इस बार। चलो इसी गाने को सुनते हुए निकलता हूँ मैं यहाँ से। करण अर्जुन का बहुत ही प्यारा ट्रैक, कुमार शानू, अलका याग्निक जी की आवाज, 90s का बड़ा ही सुपर डुपर हिट गाना। इसी को सुनते हुए हम आपको कहेंगे टाटा बाय बाय, संडे है, इसको ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहिए, मस्त रहिए, झकास रहिए और ऐसे ही अपने दिन को खास बनाते रहिए। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है यार, अपने दिमाग को ना जितना हो सकता है फ्री रखो, टेंशन फ्री रखो। वैसे भी छुट्टी का दिन है तो फालतू की टेंशन लेके लोड बढ़ाओ मत, लोड को कम करो। परिवार के साथ हो, फैमिली के साथ हो, तो टाइम को अच्छे से बिताओ यार। कुछ बढ़िया सा बनाओ, बढ़िया राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, बिरयानी, जो भी आपको बनाना है, XYZ छोले भटूरे सब बनाओ, खाओ, क्योंकि बनाने खाने का दिन है यार संडे। बाकी कहीं घूमने जाना चाह रहे हो तो बिल्कुल घूमने जाओ, मौसम अच्छा है। फिलहाल मैं निकलता हूँ, बाय बाय।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोन।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
5: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: हाय डीएनएन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: खांसी हो लगातार, मत करना इंतजार, समय पे जांच करवाओ, टीवी को दूर भगाओ, सेहत सही लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद कि हम पहले भी टीवी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से इस विषय पर लौटे हैं। वजह है कि टीवी आज भी हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गई है। मैंने कई बार गांव में लोगों को कहते हुए सुना है कि अरे टीवी तो पहले भी हुआ करती थी, अब कहाँ जाता है, अब कहाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीवी कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं मौसम बदल रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या टीवी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीवी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीवी की जांच के बारे में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है, और अगर सही समय पर जांच हो जाए तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमारे कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझा देती हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी आपका।
5: धन्यवाद आरजे खुशी, और मेरे सभी श्रोताओं भाई बहनों को मेरा प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। आरजे जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीवी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है, जिसकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे पड़ोस के गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा। हमेशा थकान बनी रहती थी। घर के लोग पूछते थे क्या हुआ, तो वे हंसकर कह देती अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। कुछ समय बाद उनकी भूख कम होने लगी, कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था। शाम होते होते हल बुखार आने लगा, रात में पसीना भी आता था, फिर खांसी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने तब भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही, इसलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, एक्सरे हुए, बलगम की जांच हुई, फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
4: सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हम बार बार टीवी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आखिर टीवी है क्या?
5: देखिए खुशी, टीबी एक संक्रमण बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, किडनी और दिमाग जैसे अन्य अंगों में भी हो सकती है। इसीलिए टीबी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
4: लेकिन भाभी, लोग तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्या हर बार टीबी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाते हैं?
5: नहीं, बिल्कुल नहीं। टीबी दो तरह की हो सकती है, एक लेटेस्ट टीबी जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वो सक्रिय नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते, वह बीमारी नहीं फैलाता। दूसरी एक्टिव टीबी जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं। फेफड़ों को एक्टिव टीबी दूसरों तक फैल सकती है।
4: तो ये फैलती कैसे है?
5: जब फेफड़ों की टीबी वाला व्यक्ति खांसता, छींकता, बोलता या गाता है तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इससे सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों में।
4: गांव में लोग कहते हैं कि साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीबी फैल जाती है।
5: यह पूरी तरह गलतफहमी है। टीबी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले मिलने या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। इसीलिए मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है।
4: इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
5: अगर दो हफ्ते से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द हो या बगम में खून आए तो तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए।
4: क्या भारत में आज भी टीबी बड़ी समस्या है?
5: भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2015 से 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21% और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देर से जांच करवाते हैं, इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच बेहतर जरूरी है।
4: क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है?
5: जी हाँ, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोग, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच जरूरी है।
4: यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो ये सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक, पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है?
5: बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है लक्षण हो तो जांच करवाइए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTIP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है।
4: तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है?
5: सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच, बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उसके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी के जीवाणु मौजूद है या नहीं। यह जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती है और आज भी महत्वपूर्ण है।
4: CBN, AAT और TuneIn जैसे नाम भी सुनते हैं, कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होता है।
5: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है। इसकी खासियत यही है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में यह भी पता लगा सकते हैं कि कई बीमारी सामान्य दवा दवाओं के प्रति प्रतिरोधी यानी ड्रग रजिस्टेंट तो नहीं। यही जानकारी डॉक्टरों को सही इलाज चुनने में मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को समय पर सही निदान मिल सके।
4: और एक्सरे की क्या भूमिका होती है? क्यों जब भी लोग लंबे समय तक खांसते हैं डॉक्टर अक्सर छाती का एक्सरे लिख देते हैं?
5: बिल्कुल सही, छाती का एक्सरे टीबी की जांच में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्सरे में ऐसी बदलाव दिखाई देती है जैसे टीबी की ओर संकेत करते हैं, फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं।

0: यानी एक्सरे बीमारी की ओर इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। और अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, तब और भी विशेष जांच की जरूरत होती है, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इसमें यह पता चलता है कि कौन सी दवाएं मरीज पर प्रभावित होगी और इलाज किस तरह से आगे बढ़ाया जाए।
1: साथियों, बात बिल्कुल साफ है, अनुमान नहीं जांच जरूरी है। खांसी तो घरेलू नुस्खों में महीनों ना उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं। दो हफ्तों की खांसी हो जाए, जांच बिना मत समय गवाएं। टीबी का इलाज है तैयार, समय पर जांच है सबसे बड़ा हथियार। टीकन भाभी, एक और बात जानना चाहूंगी, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करवाती है जो खुद अस्पताल पहुंचते हैं?
0: नहीं आरजे खुशी, अब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे बढ़ चुका है। पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे और फिर उनकी जांच होती थी। इसमें हम पेसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुँचते हैं, गाँव बस्तियों दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते, उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सके।
1: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि खुद लोगों तक पहुंच रही है।
0: बिल्कुल, इसी सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
1: टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्यों अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को क्या जरूरत है?
0: यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को टीबी है, तो बाकी सदस्यों को भी जांच करवाना बेहतर जरूरी है। इससे संपर्क जांच या कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात एक ही घर में समय बिताते हैं, उनके संपर्क में टीबी के जीवाणु आने की संभावना अधिक होती है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग की जांच जरूरी होनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी हो तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह छोटा सा कदम बीमारी को फैलने से रोक सकता है और कई लोगों की जान बचा सकता है।
1: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर है और शर्म। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं करवाते और दूसरों को भी बताते नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, लोग दूरी बना लेंगे, रिश्ते पर असर पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह कोई पाप नहीं, यह कोई चरित्र की कमी नहीं, यह एक सामान्य चिकित्सकीय बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक भी होते हैं। इसीलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा जरूरी है। समय पर जांच न करवाने का नुकसान सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं?
0: मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता 6 बातें हमेशा याद रखे। पहली, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो जांच जरूर करवाए। दूसरी बात, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं। तीसरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथा, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी जांच करवाइए। और पांचवी, टीवी मरीज से भेदभाव नहीं सहयोग करे, उसका मनोबल बढ़ाए, क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है।
1: और मैं इनमें से एक छठी बात जोड़ना चाहूँगी। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसीलिए अगर आपका शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, समय पर जांच करवाइए, यही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब लेते हैं मिलकर सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई,
0: खांसी रहे दो हफ्ते से पार, जांच करवाना है समझदार, टीबी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करा के ही रुकेंगे।
1: श्रोताओं, मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही जिंदगी सही।
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना। क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
3: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
3: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
4: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
3: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
4: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में, जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
3: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
4: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशंस अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
3: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
4: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
3: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
4: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
3: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
4: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
3: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
4: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो पीएचसीज हो, सीएचसीज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जिसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
3: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
4: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है, और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
3: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
4: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है, और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
3: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
4: मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की

0: जांच कराना।
1: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से?
2: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है, और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके, आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
2: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
1: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
2: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे। शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवाई किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर अनीमिया हो, मॉडरेट अनीमिया हो, तो जरूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि, या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
2: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती है ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत हो तो, मैंने एक बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर CSCPSC पर उपलब्ध?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या ANMs हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, और मैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
4: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज मुरादाबाद, और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल, और मेरे साथ है प्राची। प्राची कैसे हो आप?
5: मैं तो एकदम बढ़िया हूं, और उम्मीद करती हूं कि हमारे लिसनर्स भी बढ़िया होंगे।
4: आज ये शो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
5: हाँ अखिल, जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं पर सिर्फ सेल्फी के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं।
4: बिल्कुल सही बात, और कुछ लोग करियर चूज करते हैं सिर्फ चाचा जी के कहने पर अपने।
5: तो फिर आज का हमारा टॉपिक है करियर कंफ्यूजन से करियर क्लैरिटी तक।
4: मुरादाबाद के दोस्तों याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं।
5: अखिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, तो आप ये कहना चाहेंगे?
4: मेरे हिसाब से सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ 3 चीजों को लिखो अपने पास, मुझे क्या करना पसंद है, दूसरा मैं किस चीज में अच्छा हूँ, और तीसरा मार्केट में किस चीज की डिमांड है।
5: और अखिल, मुझे लगता है कि एक चीज और ऐड हो गई है आजकल की लाइफ में, करियर प्रेशर से ज्यादा डेंजरस आजकल कंपैरिजन प्रेशर बन गया है। लोगों, बच्चों में कंपैरिजन, और कि मम्मी पापा की कंपैरिजन रहती है, बच्चों को वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों से, तो इससे बच्चों के लिए जो पूरा एटमॉस्फेयर बन गया है बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
4: बिल्कुल सही बात कही, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, शर्मा जी का भाई हमारे पड़ोस में, वो IIT में है।
5: अच्छा।
4: पर हाँ, पर जो एक और पड़ोसी है मिश्रा जी, उनका जो बेटा है उसका टैलेंट थोड़ा सा यूट्यूब में, मतलब वो इस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, और कई चीजों पे जैसे आजकल फूड ब्लॉगिंग है, कभी बिजनेस को लेके किसी कोई मोटिवेशनल ब्लॉगिंग है, तो वो इज लाइक अ गुड स्पीकर, वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आके अपने आप को दिखाऊं। मगर क्या है, बगल में शर्मा जी का बेटा जो है वो IIT में लगा हुआ है, तो ये बात रहती है सुबह सुबह, यही चर्चा रहती है कि भाई मेरा बेटा तो IIT के उसमें है और तुम्हारा बेटा देखो ये फालतू की चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे लोग कंपैरिजंस में आ जाते हैं।
5: हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पेरेंट्स का तो ये फेवरेट डायलॉग बन चुका है कि पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो फिर अपना पैशन फॉलो कर लेना, जैसे पैशन कोई वीकेंड पिकनिक हो।
4: बिल्कुल सही कह रही हैं प्राची जी। चलिए हम तो इस बात पे बात करते ही रहेंगे, अभी सुनते हैं बढ़िया सा गाना।

0: चलिए मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉल करता है, नाम है राहुल।
1: मैं बीकॉम कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा फ्यूचर क्या है।
0: राहुल पहले ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है।
1: मुझे पसंद है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया भी पसंद है। अच्छा राहुल, तो तुम डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो।
0: आजकल ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं रह गया है।
1: डेटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, रेडियो जॉकी।
0: पर हाँ, अगर रेडियो जॉकी करना है तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा।
1: सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अखिल। वो लिसनर्स, आप हमें बताइए कि आप किस करियर फील्ड को चूज करना चाहेंगे। आप हमसे बातें कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर 9837896896। तो सुनते रहिए हम अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़। हमारे इस कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है।
1: तो आज अखिल आप क्या लेकर आए हमारे लिसनर्स के लिए?
0: मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ टैलेंट सिर्फ ब्रास तक लिमिटेड नहीं है।
1: वैसे ये तो सही कहा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के लोग बहुत सारी फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं।
0: यहाँ के यूथ ना स्टार्टअप तो शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी, फूड आउटलेट्स भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चालू कर रहे हैं।
1: अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो 2026 के लिए कुछ आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ।

0: बेकरी, डिजिटल सर्विस एजेंसी, ट्यूशन सेंटर, फूड कार्ट विद हाइजीन कॉन्सेप्ट।
1: लेकिन प्लीज हर गली में ना मोमोज मत खोल देना यार। जहाँ भी जाओ ना, जिस गली में जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ बुद्धि विहार में, तो कहीं ना, मतलब वो जो अपना परशुराम चौक है और उससे थोड़ा आगे चलते हैं जब अपना हनुमान उसकी तरफ, जो हनुमान जी का पार्क है अपना, तो वहाँ पे भी भाई मोड़ पे भी वहाँ पे ही मोमोज वाला मिल जाता है। थोड़ा और आगे चला तो वहाँ पे भी एक शॉप पे मोमोज वाला है। तो प्लीज प्लीज प्लीज हर गली में हर जगह ना मोमोज नहीं होना चाहिए।
0: बस प्लीज आप ज्यादा मोमोज की बात मत करिए, बस मेरा बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का।
1: तभी ये इसलिए कह रहा था मैं, हर जगह मोमोज नहीं होने चाहिए। कम्युनिटी को ना सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोकल से खरीदो और लोकल को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है आजकल के समय।
0: तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि लोकल से मोमोज खरीदो और लोकल को बहुत बढ़ाओ। फिलहाल दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ। बस दोस्तों आपको ऐसे आइडियाज मिलते रहेंगे एफएम मुरादाबाद पर, और आप भी हमें भेज सकते हैं हमारी मैजिकल नंबर 9837896896 पर, और रेडियो बजाते रहो 9837896896 पर, और रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद FM 89.6 MHz, आपके अपने ही कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं और प्राची लेकर आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी।
1: तो चलिए शुरू करिए आप।
0: एक छोटे से गांव का लड़का 3 बार एग्जाम में फेल हुआ।
1: लोग हंसते थे, कहते थे तुमसे नहीं होगा,
0: लेकिन उसने हर फेलियर का फीडबैक बनाया और आज वो अपना बिजनेस चला रहा है।
1: दोस्तों, फेलियर का मतलब है फर्स्ट टाइम इन लर्निंग।
0: लाइफ में गिरना अलाउड है, मगर रुकना अलाउड नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल आपने। तो दोस्तों, लाइफ में आप रुकिए मत, चलते जाइए, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे।
0: मगर वहाँ रुक जाना जहाँ पे आगे गाड़ी रुकी हुई हो, क्योंकि MDA में ना इस समय अच्छा खासा जाम मिलता है, PAC से लेके किले तक। तो बहुत आराम आराम से गाड़ी चलाना भाई साहब, सीट बेल्ट जरूर पहनना।
1: पर दोस्तों टेंशन मत लेना, ये जाम शाम छट ही जाएगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हो प्राची। प्राची को तो जैसी शाम होती है ना, या प्राची का जहाँ भी कोई गोलगप्पे वाला स्टॉल दिख जाता है, प्राची की तो गाड़ी

0: अपना आप ही वहाँ रुक जाती है।
1: फिलहाल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और अगर आपके पास भी है कोई मोटिवेशनल कहानी, आपकी दोस्तों की, आपकी अपनी जिंदगी की कहानी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर जो है 9837896896।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: वेलकम बैक टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप है प्राची और अखिल के साथ, और दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर। तो अखिल आप शुरू करिए।
1: अच्छा ये बताओ प्राची, सक्सेस या स्लीप?
0: सक्सेस, स्लीप बाद में।
1: चाय या कॉफी?
0: करियर टेंशन में थोड़ी बहुत चाय सही है।
1: अच्छा गवर्नमेंट जॉब या स्टार्टअप?
0: दोनों, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही, चाहे कुछ भी कर लो बस मम्मी जरूर खुश रहनी चाहिए।
0: हाँ अगर मम्मी खुश है तो सब खुश है।
1: तो मम्मी को खुश करने के लिए चलिए कोई गाना बजाते हैं।

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुनाई कहाँ दिया ये नालायक विवेक, बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक? अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो? आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
2: कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना। मामा तू लाओ इधर। चलो मामा जल्दी लगाओ।

0: तो दोस्तों ये जो गाना है ये सिर्फ आपकी मम्मी के लिए डेडिकेटेड है। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: तो श्रोताओ हम एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुरादाबाद याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते।
0: तो दोस्तों आज ही अपना गोल लिखिए और अब कल से एक्शन करना शुरू कर दीजिए।
1: अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो, कंफ्यूजन को क्लियर करो और कुछ भी मन की बात हो ना हमें जरूर मैसेज करो।
0: तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर के साथ 9837896896। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिसपे हम कुछ ना कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, और बहुत ही अल्टीमेट सी वाइब आ रही है मुझे इनके साथ बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हेयर ऑन योर शो।
2: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
3: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम, आपको स्टेशन आके कैसा लगा? हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
3: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
2: एब्सोल्युटली।
3: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं, नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
2: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली, और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
3: जी जी, बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जिसे पुराने जमाने
2: दाई जी, बिल्कुल बिल्कुल,
3: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल.
2: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए. अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है. सो मैम हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है. इनफैक्ट एवरीबॉडी सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है.
3: Exactly.
2: सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारे घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है. अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है. उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल है, बट उन्हें खुद को नहीं देखना है. बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा.
3: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
2: बच्चे को दिखा लाते.
3: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ. देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है. अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो. तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है. शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती. अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड. तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें. तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ. एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हम जो पैप स्मियर और

0: अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो. डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे. आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे. तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ. अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकते. और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है.
1: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं. तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैम ने कहा. आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर. और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं. आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच. आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप और उन्हें कब कब कराने चाहिए?
0: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर.
1: ठीक है.
0: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर. ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता. एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है. इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर. आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे. करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है. इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है. अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले. पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है. कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: गवर्नमेंट इज रनिंग कि
1: एब्सोल्युटली
0: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे. ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए. अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3 से 4 हजार रुपए की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट.
1: फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल.
0: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को. अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं. डोजिंग का भी है कि 9 to 15 ईयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे. और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है, 15 साल से ऊपर है, तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन. ठीक है, और ये लगवानी चाहिए. इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन. आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है. सब अपनी बच्चियों को लगवाएं, और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स, आप प्लीज इसे लगवाएं. दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट. तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली, बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें. प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती.
1: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया.
0: और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती.
1: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया. यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो एचपीवी वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है. पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है. आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
0: I would say कि प्लीज लगवाइए. ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. कोविड के बाद लोग

0: लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही. कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए.
1: Absolutely.
0: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा.
1: करेक्ट मैम, बिल्कुल.
0: और पहले जब पैसे दे के लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है. नो, इट इज नॉट अ स्कैम. इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को. प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें.
1: एब्सोल्युटली. और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एलगी का वैक्सीन आप जरूर कराएं. ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें. मैम थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में. अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग. उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, पैड्स मत यूज करो, ये मत करो.
0: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है. आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है. ठीक है, अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है. इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल. क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन.
1: जिसके
0: पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है. द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, होल लाइफ इज मिसमैच. तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन. अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी.
1: Correct.
0: मंदिर ऊपर हुआ करते थे.
1: Right.
0: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था. तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं. दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा. ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था. इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है. हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना. सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस. उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे. द थिंग इज जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू. आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो. ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर. ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स. की ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल. तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते. थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी. जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता. तो थिंग्स आर चेंजिंग. व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग, व्हाई कांट वी अपडेट ना.
1: करेक्ट. अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं.
0: Exactly.
1: तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं.
0: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज. आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज. ठीक है, अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज. तो ये सब बीमारियां हैं. अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास 3 पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
1: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी विमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज़ से कहीं ना कहीं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष और
3: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
2: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको। लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
3: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
2: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
3: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
2: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
4: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
5: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है।
4: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
5: भाई और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
3: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है।
2: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
3: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां।
6: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नु रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
2: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों, जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं, उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
3: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
2: तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं, और आप एक समाज सेवी की तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को, जो बेटियां हैं, उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
3: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था, तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी। बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे तो कहीं कहां तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
2: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
3: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
2: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चा जन्म जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
3: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
2: बिल्कुल जरूरी है और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी, बेटी है तो कल है।
2: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारे तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दें। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
2: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
3: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
2: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं, और इसीलिए भावना कहते हैं हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
2: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
3: कल है।
2: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
8: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव

0: में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजनबाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
2: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजनबाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रूपये की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Oh. अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: आप सुन रहे अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना। सो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए शो महिला मंच, जहाँ हम बात करने वाले हैं बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ के बारे में। तो श्रोताओं, हमारे समाज में ना लंबे समय तक बेटियों को बोझ समझा जा रहा था। कई परिवारों में बेटी को जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। इसी सोच के साथ शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका अभियान सीधा एक संदेश देता है, बेटी को बचाना जरूरी है और उसे पढ़ाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब बेटी पढ़ती है तभी परिवार आगे बढ़ता है और समाज मजबूत बनता है। और कहते हैं ना श्रोताओं, जब बेटी शिक्षित होती है तो वो सिर्फ एक परिवार को रोशन नहीं करती है, बल्कि वो तीन पीढ़ी को रोशन करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तीन पीढ़ी को कैसे रोशन करती है। तो पहले तो अपने माता पिता का घर, दूसरा ससुराल, तीसरा अपने बच्चों को वो खुद पढ़ा सकती है। तो देखा, बेटी एक परिवार को नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ियों को रोशन करती है। तो इसीलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। और बेटियों के प्रति ना हमारा सोच हमें बदलना होगा, हमें उनका साथ देना होगा, बल्कि उन्हें गिराना नहीं होगा, डिमोटिवेट नहीं करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना है, ताकि वो आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाकर चले और अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। सो यूं ही ढेर सारी आज हम बेटियों के ऊपर बात करते रहेंगे। बस आप आरजरीना के साथ महिला मंच में यूं ही कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि कुछ साल पहले देश के कई राज्यों में लड़कियों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। इसका मुख्य कारण था लड़कियों के जन्म को महत्व ना देना। कई जगहों पर बेटियों को पढ़ाई का मौका भी नहीं दिया जाता था। यही वजह कि सरकार को एक ऐसा अभियान शुरू करना पड़ा जो लोगों की सोच बदल सके। इस अभियान का मकसद था बेटी को जन्म देने का अधिकार, बेटियों को शिक्षा देना और समाज में बेटियों को बराबरी का सम्मान देना। पहले के टाइम में होता था कि जैसे बेटी जन्म होती थी ना, उसको वहीं पर मार दिया जाता था। कानो कान किसी को खबर भी नहीं होने दिया जाता था। ये कहा जाता था कि ये हमारे लिए बोझ है, हमारे लिए खर्चा बनाएगी, यानी कि पहले हम इसको पालेंगे, फिर ये बड़ी होगी, फिर शादी में खर्चा। तो बहुत सी ऐसी सोच थी जो लड़कियों को हम आगे नहीं बढ़ने देते थे, बल्कि उनके जन्म पर ही उनकी जिंदगी हम छीन लेते थे। लेकिन ये जैसे जैसे सरकार ने इनिशिएटिव चलाया, हम सबकी सोच बदली और आज यही दिन है कि लड़कियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। सो ढेर सारी बातें हम आप सभी के साथ करते रहेंगे। बस आप यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। जब समाज की सोच बदलेगी तभी असली बदलाव आएगा। आज रीना के साथ आप कनेक्ट हैं महिला मंच शो में और यू ही हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, सुनना बिल्कुल ना भूले अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में बेटियां ही नहीं होती तो क्या होता? ना घर में बहन की हंसी होगी, ना माँ की ममता, ना राखी का त्योहार होगा। बेटियां सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं होती बल्कि पूरे समाज की ताकत होती हैं। जब बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, खेल, पढ़ाई, सेना, विज्ञान, हर जगह अब बेटियां आगे बढ़ रही है। बस जरूरत है उन्हें सही मौका देने का, और जब मौका मिलता है तो बेटियां दुनिया जीत लेती है। तो दोस्तों, याद रखिए, बेटी बोझ नहीं, बेटी गर्व है। और सुनते रहिए एक और शानदार गीत आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे हम, और हमारी देश की बेटियों के लिए गाना है। सो यू ही आज रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

छुट्टियां नहीं होती तो ये समाज आगे नहीं बढ़ता। कहते हैं ना, जिस कोख से हम जन्म लेते हैं उसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसी को जन्म लेने के लिए मना करते हैं। आखिरकार बेटियां जननी होती हैं, जिसने इस दुनिया को रचाया आज उसी को जीने का और उसी से जीने का अधिकार आज हम छीन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जननी है उसको जीने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहन, बेटी, माँ, मित्र है आप सभी के लिए, जो घर को स्वर्ग बना देती है। और जब वो घर में होती है ना तो घर का रौनक ही अलग होता है। आपने देखा होगा ना कि हम बचपन में जब भी स्कूल से घर आते थे तो सबसे पहले हमारे मन में ना एक ही ख्याल आता था, माँ। माँ कहाँ है? अगर आपको पूरे घर में माँ की झलक ना दिखे तो पूरा घर को ना हम सर पर उठा लेते थे। तो सोचिए, जब माँ घर पर नहीं दिखती है तो हम पूरा घर को सर पर उठा लेते हैं और उस जननी को हम जन्म देने से डरते हैं। तो डरिए मत, बेटी है, जननी है, माता है, और जब जननी आगे बढ़ती है तो हमारा समाज भी आगे बढ़ता है। सो और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ, बस बने रहिए आर्जेरीना के साथ। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आर्जेरीना के साथ।

हाँ जी, आज रीना के साथ अब कनेक्ट है ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी, आज के समय में ना शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है और यहाँ तक बेटियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना बेटों के लिए है। जब एक बेटी पढ़ती है तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल देती है। पढ़ी लिखी बेटियाँ सही फैसले लेती है, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती है और समाज को आगे बढ़ाती है। इसीलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बेटी को जरूर पढ़ाए और उन्हें आगे जरूर भेजे, उनका साथ दे। और आप भी मेरे साथ यूं ही बने रहिए, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी, आरजे रीना के साथ।

आपके साथ आपकी आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है और आप सुन रहे अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, अब हम बात करने वाले हैं जिस बेटी को हम पढ़ने से मना करते थे, वही बेटी आज पढ़कर हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। वही बेटियां आज डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, पुलिस ऑफिसर बन रही है। समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है और यही इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। आज कई परिवार बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं, उनके सपनों को उड़ान देते हैं। यही बदलाव हमें आगे भी जारी रखना है और अपनी बेटियों को डीमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट करना है। उन्हें बोलना है कि तुम ही हो देश की नारी और तुम ही हो देश की बेटी और हमें तुम पर गर्व है। तुम आगे बढ़ो, तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों, जब एक परिवार अपनी बेटी का साथ देता है ना, तो उसकी देखा देख हर किसी की सोच बदलती है और हर किसी के दिमाग में यही आता है कि हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और हमारी बेटी भी आगे बढ़ेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी। तो श्रोताओं, बने रहिए यूं ही आरजे रीना के साथ और भी हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, जब बेटियां पढ़ती है ना, आगे बढ़ती है ना, तो अपने देश का नाम रोशन करती है। तो उनमें से अगर बेटियों की बात करूं तो पीवी सिंधु, कल्पना चावला, साक्षी मलिक, ये हमारी बेटियां देश की शान है, जिन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां किसी लड़के से कम नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकती है। बस एक ही बात चाहिए कि आप उनके साथ रहें। तो जब बेटियां आगे बढ़ती है ना, तो हमें भी देखकर गर्व होता है कि अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सोच बदल रही है। तो इसी सोच के साथ आप अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, उन्हें बोझ ना समझे। और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहे जी। अगला गाना भी बहुत ही प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करिए। लौट कर आती हूँ आरजे रीना के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6।

हाँ जी, आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और बस एक ही रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि अगर आपके घर में बेटी है तो आप उसे अपने सपने पूरे करने का मौका दीजिए, उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि वही बेटी एक दिन आपका नाम रोशन करेगी।

0: हाँ जी, की हाल चाल है आर्जरीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आर्जरीना के साथ। और अब आर्जरीना लेती है आप सभी से जाने की इजाजत। सो बस एक ही बात कहना चाहेंगे आप सभी से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां हमारे समाज की ताकत है, उन्हें मौका दीजिए और देखिए वो कैसे दुनिया बदल देती है। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है जी। और सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी आरजे रीना के साथ।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
6: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
5: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org।
6: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
5: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
6: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
5: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
6: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
5: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
6: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
5: EKCC, साख से समृद्धि।
6: नियम और शर्तें लागू।
7: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
8: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
9: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफ एम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
10: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
11: नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन है आपका एक बार फिर से। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, प्रोग्राम है आपका फेवरेट, जी हाँ आपका बिल्कुल आपका पसंदीदा प्रोग्राम। हर दिन ये प्रोग्राम नहीं आता, ये सिर्फ संडे को आता है, जिसका नाम क्या है बिल्कुल बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, स्वागत अभिनंदन। जुड़ चुके हैं आप आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, और कुछ तो गड़बड़ चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी का स्वागत करेंगे हम इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। दोस्तों आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही खास होने वाला है, और इस कार्यक्रम को स्पेशल बनाएंगे आप और मैं। सबसे पहले आरजे आनंद का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है। इस वक्त स्टेशन की घड़ी में वक्त हो रहा है 3:05, आज 5 जुलाई की तारीख है, संडे का बहुत ही खूबसूरत दिन है, और ये दोपहर बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरत दोपहर में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं जी, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस प्रोग्राम में हम खास बातचीत करेंगे आपसे, ये फोन इन प्रोग्राम है, एक मज़ेदार टॉपिक के साथ जो है हम यहाँ पर आ गए हैं, और एक मज़ेदार जो ये प्रोग्राम की वाइब है बिल्कुल आपको मिलेगी। अब 5 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होंगी दिल से दिल तक। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आप जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ कार्यक्रम में इस ये जो फोन इन प्रोग्राम है बेसिकली बिंदास बोल, तो इसमें आप बोल सकते हैं अपनी प्यारी प्यारी बातें। उसके लिए आपको हमें फ़ोन करना पड़ेगा 9837896896 पे, आप हमें मैसेज के ज़रिए तो आप जुड़ते ही हैं लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं आज की दोपहर। दोस्तों ज़िंदगी की जो है ना बहुत ही ज़्यादा रफ्तार तेज़ हो गई है, आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहा है, किसी पर जॉब का प्रेशर है, किसी पर पढ़ाई का दबाव ज्यादा है, तो किसी पर रिश्तों का दबाव बहुत ज्यादा बना हुआ है। कुछ कोई ना कोई दिक्कत परेशानी सबकी जिंदगी में चल रही है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल ही रहे हैं ना। तो इस भागती दौड़ती जिंदगी में कैसे इस तनाव से हम अपने आप को दूर रखें, कैसे हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा हल्का बनाएं, कैसे अपनी जिंदगी को थोड़ा सा रिलैक्स करें, आज इस पर डिस्कस करेंगे। ये दोपहर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले कुछ लाइनें आपके लिए लेकर आया हूँ कि जिंदगी की भाग दौड़ में थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, जिंदगी की भाग दौड़ में थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, हर छोटी बातों को दिल से ना लगाना सीखिए, गम तो बादलों की तरह आते रहेंगे जाते रहेंगे, गम तो बादलों की तरह आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप बस हर हाल में मुस्कुराना सीखिए, आप बस हर हाल में मुस्कुराना सीखिए।

श्रोताओं, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं 9837-896-896 पर, यानी कि फोन कॉल के माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। हमें इंतजार रहेगा आपकी फोन कॉल्स का। आज हम ढेर सारी बातचीत करेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत, आपके साथ ढेर सारे डिस्कशंस होंगे, तो बस आप हमें फोन कर सकते हैं जी 9837-896-896, ये हमारे स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज की दोपहर प्रोग्राम है बिंदास बोल, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे आनंद। थोड़ी सी देर में हम आपसे मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होंगी ढेर सारी आपके साथ दिल से दिल तक। चलो एक काम करते हैं, अच्छा सा ट्रैक सुनते हैं इस प्रोग्राम में, जो है एक बेहतरीन सा गीत मेरी पसंद का, फिर अगले जो गाने होंगे, आगे जो गाने होंगे वो शायद आपकी पसंद के भी हो सकते हैं। तो बस आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ अपने दिल की बातें जो है साझा कर सकते हैं। आज एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन भी है मेरे पास, वो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा इसी चैनल पर। बस आप जुड़े रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिए खूबसूरत गीत, उसके बाद हम मिलेंगे जरा सी देर में।

आज नहीं है तो हम आपके बीच रूबरू होने फिर से चले आए हैं। स्टेशन की घड़ी में 3:13 हो गए हैं जी दोस्तों, और आज हम थोड़े से आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने सोचा है एक टॉपिक पे बात की जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हर कोई बात नहीं करता है, पर मुझे लगा अगर आज मौका मिला है तो चलिए क्यों ना आपकी थोड़ी सी टेंशन को, आपके सो कॉल्ड गम को थोड़ा कम किया जाए। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तनाव है, कोई ना कोई टेंशन है ना। आप अपने तनाव को, अपनी टेंशन को दूर करने के लिए क्या करते हैं? आप हमारे लिसनर्स को, मुरादाबाद शहर वालों को क्या सलाह देना चाहेंगे? आजकल की लाइफस्टाइल, जैसे कि मैंने कहा, बहुत बिजी है, तो उसके लिए आपको फोन करना पड़ेगा ना 9837-896-896 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों क्या मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब आजकल की जो जिंदगी इतनी तेज हो गई है, हम लोग मतलब इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि भैया हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी मंजिल कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, कुछ भी नहीं पता है। बस हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। काम का दबाव, जिम्मेदारियां, मोबाइल की दुनिया, हर वक्त बस कुछ ना कुछ पाने की होड़, मतलब ऐसे में सुकून जैसे कहीं पीछे छूटता जा रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आपके साथ। अगर आप भी हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 9837-896-896 पर। चलिए श्रोताओं, जब तक आप लोगों के कॉल्स आएंगे तब तक एक और खूबसूरत गीत निकल गया है आपके रेडियो सेट पे। बाकी इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप फ़ोन करें तो नेटवर्क एरिया में आके ही फ़ोन कीजिए, बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब आप लोग नेटवर्क एरिया में आके फ़ोन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, और कॉल लगे फिर कनेक्टिविटी भी बने और बात ना हो तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। तो नेटवर्क एरिया में आइए, उसके बाद फ़ोन मिलाइए और ज़रूर आपका फ़ोन हम तक मिलेगा। 9837-896-896 ये स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जब तक आपके कॉल्स आ रहे हैं, खूबसूरत गीत निकल गया है आपके रेडियो सेट पर।

खूबसूरत ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं आरजे आनंद के साथ। श्रोताओं, स्टेशन की घड़ी में वक्त हो गया है 3:21, दोपहर का समय है। आज संडे का दिन है, बिंदास बोल प्रोग्राम में आनंद आपके साथ है। फिलहाल अभी जो ट्रैक आप सुन रहे थे उसको गाया था कुमार शानू साहब ने, और साथ में अलका याग्निक जी भी साथ दे रही थी। बहुत ही खूबसूरत जोड़ी, बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही खूबसूरत जो है इस गाने की लिरिक्स, मतलब आनंद आ गया। खैर, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम के पहले कॉलर, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आज हम आपसे वही बात कर रहे हैं कि हर किसी की जिंदगी में बड़ा लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, हर किसी को किसी न किसी चीज का टेंशन है, तनाव है, स्ट्रेस है। तो अगर आप इस चीज से जूझते हैं खामखा, कई बार बेवजह की हम टेंशन लेने लगते हैं, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं हमारे साथ जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, फिर वही 4-5 दिन हमारे जहन में घूमती रहती हैं। तो मतलब खामखा जो स्ट्रेस हम ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग में हम जी रहे हैं, तो उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, इसी पर बिंदास बोल में आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ। आप भी बिल्कुल हमारे साथ डेफिनेटली जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में 9837896896 पर आप हमें संदेश पहुंचा सकते हैं अपने, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे इस मैजिकल नंबर पर 9837896896 पर।

0: आइए दोस्तों जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर से। कौन कहाँ से जुड़े हैं और वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करते हैं? हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास बोल प्रोग्राम में। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: सर मैं अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: सर मेरा नाम नूर है।
0: वाह नूर जी, आपके आते ही नूर आ गया प्रोग्राम में, बहुत बढ़िया।
1: बहुत शुक्रिया
0: जी। जी नूर जी कहाँ रहते हैं? मुरादाबाद में।
1: सर मैं हरथला रहता हूँ, मुरादाबाद में।
0: अच्छा, हरथले में रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो नूर जी इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, गीतों का आनंद उठा रहे हैं?
1: बहुत मजा आ रहा है और आप इतने प्यारे नगमे सुना रहे हैं कि दिल कर रहा है कि बस सुनते रहे।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, यही तो प्रोग्राम्स की खूबसूरती होती है ना?
1: जी
0: बिल्कुल। अच्छा क्या नाम बताया, नूर जी आपने? हाँ नूर जी, आप मुरादाबाद रेडियो से कब से जुड़े हुए हैं जरा ये बताएं।
1: मैं काफी वक्त से जुड़ा हुआ हूँ और ये जब से अब यहाँ पर आपने नए नए प्रोग्राम चलाए तो सभी प्रोग्राम सुनता हूँ मैं।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा तो आज हम बात कर रहे हैं नूर जी की, आपको बताए ना, खामखा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह की टेंशन लेके घूमते हैं। बहुत स्ट्रेस आजकल की लाइफस्टाइल में हो गया है, हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई एक जिम्मेदारी है, एक दबाव है, एक प्रेशर भी है और कहीं ना कहीं टेंशन भी है। तो ऐसे में इंसान जो है कैसे उससे बाहर निकले?
1: इंसान कुछ नहीं करे, बस म्यूजिक सुने।
0: अच्छा आपको कभी अगर टेंशन होती है?
1: संगीत एक ऐसी चीज है, संगीत एक ऐसी चीज है कि जो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आराम से निकाल लेती है।
0: बहुत बढ़िया, म्यूजिक तो खैर बहुत सारे लोगों का कहना है एक थेरेपी है।
1: और एक चीज और है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, जितना गहराई में अपनी टेंशनों के बीच में जाएगा आदमी और फंसता चला जाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत भी नहीं है ना?
1: जी दिल से तो बिल्कुल ना लगाए।
0: आजकल की जिंदगी में पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हर इंसान की, कोई इंसान अगर सामने वाले को कुछ कहता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होती है, उसी बात पे जो है प्रॉब्लम्स होती चली जाती हैं और वही चीज होती है फिर हमारा तनाव स्ट्रेस बन जाता है।
1: जी बिल्कुल
0: है ना, तो थोड़ा सा सहनशील बनना भी जरूरी है, आप क्या कहेंगे इस पे?
1: बहुत अच्छी बात कहते हैं आप, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर हम टेंशनों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फिर टेंशन से निकल नहीं पाएंगे।
0: वही
1: टेंशन को तो हमने इग्नोर करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा नूर जी आपसे बात करके। चलिए इसी बात पे आप मुझे बताएं आज आपको मैं कौन सा गाना सुनवाऊं ताकि आपकी दोपहर और भी अच्छी हो जाए।
1: सर मैं जो हूँ इश्क विश्क का गाना सुनना चाहता हूँ, कुमार शानू का।
0: अच्छा शानुदा का, ये बहुत बढ़िया गाना है। कौन सा गाना है उसके? दो हाँ, कुछ कुछ लाइने गुनगुना दो आप, दो चार लाइने, मजा आ जाएगा।
1: मेरे दिल को ये क्या हो गया,
0: मैं ना जानू
1: कहाँ खो गया, क्यों लगे दिल में भी रात है, धूप में जैसे बरसात है। ये लाइनें सुनना चाहता हूँ सर मैं।
0: ऐसा क्यों होता है बार बार, राइट? क्या इसको ही कहते हैं प्यार। बहुत बढ़िया गाना है यार, बहुत अच्छा आपने गुनगुनाया है, वेरी वेरी अमेजिंग वॉइस। बहुत मजा आया आपसे नूर जी बातचीत करके और जरूर आगे भी आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी स्टेशन पर। चलिए नूर जी
1: अपने पसंद का गाना सुनना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद नूर, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय। वेलकम वेलकम। दोस्तों ये हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर जुड़े थे नूर जी, इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और बिंदास बोल प्रोग्राम में आनंद आपके साथ है। इनका गीत डेफिनेटली हम प्रोग्राम में प्ले करेंगे, मतलब इनका सॉन्ग जरूर आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का समय हो रहा है। 3:26 हो गए स्टेशन की घड़ी में और आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप फोन करिए ना हमें।
2: बसंती इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो है ये। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, शो का नाम है बिंदास बोल, मेरा नाम आनंद है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, फोन कर सकते हैं मुझे या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है 9837896896। आने वाले गाना बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, फ्रॉम द फिल्म इश्क विश्क से ट्रैक है, और इस गाने की रिक्वेस्ट की थी मुझे नूर साहब ने हरथला से। अगला नंबर आपका भी हो सकता है, तो फोन घुमाओ यार।

0: इस गीत के बाद वेलकम बैक है वंस अगेन। आप जुड़े हुए हैं आनंद के साथ, सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 3:33। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे वही जिक्र कर रहा था, डिस्कस कर रहा था कि भैया आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है, भागती दौड़ी भरी जिंदगी में तनाव टेंशन बहुत ज़्यादा है लोगों को। कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे इससे दूर रह सकते हैं? आप भी हमें अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास लगातार पहुँच रहे हैं। एक संदेश मेरे पास पहुँचा है गायत्री नगर से, इन्होंने कुसुम नाम लिखा है। लिखती है कि मैं रोज शाम को आधा घंटा टहलती हूँ और फोन को घर पर ही छोड़कर जाती हूँ आनंद जी, और मैं खुली हवा में थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। और मैं सबको यही सलाह देना चाहती हूँ कि वो लोग भी मेडिटेट करें, फोन से थोड़ी दूरी बनाएं, परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और बेवजह जो है टेंशन ना लें, और सिर्फ टेंशन लेने की जो ये कारण है उनसे ही दूर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे भी लगता है कि देखिए कुछ चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है कि मैम बताकर नहीं आती, वो तो रैंडम भी हो जाती है, लेकिन आपको कैसे डील करना है ये आपको आना चाहिए ना। इसी बात पे मुझे याद आया एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम में, शो का नाम है बिंदास बोल, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में, नाम बताएं। हेलो, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो, जी जी जी जी, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम बताएं सर, कौन बात कर रहे हैं?
1: आशीष बात कर रहे हैं सर।
0: आशीष, आशीष जी कहाँ से फोन मिला है इस वक्त आपने?
1: हेलो
0: आशीष जी, अगर आपका रेडियो चल रहा है तो रेडियो की आवाज थोड़ी कम कर लीजिए, क्योंकि वो बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना।
1: जी जी जी जी जी
0: जी। आकाश जी आप कहाँ रहते हैं ये बताइए, मुरादाबाद में?
2: मुंडा पांडे से बोल रहे हैं सर।
0: अच्छा, मुंडा पांडे से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आकाश जी ये बताइए क्या करते हैं आप, थोड़ा अपनी असल जिंदगी के बारे में बताएं।
2: बिल्कुल बताएंगे सर, मैं NRI हूँ, साउथ अफ्रीका में जॉब करता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी इन दिनों आप इंडिया आए हुए हैं?
2: छुट्टी पर
0: आए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना देश तो अपना ही देश हुआ है
2: जी,
0: बहुत बढ़िया। अच्छा आकाश जी, आज हम यही बात कर रहे हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल में ना स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, तनाव बहुत है, कैसे इस चीज से बाहर निकल सकते हैं लोग, अगर कोई इस चीज से जूझ रहा है तो, या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा फेस आता है तो आप कैसे डील करते हैं स्ट्रेस से, टेंशन से, कैसे बाहर निकलते हैं?
2: कभी ऐसा होता है तो मैं तो सर मेडिटेशन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ।
0: अच्छा ओके, मतलब आप मेडिटेशन की तरफ रुख कर लेते हैं?
2: जी जी जी
0: ओके, बहुत
2: मैं समझता हूँ ज्यादातर लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए अगर कोई ज्यादा टेंशन वगैरह है
0: तो उससे कितना हद तक उससे रिलीफ मिलता है?
2: हेलो,
0: कितना हद तक उससे जो है रिलीफ मिलता है, क्या लगता है आपको?
2: बहुत बहुत सारा रिलीफ मिलता है सर मेडिटेशन
0: में। अच्छा, एक तो जो है
2: आप, मैं समझता हूँ लोगों को पता नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है आकाश जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे तमाम लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं जिसकी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही तो कैसे टेंशन से बाहर निकल सकता है मेडिटेशन करके?
2: सर मेरा तो जो भी लोग सुन रहे हैं मेरे को, मैं तो यही बोलूंगा सर कि ज्यादातर लोग मेडिटेशन पे ध्यान दें, अपने कारोबार पे ध्यान दें, ये टेंशन वगैरह तो सारी ये चलती रहती है लाइफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलती रहती है, और देखिए जब लाइफ है तो ये फलसफे भी आते रहेंगे, ये सिलसिले भी चलते रहेंगे,
2: ये सर चलता रहता है, ये तो रोज रोज वाला सिस्टम है, चलता रहता है, नुकसान नफा लाइफ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आप रेडियो से कब से जुड़े हैं आकाश जी, आप मतलब मुरादाबाद रेडियो?
2: मैं सर जब इंडिया आता हूँ तो ज्यादातर सुनता रहता हूँ मैं आपको।
0: वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप कब जाने का प्लान कर रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी पे जाना? तो
2: जुलाई लास्ट में जाऊंगा।
0: जुलाई के लास्ट में जाएंगे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप एनआरआई
2: आपसे भी सर, आपसे भी सर।
0: चलिए आपके फ्रेंड्स भी साथ में बोल रहे हैं, क्या सुनवा दें आज आपको आपके दोस्तों के साथ?
2: धड़कन का गाना सुनेंगे सर।
0: चलिए चलिए चलिए, आपके अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कोई और गाना भी चलेगा या फिर यही वाला गाना सुनवाना, ये बताइए आप?
2: और कुछ चलेगा भाई?
0: चलिए चलिए, मैं ढूंढता हूँ सर। थैंक यू सो मच आकाश जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच। ये जुड़े थे आकाश जी मुंडा पांडे मुरादाबाद से, आप भी हमें फोन कर सकते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अगर आप भी हमारे साथ फोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं 9837896896 पर। हमारे इस नंबर के जरिए आप हमें फोन कर सकते हैं और हमारे साथ ढेर सारी बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल आकाश जी ने जो गाना मुझ तक पहुंचाया वो गाना तो मुझे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसी फिल्म का मैं दूसरा ट्रैक जरूर निकाल रहा हूँ आपके दोस्तों के साथ। आप एंजॉय कीजिए इस गाने को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना जरूर पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश भाई। चलिए श्रोताओं, आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम में और सुनते रहिए आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में भैया जो टाइम हो रहा है स्टेशन क्लॉक में 3:38 हो रहा है, यानी कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है यार, पता नहीं चल रहा है। धड़कन फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गाना निकल गया है आपके रेडियो सेट पे। अलका याग्निक, सोनू निगम साहब की आवाज, समीर साहब ने लिखा है, नदीम सिरवन साहब का म्यूजिक है। चलिए साथ में एंजॉय करते हैं।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

स्वागत है आपका एक बार फिर से, वेलकम बैक है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, प्रोग्राम है बिंदास बोल। और आज इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, आपसे ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं श्रोताओं, और बातें कर रहे हैं आज उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई प्रेशर है, कोई ना कोई स्ट्रेस है, बेवजह की बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी है। कैसे उससे हम दूर रह सकते हैं उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके ढेर सारे कॉल्स और मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। देखिए, एक संदेश हमारे पास पहुंचा है, ये मैसेज हमारे पास आया है बबलू जी का। वो लिखते हैं कि सर, मैं सुबह 10 मिनट के लिए ईश्वर का नाम लेता हूं, उनका ध्यान करता हूं, और पूरा दिन मेरा बहुत ही शांत रहता है और बहुत ही पॉजिटिव रहता है, और बहुत ही मैं अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाता हूं, और मुझे बेवजह की टेंशन लेने की आदत ही नहीं है सर। और मैं सबको ही यही मैसेज देना चाहता हूं कि बेफजूल की टेंशन ना लें। बहुत बढ़िया। एक संदेश और पहुंचा है हमारे पास, इनका नाम पल्लवी, इन्होंने बताया है। ये लिखती है कि मेरे लिए सुकून का मतलब है अपने पुराने दोस्तों से बातचीत करना। अगर आपको कोई टेंशन हो रही है तो आप 5-10 मिनट के लिए अपने पुराने दोस्तों से बात कीजिए, अपना फेवरेट कोई गाना सुनिए, देखिए आपका मूड तुरंत चेंज होगा। और जब आपका मूड चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी और आप भी थोड़ा सा हैप्पी फील करेंगे। लेकिन देखिए, बिल्कुल आपने बात तो सही कही है, लेकिन कोई भी चीज़ को ना एकदम से हल्का करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है ना। एक मैसेज और मिला है मुझे, नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून आनंद जी, आपको सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। जुल्फी भाई मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, लिखते हैं पहले मैं हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब समझ आया है कि हर समस्या का समाधान समय के पास होता है, इसीलिए बेवजह की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपकी समय के साथ ही बदलती हैं। बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूँ, बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही है जुल्फी भाई, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप भी अपने प्यारे प्यारे संदेश, अपनी प्यारी प्यारी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं इस प्रोग्राम में। दोस्तों, ज़िंदगी की रफ्तार कम नहीं होगी, लेकिन अगर हम रोज़ कुछ पल अपने लिए निकालेंगे तो शायद सफ़र थोड़ा सा खूबसूरत और आसान हो जाएगा, है ना। फिलहाल ढेर सारे कॉल्स मुझे मिल रहे हैं लगातार, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी प्यारी प्यारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे मुरादाबाद की जनता को, या जहां भी हमारी आवाम हमें सुन रही है, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं पूरी देश दुनिया तक, तो बिल्कुल आप पहुंचा सकते हैं। आपका स्वागत है इसी प्रोग्राम में जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हुए आगे बढ़ेंगे इसी प्रोग्राम में, और इस गाने को सुनने के बाद जब आएंगे तो फिर आपसे डिस्कस कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं 9837896896 पे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। अमरपाल ठाकुर जी जुड़ गए हैं मेरे साथ प्रोग्राम में, लिखते हैं नमस्कार जी, कैसे हाल चाल हैं। बहुत बढ़िया सर,

0: बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, रंग फिल्म से ये गाना था और आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, आपका फेवरेट प्रोग्राम जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। आज ये प्रोग्राम में जो है ढेर सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, आपके बहुत प्यारे प्यारे कॉल्स हमें मिल रहे हैं। श्रोताओं आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन के साथ, जहां देसी बातें होती हैं दिल से दिल तक वाली। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है अभिनंदन है। आप जुड़ सकते हैं 9837896896 पे। आजकल का लाइफस्टाइल इतना बिजी है, भागती दौड़ती जिंदगी है, ऐसे में हर इंसान को कहीं ना कहीं टेंशन है, तनाव है। कैसे आप उस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, कैसे जो बेवजह की हमने टेंशन ली हुई है इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? आप जब टेंशन में होते हैं या किसी स्ट्रेस में होते हैं या बेवजह की ओवर थिंकिंग में होते हैं तो आप कैसे बाहर निकलते हैं, आज आप हमें ये कॉल करके बता सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक भाई साहब फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं हमारे साथ कॉल पर। आइए उनसे बात करते हैं, कौन कहां से जुड़े हैं और वो क्या बात करना चाहते हैं हमारे साथ। हेलो, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, नाम बताएं। हेलो
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। चाकू लिया, जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल से
0: गणेश दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम बिंदास बोले, बताइए क्या करते हैं सर?
1: सर ये कार्य तो मैं छोटा सा किसान हूँ।
0: अच्छा, किसान है, बहुत बढ़िया। तो इस समय तो बारिश की थोड़ी बहुत दिक्कत चली रही है?
1: बारिश तो नहीं हो रहा है।
0: वही ना, तो बारिश की दिक्कत तो हो रही है ना, धान लगाना है लोगों को।
1: हाँ वो तो है, लेकिन क्या करे, किसान लोग परेशान है। और जो है हम खास करके हमारे पश्चिम बंगाल में,
0: हाँ
1: कहते हैं ना, भगवान भरोसे मतलब खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा,
1: एक लोग मतलब खेती जो है,
0: अच्छा अच्छा,
1: धान लगाया जा रहा है।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इस वक्त आप खेती बाड़ी में क्या कर रहे हैं, क्या लगाया हुआ है आपने
1: खेती बाड़ी में? हाल फिलहाल धान।
0: अच्छा, धान लगाया हुआ है,
1: लग रहा है मतलब अभी।
0: अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा गणेश दास जी, आज हम बात कर रहे हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ में परेशान है, टेंशन है, हर किसी इंसान के ऊपर कोई ना कोई एक जिम्मेदारी है, एक प्रेशर है, तो वो कैसे अपने स्ट्रेस को, अपनी टेंशन को दूर कर सकता है? आपके पास क्या तरीका है, आप कैसे बाहर निकलते हैं टेंशन से?
1: देखिए टेंशन तो कभी इंसान को तो टेंशन खत्म होगा ही नहीं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: चाहे वो अमीर व्यक्ति या वो गरीब व्यक्ति, टेंशन रहते ही रहेगा।
0: करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल राइट।
1: क्योंकि कहते हैं घर में एक नया बीवी का टेंशन, बाहर दुनिया का टेंशन।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप।
1: ये भी बात इसमें थोड़ा सा आते हैं तो टेंशन होगा ही, परिवार के जो खास करके जिम्मेवारी है सबको ही समझते हैं। हम
0: बिल्कुल सही कह रहे
1: हैं, अगर समझे तो खर्चा दो रुपये आए।
0: सही बात है सर, ये भी कारण हो सकता है बड़ा, है ना
1: जी।
0: बहुत बढ़िया, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते आप गणेश दास जी?
1: बस कहें कि मतलब मेहनत करते हो, मेहनत करते ना फल तो मतलब जरूर मिलेगी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने बहुत दूर से फोन किया है, पश्चिम बंगाल से आप जुड़े हमारे साथ इस प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गणेश दास जी। और चलिए खूबसूरत गीत सुनवाते हैं हम आपको अपनी तरफ से, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय बाय सर, नमस्कार। दोस्तों आप ऐसे ही जुड़े रहिए इस प्रोग्राम में, बातें जहां होती हैं दिल से दिल तक। अगर आप भी कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।

स्टेशन की घड़ी में वक्त 4 बजने को है और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो से आप जुड़े हुए हैं। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फिलहाल एक खूबसूरत गीत, इसके बाद वापस एंट्री होगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। अगर आप भी संदेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए जी, आपका स्वागत है। अभी लौट कर आते हैं खूबसूरत ट्रैक के बाद।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
4: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
3: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
3: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
4: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
3: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
4: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
3: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
4: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
3: EKCC, साख से समृद्धि।
4: नियम और शर्तें लागू।
5: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
6: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
7: नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आनंद को, प्रोग्राम है बिंदास बोल। और इस प्रोग्राम में तमाम सारे संदेश मुझे मिल रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आपके आ रहे हैं, ढेर सारे कॉल्स मुझे आ रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके की आप लोग जो है एडवाइस दे रहे हैं, कैसे आपको तनाव से दूर रहना है, कैसे आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। थैंक यू सो मच। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं 9837896896 के जरिए। आइए अब जरा जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, कौन कहां से जुड़े हैं। हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
1: हेलो
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, अपना नाम बताएं।
1: अभी तो बताया था आपको, किशन पाल सिंह।
0: किशन पाल जी, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, मुझे थोड़ी भूलने की बीमारी हो गई है आजकल, क्या कर सकते हैं।
1: ऐसा तो हो नहीं सकता कि आनंद जी भूल जाए। आनंद
0: है। अरे बहुत बढ़िया। और बताइए सर, कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में? अब आपको जनता सुन रही है ना, मैं मुझे तो बता दिया, पूरी जनता को तो बताए।
1: मुरादाबाद में रहता हूँ, फरेदी गाँव पड़ता है, फरेदी।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर असल जिंदगी में क्या करते हैं आप?
1: जिंदगी में बस चलता फिरता है, ये तो क्या नाम है, जहाँ पैर जाए वहीं शाम हो जाती है, और करते क्या है, यही है कमाना खाना।
0: नहीं मतलब, तो आप क्या करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं या मतलब इस क्या करते हैं आप?
1: मैं
0: वो आप
1: मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, क्या नाम, मैंने ठेके पे ले रखी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। और रेडियो से जुड़े रहते हैं आप, हमारे इन प्रोग्राम से कार्यक्रम से सुनते रहते हैं?
1: यहाँ पर खाली रहना है 24 घंटे, तो आपकी एफएम ही सुनते रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको अच्छी लगती है प्रेजेंटेशन जो प्रोग्राम आते हैं?
1: मैं तो सर आज से नहीं, मैं तो सीलोन और जब लोग पुराने जमाने से रेडियो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह अरे वाह, मतलब आप काफी पुराने एक्टिव लिसनर हैं, नो डाउट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा तो आज हम साहब बात कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में। हर इंसान की जिंदगी में एक टेंशन है, एक प्रेशर है, कुछ ना कुछ जिंदगी में चल रहा है, तो कैसे इन चीजों से छुटकारा पाया जा सकता है?
1: मैंने आपको गाने का बताया तो था।
0: कौन सा गाना बताया था आपने, आप बताएं जरा।
1: दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया।
0: अच्छा, अरे वाह, इसका मतलब भी समझा दीजिए जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: इसको मैसेज देना चाहता हूँ कि इतना मतलब इतनी चिंता ना करो, औरों को देखो और हमसे भी नीचे कितने परेशान है बेचारे, और आप चिंता ही करते रहेंगे तो चिंता में डूबे हुए तो आदमी उछल नहीं सकता।
0: बिल्कुल, और उसमें फिर कोई समस्या का समाधान भी नहीं मिल पाएगा, है ना?
1: नहीं जी, इसका कोई समाधान यही है कि दिल को शांत रखो और मन को शांत करने से ही चिंता दूर होती है।
0: बिल्कुल, और अच्छा म्यूजिक सुनना भी अपने आप में एक अच्छी बात है, वो भी आपका टेंशन कम करता है।
1: भाई चिंता तो चिता समान है।
0: बिल्कुल,
1: अगर चिंता करेंगे आप कम करेंगे तो आपको बस लास्ट पॉइंट वही जाके
0: सही कहा आपने,
1: नहीं तो आप गुनगुनाते रहो, गाने सुनते रहो और टेंशन दूर करो।
0: चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी आपसे फिर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच आपने फोन किया साहब, ठीक है?
1: नमस्कार
0: नमस्कार भाई साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप भी दोस्तों हमें फोन कर सकते हैं, हमारे जो नंबर्स हैं वो एब्सोल्युटली खुले हुए हैं आपके लिए, डेफिनेटली आप हमें फोन कर सकते हैं। बॉस नंबर है 9837896896। कुछ टिप्स एंड एडवाइस है जो आपको देकर जाऊंगा।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
0: एक खूबसूरत गीत है जो आपके रेडियो सेट पे निकल गया है और इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे मैं और आप, और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो फिर किसी एक कॉलर को साथ में रखेंगे अपने, देखते हैं वो कॉलर कौन होगा जो हमारे साथ कनेक्ट होगा। अगर आप भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं जी, नंबर बहुत सिंपल है, फिर से रिपीट कर देता हूँ 9837896896। भैया हम चाहते हैं कि नंबर आपको ना ये याद हो जाए, बहुत अच्छे से याद हो जाए कि मतलब आप जब भी फोन मिलाएं तो आपको ये नंबर याद रहे और आप बहुत इजीली मिला लेंगे, मुझे पता है। चलिए फिलहाल एक गीत निकल गया है, खूबसूरत ट्रैक, इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, वेरी वेरी गुड इवनिंग।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

वेलकम बैक यू वंस अगेन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, प्रोग्राम है बिंदास बोल और स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 4:19।

0: चलिए श्रोताओं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ढेर सारे कॉल्स और मैसेज मुझे लगातार मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग तमाम अच्छी अच्छी बातें साझा कर रहे हैं। हेलो, नमस्ते।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है, अपने बारे में बताएं। आपका शुभ नाम बताइएगा, कौन बात कर रही मैम, कहाँ से?
1: मुस्कान बात कर रही हूँ मैं, आई
0: जब। अच्छा मुस्कान जी, कैसे हैं आप? आरटी ऑफिस से फोन किया है आपने।
1: बढ़िया है सर, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मुस्कान जी, काफी समय के बाद हमारी आपकी बातचीत हो रही है ना।
1: जी
0: जी जी जी बिल्कुल। तो आपका लंच हो गया मुस्कान जी?
1: जी हो गया।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मौसम कैसा हो रहा है?
1: शाम का खाना बना रहा है।
0: अच्छा अभी से? अभी तो 4 बजा है
1: जी, बनाने लग गए खाना हम।
0: अच्छा अच्छा, तो कितने बजे आपका शाम का खाना हो जाता है जो इतनी जल्दी आप बनाने लगे हैं?
1: जी सर, हम 7 बजे खा लेते हैं खाना।
0: अरे वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप जल्दी सो भी जाते होंगे, फिर सवेरे जल्दी उठते होंगे।
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया, ये एक बहुत ही अच्छा रूटीन सेट किया है आपने। अच्छा आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई टेंशन है, हर इंसान किसी न किसी प्रेशर के साथ लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है कि यार नहीं अब और ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अब और टॉलरेट नहीं कर सकते। कैसे अगर किसी को टेंशन होती है तो बाहर निकल सकता है, आप कैसे निकलती हैं जब कोई तनाव होता है तो?
1: सर अगर हमें टेंशन होती है, हम टेंशन को इग्नोर करते हैं और अपने हस्बैंड के पास कहीं घूमने चले जाते हैं, बस यही, मतलब इग्नोर कर देते हैं टेंशन को।
0: ओके, मतलब आप
1: टेंशन लेते नहीं है।
0: बहुत बढ़िया, अगर आप कहीं घूमने जाती हैं तो आपको लगता है कि आपको उससे थोड़ा सा आराम मिलता है, टेंशन से आप फ्री हो जाती हैं?
1: कहीं चले जाते हैं माइंड फ्रेश हो जाता है थोड़ा सा, या फिर अपने नाइके चले जाते हैं हम तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है।
0: बहुत बढ़िया, तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं मुस्कान जी, आपका तो नाम ही बड़ा प्यारा है, आप क्या कहना चाहेंगी उन्हें? अगर कोई किसी टेंशन से जूझ रहा है, किसी की जिंदगी में कोई परेशानी है, तो कैसे वो बाहर निकल सकता है?
1: बस यही कहना है कि खुश रहे, मतलब टेंशन तो हर इंसान को होती ही है,
0: तो थोड़ा सा उसे लाइफ है तो टेंशन होना तो कंपलसरी है ना,
1: एंजॉय करें बस, खुश रहने की कोशिश करें।
0: कुछ लोग तो इतनी बेवजह फालतू का टेंशन ले लेते हैं, आज को जीने की बजाय कल के बारे में सोच रहे होते हैं, परसों के बारे में, 60 साल के बारे में सोच सोच के आज का दिन भी खराब कर लेते हैं, वो तो बेफजूल की टेंशन वाली बात हो गई ना।
1: और बहुत सारे लोग इस बात की भी टेंशन लेते हैं कि वो मेरे से अच्छा है, वो मेरे से अच्छा कहता है, मेरे से अच्छा खा रहा है, तो दूसरे लोगों से ज्यादा मतलब जलते हैं।
0: राइट राइट, तो वो बेवजह का खुद को तकलीफ देना है मुस्कान जी, है ना? तो ये भी कहीं ना कहीं गलत चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और हो सकता है जो आपके पास है, जो आपके पास है वो हो सकता है किसी का सपना भी उसके पास ना भी हो।
1: सही बात है
0: ना, तो शुक्राना जी, बोलिएगा आप।
1: मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है जो भगवान हमें दिया है वही हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं होता, कुछ लोगों के पास मतलब होते हैं बहुत सारे लोग।
0: वही मैंने कहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हम ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए उनको साइड में रखते हुए अपने जीवन का आनंद लें, क्योंकि समय बहुत खूबसूरत है, लाइफ बहुत प्यारी है ना, तो ज़िंदगी को जीते चले जाएं, बहुत खूबसूरत लाइफ है। मुस्कान जी आपने फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा, आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। आज आपको कौन सा गाना सुनाएं ताकि आपकी मुस्कान और बढ़ जाए? थैंक यू, कौन सा गाना सुनेंगे आप? चलिए मैं सर्च करता हूँ, अगर मुझे मिलती है तो जरूर मैं इसको प्ले करूंगा आपके लिए।
1: आपका जो गजल है वो
0: पक्का पक्का पक्का। थैंक यू मुस्कान जी, बाय बाय।

श्रोताओं, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अभी भी टाइम है आपके पास, 9837896896 पे आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की इस बेहतरीन सी ये जो एक महफिल जमी हुई है, ये जो एक खूबसूरत सी बातचीत का एक सिलसिला बना हुआ है, इसमें आप भी जरूर जो है अपनी अटेंडेंस लगाएं। आप भी हमें जो है अपने प्यारे प्यारे संदेश पहुँचा सकते हैं या हमें आप कॉल के जरिए भी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए मैम, आपने जो गज़ल की बात करी थी वो तो खैर नहीं मिल पा रही है मुझे, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन गाना सुनवा रहा हूँ, ये ज़रूर आपको पसंद आएगा मुस्कान जी।

0: श्रोताओं, प्रोग्राम चल रहा है बिंदास बोल। मैं हूं आपका दोस्त आनंद। इस वक्त जो है स्टेशन की घड़ी में वक्त हो गया है, घड़ी वक्त बता रही है 4:29 हो गए स्टेशन क्लॉक में। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम में तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं 9837896896 इस नंबर के जरिए। श्रोताओं, ढेर सारे संदेश भी आपके आए हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप अपने तनाव और टेंशन से कैसे खुद को दूर रखते हो, यही हमने आपसे पूछा था। ढेर सारे संदेश मेरे पास पहुंचे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, इनका नाम इन्होंने लिखा नहीं है, यही तो गड़बड़ हो जाता है। देखिए जनाबे अली, आपने संदेश इतना अच्छा किया है, नंबर के 4 डिजिट है इनके 8821, आपको अपना नाम भी लिखना चाहिए था ना। लेकिन मजे की बात ये कि इन्होंने मगर बहुत ही अच्छी चीज लिख कर पहुँचाइए। इन्होंने लिखा है, आनंद जी देखिए, माना कि आजकल की जिंदगी बहुत बिजी है, बहुत सुपर फास्ट है, लेकिन इतनी भी फास्ट क्या होना कि जिसमें आपको टेंशन ही टेंशन हो। और दूसरा लिखते हैं कि देखिए, सबसे पहले तनाव लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमें तनाव हो भी रहा है, अगर हम टेंशन में हैं भी, तो इस टेंशन को थोड़ा सा दूर करने का कोई ना कोई फंडा हर किसी के पास होता है, एंड मुझे यकीन है आपके लिसनर के पास भी होगा। जी बिल्कुल ज़रूर। साथ में ये लिखती है कि मैं जब भी तनाव में होती हूँ तो मैं पुराने गाने सुनना पसंद करती हूँ। 90s के गाने सुनते ही ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई है। तो मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगी आनंद आपके शो के ज़रिए कि सारे लोग अगर 90s के गाने सुने तो शायद उनमें एक मैसेज होगा, एक थॉट होगा, और उनको सुन के टेंशन डेफिनेटली कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा जी, थैंक यू सो मच। अपना नाम ज़रूर लिखिएगा नेक्स्ट टाइम। हाँ चलो, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ी हुई है, आइए उनसे मुखातिब होते हैं लाइव, उनसे बातचीत करेंगे कौन कहाँ से जुड़ी हैं और किस आज जैसे हमने आपको बताया है कि आज हम स्ट्रेस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनकी क्या राय है, उनकी क्या ओपिनियंस है, बहुत मैटर करते हैं, आइए बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में, नमस्कार, अपना नाम बताएं। आपको भी आदाब जी, अपना शुभ नाम बताएं मैम। जी जी निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। सब बढ़िया है निशा जी?
1: जी सर, हमारे
0: सब सब बहुत बढ़िया है। तो निशा जी बताइए, और क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, बारिश वारिश नहीं हो रही, गर्मी काफी तेज हो रही है?
1: जी सर, गर्मी काफी हो रही है, बारिश नहीं हो रही
0: है। ऐसे में कूलर पंखों का जो है प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है ना?
1: जी सर, लाइट भी तो परेशान कर रही है।
0: ये तो अक्सर होता है, ये तो खैर अक्सर होता ही है। और बताइए निशा जी, आज हम थोड़ी सी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, लोगों की हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई दिक्कत है, किसी को सिर्फ इसी बात की टेंशन रहती है कि वो मेरे से ज्यादा खूबसूरत दिखता है, तो किसी को इस बात की टेंशन रहती है कि वो मुझसे अच्छा ज्यादा पैसा कमाता है, जबकि ये बेवजह की टेंशन है। वही तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह की टेंशन ले लेने लगते हैं, बेफजूल की टेंशन।
1: सर, हम तो यही कहेंगे, अपने आप मेहनत करिए, मेहनत से अपने आप खूब आगे बढ़िए, मतलब जब अपने आप सपने देखेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, सपने देखते ही, मतलब सपनों से इंसान आगे बढ़ता है, सपने देखो कभी ना कभी तो पूरे होते ही हैं, लेकिन इंसान को कभी इस तरह की हकीकत में मतलब जानना नहीं चाहिए कि हमसे ज्यादा कमा रहा है, हमसे ज्यादा बेकार भी पड़ेंगे इस दुनिया में, बेचारों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल गया, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं।
0: बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो बहुत खूबसूरत बात आपने कही। खैर, और हमें हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, देखिए हमारी इंसानी सोच की यही मतलब है।
1: अगर हमसे कोई ऊपर पहुंच जाए तो ये सोचो उसने बहुत मेहनत करी होगी हमसे ऊपर जाने के लिए, नहीं है मतलब हम उसे नीचे गिरा कर सब ऊपर गया वो।
0: देखिए निशा जी, प्रॉब्लम यही होती है ना कि हम किसी की मेहनत और स्ट्रगल नहीं देखते, सिर्फ हम ये देखते हैं कि वो शिखर पे पहुंच गया है।
1: कुछ लोगों में होती है ये वाली जलिस वाली बात, लेकिन हम में नहीं है, हम तो ये सोचते हैं अल्लाह हर किसी को उसकी मेहनत में मतलब इतना कर सकते हैं फुल करके वो हर अपनी मुराद पूरी कर सके।
0: वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल ख्वाहिशें हर किसी की पूरी होनी चाहिए, अगर कोई तमन्ना है तो वो पूरा होना बहुत जरूरी है ना, उसके लिए आपको भी तो मेहनत करनी पड़ती है ना। अच्छा, बाकी अगर कभी आप टेंशन में होती हैं या कभी आपको कोई बेफजूल का स्ट्रेस होता है तो आप कैसे बाहर निकलती हैं, कौन सा फंडा आप फॉलो करती हैं निशा जी?
1: और दूसरी बात ये है कि हमारे मम्मी पापा सब रहेंगे घर में, हम बहुत बड़ी फैमिली से, लेकिन हम कोई भी बड़ी टेंशन नहीं है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप औरों को क्या सलाह देंगी अगर कोई बेफजूल चिंता में है?
1: अब हम रेडियो ऑन करके गाने चुपचाप लोगों को सुनने लगते हैं।
0: ये तो सबसे अच्छा तरीका है और गाने सुन के भी टेंशन दूर हो जाती है, अभी बहुत सारे लिसनर ने भी कहा। बिल्कुल बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल। और महाभारत बड़ी वाली होती है इनफैक्ट। सही कहा आपने, सही कहा। अच्छा निशा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने तमाम अच्छी अच्छी बातें करी, बहुत बहुत थैंक यू। और होना भी नहीं चाहिए, अगर आपकी लाइफ में वो टेंशन है तो हम चाहेंगे भी कि ये आगे भी ना हो, आप ऐसे ही अपने जीवन का आनंद लें। आज कौन सा गाना सुनेंगे आप ये बताओ। चलो
1: गाने की फरमाइश कर रही हूँ,
0: बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही अच्छी फिल्म है ना।
1: चलिए
0: बहुत अच्छा लगा निशा जी आपने फोन किया, आप अपना ख्याल रखिए खूब सारा और ऐसे ही जो है हमारे प्रोग्राम्स के साथ जुड़ी रहिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच निशा जी। निशा जी हमारे साथ जुड़ी थी, श्रोताओं आप भी जुड़ सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। 4:35 हो गए स्टेशन की घड़ी में, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। और अभी एक खूबसूरत ट्रैक, ये गाना जो है निशा जी की रिक्वेस्ट पे निकला है, तो ऑफकोर्स गाना अच्छा ही होगा और हम सभी का फेवरेट होगा।
2: ये दोस्ती तेरे दम से है,
0: आप भी तो हमारे दोस्त हैं, तो ये गाना आपके लिए भी।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
8: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
5: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: श्रोताओं, स्टेशन की घड़ी में वक्त हो गया है 4:44, और आज 5 जुलाई का ये दिन रविवार की शाम, और ये शाम धीरे धीरे अब जो है बढ़ने पर ही है, ढलने पर ही है, और मौसम जो है वो तो आप देख ही रहे हैं कैसा हो रखा है। करंट टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ अभी की, तो फिलहाल 36 डिग्री दिखा रहा है, एंड ये बादलों के साथ साथ जो उमस हो रही है गर्म वाली, इससे आपको बच के ही रहना है, और बस पानी का इंटेक आप लेते रहें, हाइड्रेटेड रखें खुद को, पानी पीते रहें। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं। ढेर सारी कॉल्स और संदेश लगातार मुझे मिल रहे हैं, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम है बिंदास बोल, और ढेर सारे हमारे साथ श्रोता साथी जुड़े हैं, जरा इनका वॉइस नोट सुनते हैं। जरा
1: राधे राधे।
0: राधे राधे मैम।
1: आनंद जी, सभी के लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते हैं, थोड़ी टेंशन हो जाती है, पर बट अपने ऊपर है कि उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए है कि थोड़ा हम तो, मुझे भी कभी जब टेंशन हो जाता है तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ, और जो मेरे शौक हैं उसको हम पूरा करते हैं। और थोड़ा घर के बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, ताकि घर का माहौल से थोड़ा बाहर निकले। और कोई प्रॉब्लम अगर घर में है किसी मेंबर से, तो उससे खुल के बात करनी चाहिए, जो हमारी फीलिंग समझ सके, उससे हम बातें अपनी शेयर कर सकते हैं। और यही है कि अगर खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो खुद भी वो रहेगा, नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए कि आज धूप है तो कल छांव है। तो लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसी तरह सुख भी रहता है, दुख भी रहता है लाइफ में, तो हमें उसका सामना करना चाहिए। और खुद ही, मुझे अपने को ही करना पड़ता है, बट किसी दूसरे को नहीं करना पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा टेंशन नहीं पालना चाहिए, जो है भगवान का शुक्र करना चाहिए कि बस हम अच्छे हैं, फिट हैं, बस। और क्या कहूँ।
0: नहीं, बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अलका वर्मा जी बुद्धि विहार से जुड़ी हैं, और देखिए बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही कड़क और कड़ी बात कह के चली गई हैं। बहुत बहुत सबसे पहले शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप जुड़ी हमारे प्रोग्राम में, हमेशा आप जुड़ती हैं अलका जी, आपका दिल से आभार। श्रोताओं, इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, आइए जरा अपने कॉलर से बात करते हैं, कौन कहां से जुड़े हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में, अपना नाम बताएं, आपका शुभ नाम क्या है सर?
2: मोहम्मद रिजवान।
0: मोहम्मद रिजवान जी, इस वक्त आप कहां से जुड़े हैं हमारे साथ प्रोग्राम में?
2: जिला मुरादाबाद।
0: अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो रिजवान जी, क्या कर रहे हैं अभी आप? काफी आवाजें आ रही हैं खटर पटर की।
2: तो इस समय मैं काम कर रहा हूँ, चिनाई का आशियाना बना रहा हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आशियाना बनाते बनाते आपने हमारे आशियाना में फोन कर दिया, ये तो बड़ी मजे की बात है।
2: आशियाना बनाता बनाती कर दिया।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। और रेडियो सुनते रहते हैं आप?
2: जी, रेडियो सुनता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, काम करते करते जो है समय का पता नहीं चलता ना?
2: पता नहीं चलता, रेडियो चलता रहता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और क्या करते हैं इसके अलावा रिजवान जी आप?
2: वो खेती का काम है बस, थोड़ा 20-22 बीघे जमीन है, उसकी खेती कर लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया, तो अभी धान की रोपाई शुरू की है या नहीं आपने?
2: कर दिए शुरू, लगा दिए हैं कोई 7-8 बीघा।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बारिश का इंतजार करते रहेंगे तो फिर हो ही नहीं पाएगा ना?
2: बारिश हो जाती तो बारिश का ही इंतजार है, अगर बारिश हो जाती तो होल लगा देते अभी 11 भी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। और बताइएगा, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो रिजवान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, शायद कोई नेटवर्क इशू होगा जिसकी वजह से बीच में ही संपर्क टूट गया है रिजवान जी से। खैर दोस्तों, आप भी हमारे साथ अभी भी जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में, समय है, समय अभी कितना हो रहा है, फिलहाल 4:50 होने को हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है, 9837-896-896 पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप हमारे साथ फ़ोन कॉल के जरिए भी जुड़ सकते हैं।

0: तो चलिए श्रोताओं, फाइनली जाने का समय हो गया है, और कैसे ये समय मतलब कंप्लीट हो गया आपके साथ बातचीत करते करते, पता नहीं चला कैसे 2 घंटे गुजर गए। समय का जैसे मानो पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर अभी फिलहाल अब स्टूडियो की घड़ी जो है मुझे इजाजत नहीं दे रही है कि मैं आपसे और वार्तालाप करूँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम आपको जरूर मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और आज ढेर सारी बातें मुझे जो है आपसे जानने को मिली, सबने अपने अपने ओपिनियन शेयर किए। किसी ने बताया मेडिटेशन करो, तो किसी ने बताया आप अपनी पसंद का गाना सुनो, तो किसी ने बोला आप शॉपिंग करने जाओ। तो जो अलग अलग तरीके के आप लोगों के एडवाइस थे, अल्टीमेट थे, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच मुरादाबादी। चलते चलते एक और हमारे शो में एक लास्ट कॉलर जुड़ी है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत प्यारी आवाज है जी। अपना नाम बताएं, कहां से कौन बोल रहे हैं मैम? अरे वाह, नैनीताल से जुड़े हो, बहुत बढ़िया, खूबसूरत शहर है नैनीताल। पहले ये बताओ वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है?
1: बहुत अच्छा है, कोहरा है अभी।
0: अरे बाप रे, कोहरा! ओ माय गॉड, यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है, वहाँ कोहरा हो रहा है सच में?
1: जी, आप बताइए।
0: यहाँ पर तो गर्मी है, बारिश का इंतजार हो रहा है, लेकिन बारिश अभी हुई नहीं है।
1: अच्छा, आपके वहाँ पे एक्चुअल में दिसंबर पे कोहरा आता है, यहाँ पर अभी आता है।
0: अच्छा, ओ माय गॉड।
1: लेकिन आपका कोहरा ठंड करता है, यहाँ पे कोहरा ठंड नहीं करता।
0: अच्छा, मतलब सिर्फ धुंध रहती है ऐसा?
1: बिल्कुल,
0: मौसम सुहाना रहता होगा ना फिर तो, मतलब नैनीताल का। वहाँ बारिश होती रहती होगी आई एम श्योर अभी भी?
1: हाँ, बारिश रहती है।
0: चलो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे मौसम का लुफ्त उठाना चाहिए। और इस समय में तो वैसे भी नैनीताल में टूरिस्ट का काफी रश है, क्योंकि ये भी छुट्टियां खत्म हुई है, तो लोग घूम घूम के निकले हैं वहाँ से। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती हो? आज हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे, टेंशन के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारी ओवरथिंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो जाते जाते आप कुछ कहना चाहें हमारे लिसनर्स को, बताना चाहें?
1: हम तो बस इतना कहते हैं कि सच कहते हैं, स्ट्रेस ना आपकी कोई चीज नहीं होती।
0: ओके,
1: स्ट्रेस हमें तब होता है जब हम दुख को अपना मान लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी परिस्थितियां हमें हमारे खिलाफ आती है, तो हम उन्हें अपना समझने लगते हैं। हम अगर उन्हें सरेंडर कर दें तो शायद स्ट्रेस कम हो, स्ट्रेस हो ही ना।
0: बिल्कुल, लेकिन अगर आपको कभी टेंशन होती है, आपको कभी कोई तनाव होता है, तो आप कैसे बाहर निकलती हैं? आपकी क्या फंडा है?
1: एक्चुअली ये जब होता है तो मैं रो लेती हूँ, क्योंकि रोने से क्या होता है कि अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है।
0: ओके, रोने से भी स्ट्रेस कम होता है, ये आज मैंने सुना है पहली बार। किसी ने बोला शॉपिंग करो, गाना सुनो, मेडिटेशन करो, घूमने जाओ, ये सब तो मैंने सुना ही था।
1: ये तो है ही, ये तो फिजिकल है ना, एक बार अपने अंदर खुद के साथ, खुद से जुड़ने के बाद होता है कि
0: समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपका कहना भी सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है अपने अंदर की चीजों को भी पहचानना, खुद से भी कनेक्ट होना बहुत जरूरी है ना।
1: क्योंकि क्या होता है कि म्यूजिक तो ये बाद में आया है ना, पहले तो हम है, पहले हमारी खुशी, हमारा दर्द, हमारा सुकून है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच भावना, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहते हो चलते चलते? समय बहुत कम है मेरे पास, कुछ कहना चाहें तमाम लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो पे?
1: कहना तो बस इतना चाहेंगे कि जब स्ट्रेस हो तो बस एक बार खुद के साथ जुड़ लेना, अगर कोई बुरी परिस्थिति आए तो उसको एक बार सरेंडर करके देखना, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं आई है, वो ऊपर वाले ने भेजी है, उसे वही ठीक करेगा।
0: राइट, तो कुछ चीजें समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए और ऊपर वाले के ऊपर, है ना? थैंक यू भावना मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप अपने मौसम जो आपके शहर में कोहरे वाला है उसका आनंद लेते रहो, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप जुड़े, बाय बाय। वेलकम, ये जुड़ी थी नैनीताल से भावना जी हमारे साथ, जिन्होंने मौसम का हालचाल बताया और साथ में ढेर सारी अच्छी बातें भी बताई। चलिए श्रोताओं, फिलहाल अब मैं यहाँ से लेता हूँ जाने की इजाजत, जल्दी आपसे होगी मेरी मुलाकात इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, जल्दी आपसे मिलेंगे हम इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप भी टेंशन फ्री रहिए, अच्छे अच्छे गाने सुनने के लिए एफएम मुरादाबाद 89.6 को ट्यून इन रखिए। यहाँ पर ऐसे गाने बजते हैं जिनको सुन के आपकी टेंशन हो जाती है छू मंतर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दिल से थैंक यू करना चाहते हैं। एक अच्छे से गाने के साथ छोड़ के जा रहा हूँ आप सभी को, जल्दी मिलेंगे हम आपसे। आप जो है ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए हमारे साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी संडे, खूब सारा एंजॉय कीजिए और टेंशन को जरा बाय बाय करिए अभी के लिए। बाय बाय मेरी

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: ਡਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਸ ਵੱਲ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਗਲੀ ਦੀ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੀ ਖਤਮ ਥੀ ਗਈ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: हेलो जी, नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
5: प्राची।
4: Yes, और प्राची, आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
5: हाँ, किस चीज की बताइए?
4: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
5: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
4: बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद, और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
5: और मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र, और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
4: और आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहाँ की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहाँ गलियों में स्वाद बसता है और जहाँ हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
5: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा, और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
4: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी,
1: और सामने बड़ी से भगौड़ी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: चलिए बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का हर संभव मदद मिलती है, लोगों संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़े और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गांव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रही है।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
0: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर।
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: You are listening to Coke Studio Pakistan on Savan.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसे टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
3: देखिए मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
2: सही
3: का तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
2: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
3: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
3: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
2: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
3: ये आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो बात जो अदालत ने जो बात कह दी है आप उस चीज को नहीं मान रहे हो, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
2: शो आगे बढ़ते हैं यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
3: देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कोर्ट सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है तो, लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
2: सुना सकती है, बिल्कुल
3: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
2: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
3: देखिए अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकती है। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पे कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
2: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
3: विशेष तौर पे पांच तरीके की रिट्स होती है ये भारत में। कुल जो पांच तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो पांच रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा। तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ बोलती है फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
2: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
3: अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पर जो हैबियस कॉर्पस रेट होती है ये रेट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको। थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पे रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है तो उसके लिए इसमें विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये इस सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाईकोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पे बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है या नहीं है। हाँ, तो मुख्यतः ये पांच रिट होती हैं तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते।
2: अंत में सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
3: देखिए, कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है, हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ।
2: परफेक्ट हूँ बिल्कुल।
3: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन्स को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स
2: हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
3: मेरे को मानत उपाधि एक यूनिवर्सिटी से मिली थी, और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरेरी स्कॉज में मानत उपाधि मिली हुई।
4: वैसे
3: बाइक क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और एलएलबी मेरा है, और अभी नाउ आई एम परसुइंग एलएलएम।
2: LLM. तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
4: देखिए,
3: बाकी सब तो ठीक है, मेरा वो बेसिक जो है मेरा खुद का ड्रीम था, हाँ मुझे एमकॉम करना है, उसके बाद मेरे को एमबीए करना है, लेकिन एलएलबी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
2: हाँ सर, वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
3: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में, किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कंप्लेंट करी थी, और वो फेक कंप्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल एथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को, मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं। मैं इसको
2: बिल्कुल, क्या बात,
3: क्योंकि इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है, तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
2: बिल्कुल,
3: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा, मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में,
2: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारे गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।
3: बस तो एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
2: और कहते हैं ना सर, एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो, तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती
3: है, मिलती है, और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, सही।
3: मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने एक जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में, आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हम ना वहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल
3: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिंदगी, वो एक गाना ना, जीवन चलने का नाम चलते रहना है सुबह शाम।
2: बिल्कुल,
3: तो बस यही लाइफ है
2: सर। किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल। किताबें ही आपकी
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहा आपने।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: क्या आप सर दर्द कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: हेलो जी, कैसे हालचाल है? यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, एक खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूं भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
4: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
5: हाँ हाँ,
4: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
5: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
4: जी,
5: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं
4: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
6: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं जिसका नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
4: चलिए बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
6: हाँ तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
4: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
6: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
4: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
6: देखिए आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए। और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
4: करेक्ट करेक्ट।
6: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
4: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
6: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
4: बहुत जरूरी है।
6: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पे हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी पड़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
4: उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
6: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
4: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है शायद, अगर मैं कहूँ तो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देके जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
6: ये टॉपिक इतना डीप मैं कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
4: आई थिंक
6: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और हमारे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
4: क्या बात है।
6: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
4: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का,
6: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
4: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह क्या बात है, लेकिन सर मजा उसी में है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल,
4: है ना
6: बिल्कुल।
4: जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो और मजा आता है।
6: देखिए फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके, उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
4: हर किसी बंदे को हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं में चल रही है,
6: देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
5: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
6: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
5: ओके, लिटिगेशन,
4: ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
6: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
4: ओके,
6: ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
4: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का यू नो जिक्र होता है?
6: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
4: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर।
6: PIL,
4: PIL का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
6: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
4: लिटिगेशन के बारे में बात करें।
6: देखिए, जो लिटिगेशन होती हैं, लिटिगेशन इज अ काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
4: ठीक है,
6: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
4: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
6: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
4: करेक्ट,
6: उसको बैठ के
4: समझौता किया जाए,
6: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाव पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए,
4: मतलब दोनों पार्टी के बीच।
6: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
4: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
5: जी? हाँ हाँ, बिल्कुल।
4: यस, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
6: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
4: हाँ ठीक है,
6: सुनी होगी ना?
4: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
6: तो PIL क्या होता है? एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
4: करेक्ट
6: ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लिटिगेशन यानी याचिका।
4: राइट,
6: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए ये फाइल नहीं कर सकता,
4: ठीक है,
6: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को वो प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की है वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं, या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है।
4: ओके,
6: ठीक है,
4: अच्छा,
6: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेट करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होती है, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए।
4: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
6: बिल्कुल,
4: तो पब्लिक की हित की बात,
6: पब्लिक की बात होनी चाहिए।
4: करेक्ट,
6: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
4: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
6: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
4: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
6: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी
4: आप पब्लिक के लिए ही,
6: पब्लिक के लिए होनी चाहिए। सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
4: राइट,
6: वो कोई चीज को लेकर पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला सकते हैं।
4: बेसिकली मॉडल ऑफ पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल रही
6: है, बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके साल
4: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरकार दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर। पहला क्वेश्चन इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली
6: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका होती है पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही।
4: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
6: जो हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट हो रहा होता है तो उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं। इंडिविजुअल

0: के तौर पे नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पे कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और दो एप्लीकेशन।
1: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी व्यक्ति या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
0: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
2: ठीक है,
0: उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते, उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है जो और लिटिगेशंस हैं और जो एप्लीकेशन है वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
2: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। सर अच्छा ये बताइए, PIL और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
0: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूं,
2: ठीक है,
0: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
2: ठीक है,
0: लेकिन PIL सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता PIL नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
1: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
0: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेश आप PIL दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हो, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हो तो उसके खिलाफ भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं।
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं PIL की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
0: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र कि अगर आप बात करते हैं तो PIL हाँ की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
2: करेक्ट, अरावली। हाँ,
0: तो अरावली हिल्स क्या था? अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे कि जितने भी भूमाफिया थे या लैंड माफिया थे वो खनन वहां पे कर रहे थे। वहां उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा था उसके खिलाफ PIL डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
2: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ। सर आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम PIL के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे होंगे ये है क्या, व्हाट इज दिस PIL, इसके थोड़ा सा इसका यू नो एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
0: देखिए, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से, ध्यान रखना।
0: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि PIL की फुल फॉर्म
2: सर, मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है पब्लिक इंटरेस्ट
0: लिटिगेशन।
2: यार पब्लिक सीखने को मिली,
0: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो,
2: जी जी सर,
0: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
2: ओके
0: ठीक है।
2: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं। और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए। हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आपको गूगल नहीं करने देना
1: है, गूगल करके निकाल लेंगे।
2: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ, जितना दिमाग तू चलाती इतना हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। वेल आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट। हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
1: हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या PIL के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
0: यस बिल्कुल कराई जा सकती है। अगर जनहित याचिका PIL के माध्यम से हम सरकारी नीतियों योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
2: हाँ जी हाँ जी,
0: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
1: क्या बात
2: है। अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए PIL कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जरा।
0: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो PIL का महत्व और ज्यादा की बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे हैं ना गूगल पे तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
2: एब्सोल्युटली 100%
0: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर PIL नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी PIL के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और PIL भी दाखिल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए। जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को चैट भी करें तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है, तो इसको लेके भी कई PIL जो है दाखिल करी थी। और PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शन दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए।
2: नहीं होना चाहिए,
0: तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
2: 100% राइट। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में PIL से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
0: देखिए हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले। अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक PIL आपने देखी होगी अभी, जैसे चुनाव पारदर्शिता
2: से, ये तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
0: भाई, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही।
2: करेक्ट करेक्ट वही ना,
0: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
2: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना।
0: हाँ
2: इस पे हम बात कर रहे हैं अभी,
0: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ PIL डेफिनेटली
2: रहती
0: है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
0: देखिए हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है, तो उसको लेके जो है कई एक NGOs हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, NGOs हैं, एडवोकेट्स हैं, वो लोग अपनी PIL या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके लेके अगर PIL दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है और PIL के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
2: ऑल राइट, सर थैंक यू वेरी मच. लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया और ये जो आपका PIL का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ. एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में. एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है. सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे. एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना. और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को FM मुरादाबाद 89.6 FM जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
0: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी FM मुरादाबाद 89.6 है,
2: जी जी
0: सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
2: भी अपने ऐड कीजिए,
0: अपने घर वालों को भी सुनाइए FM.
2: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला. और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास
0: अच्छा,
2: के लोग हैं.
0: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा मैं,
2: जी सर,
0: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता
2: है, हम अपने समुदाय की बात करते हैं,
0: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है. जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं.
2: गॉट इट सर. और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज और ये आम जनता की आवाज, इसीलिए हम आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग.
1: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे में,
2: लेकिन
1: पता भी
2: मैं आपको जेनरली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा. आज का तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया. और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग. मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है. मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
1: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे. मतलब इन्होंने
2: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी. लेकिन सर बहुत अच्छा लगा और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था. तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का. सर बहुत बहुत थैंक यू आप आए, एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पे हम बात करेंगे. तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा. सी तू अपना सायोनारा करेगी या नहीं है ये बता भी.
1: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
2: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना.
1: नहीं हम घर पर भी बना सकते हैं,
2: वो मुझे नहीं पता. फिलहाल ये लीगल टॉक से यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन. इट्स नॉट रेसिपी शो.
1: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं, श्रोताओं आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रोक मचाते रहिए
2: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए. और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो. तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना. बाय बाय, नमस्कार.
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान. पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद. जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार. तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. सांसें सही, जिंदगी सही.

0: बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
1: और हूँ आपकी दोस्त प्राची।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गाँव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
1: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
0: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देशी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गाँव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, तान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं उसको, शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया, इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख खा देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था, और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात के कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है?
1: बहुत कुछ। सुनिए, छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी गाँव का युवा अब अपने जिले में ही काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
1: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता
0: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
0: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
0: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हम दोनों की तरफ से नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्दी मिलेंगे श्रोताओं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है

बंद हो गया तो? सुनील, अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील, लो यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी डाल दिया। सुनील, अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, 20,000 रूपए डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है, बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या है? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, ओटीपी या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी ओटीपी और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। ओटीपी, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा। दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं, तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम। लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। ओटीपी और पासवर्ड कभी ना बताएं। डराने वाले मैसेज से सावधान रहें। खुद बैंक से संपर्क करें। जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद अपने आप। गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें। और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के पहुंचाया गया है और डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
2: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, जो शक्ति केंद्र में काम करता है, वो पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। श्री नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
3: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। सहयोगी दलों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अपना दल एसके उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर खास तौर पर बात की गई।
4: विशेष रूप से जो समन्वय का कार्य कैसे, उस पर चर्चा हुई है। और मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि एनडीए के इस जीत में अपना दल ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
1: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण BBGRAMJI अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी गांवों को समृद्ध और विकसित बनाना है।
5: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गाँव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। मामले के विवेचक ने आज जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पेश है एक रिपोर्ट।
6: राम मंदिर दान घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में सीओ अयोध्या और विवेचक आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने 5 आरोपियों लोकेश मिश्रा, रामशंकर यादव टिन्नू, मनीष यादव, करुणेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की कल होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में दान घोटाला प्रकरण के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
7: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफको, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आम वर्तमान में 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और महोत्सव में 1,501 प्रतिभागियों ने 3,032 आम के नमूने प्रदर्शित किए। विभिन्न श्रेणियों में 147 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। आज राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, प्रयागराज, बलिया और जौनपुर सहित 10 शहरों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: हेलो जी, नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
2: प्राची।
0: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
2: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
2: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी से।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद, और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
2: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
2: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा, और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी,
1: और सामने बड़ी सी भगौनी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहां तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को जो जिला स्तर पे अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।

0: अच्छा ये बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
1: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का हर संभव मदद मिलती है, लोन संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
2: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
3: दोस्तों, गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
2: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
3: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
2: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
3: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
2: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
3: दोस्तों, गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
2: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
3: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
2: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
3: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
2: गोंडा की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
2: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
2: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
3: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती
2: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
3: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
2: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
2: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
3: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है
2: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
3: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा
2: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए तो?
3: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
2: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
3: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
2: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं यादों का भी हिस्सा होता है।
3: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
2: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
3: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
2: प्राची।
3: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय
2: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: जो के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर बनाने के उद्देश्य से मिशन कायाकल्प की शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने द्वारका सेक्टर 7 में 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एक वर्ष के लिए ग्रीन कैलेंडर तैयार किया। उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा, विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के सरकारी स्कूलों को केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न जिलों में चयनित सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मिशन कायाकल्प को जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सहयोग देने वाली संस्थाओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदाय के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकारी संसाधनों के साथ साथ समाज की भागीदारी से स्कूलों में तेजी से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जन भागीदारी का एक प्रभावी उदाहरण है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मिशन कायाकल्प के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों में जिससे बदलाव दिखाई देने लगे हैं। दक्षिण जिले के रामानुजन सर्वोदय कन्या विद्यालय महरौली में लगभग 48 लाख रुपए और सर्वोदय क्वेट सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में करीब 58 लाख रुपए की लागत से बड़े स्तर पर सुधार कार्य किए गए हैं। वहीं पश्चिम जिले के मोहन गार्डन के सरकारी विद्यालयों में लगभग 77 लाख रुपए की लागत से व्यापक आधारभूत ढांचा सुधार कार्य और जनकपुरी में स्थित GSKV में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से आधारभूत मजबूती को बल दिया जा रहा है। उत्तर पूर्वी जिले के गोकुल और शाहदरा के विद्यालयों में भी बड़े स्तर पर सुधार कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मिशन कायाकल्प केवल रंग रोगन तक सीमित नहीं है बल्कि यह सरकारी स्कूलों के समग्र रूपांतरण का अभियान है। इसके अंतर्गत स्कूल भवनों की मरम्मत, दीवालों की पेंटिंग और व्हाइट वॉशिंग, जर्जर शौचालयों का नवीनीकरण, स्वच्छ पेयजल के लिए RO पॉइंट और वाटर कूलर की स्थापना की जा रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र की योजनाओं के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 1 लाख रुपए से अधिक की संयुक्त सब्सिडी देकर रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने पालम विधानसभा के द्वारका सेक्टर 7 स्थित एयरफोर्स और नेवल ऑफिसर्स एन्क्लेव में 500 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस योजना को केंद्र सरकार से 90 लाख रुपए और दिल्ली सरकार से 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ विकसित भारत जी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। श्री सिंह ने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है। 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एनडीएमसी ने एक वर्ष का ग्रीन कैलेंडर तैयार किया है, जिसके अंतर्गत राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जाएंगे। श्री चहल ने यह बात आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के 31वें संस्करण पर बीबी के दत्त कॉलोनी में सामूहिक वृक्षारोपण के आयोजन के दौरान कही। एक पेड़ मां के नाम पहल पर उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल अभियान नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक उत्तरदायित्व का जन आंदोलन है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज आगामी वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम स्थल के तैयारियों का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को करेंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प राजधानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक ग्रीन, क्लीन और स्वस्थ बनाना है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय और पश्चिम दिल्ली के बीच जुड़ाव को अधिक बेहतर बनाने के लिए आज मोरी गेट टर्मिनल से खेड़ी बाबा पुल के बीच नई बस सेवा रूट 753 एक्सटेंशन की शुरुआत की है। एक रिपोर्ट।
4: परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ये रूट जनकपुरी, विकासपुरी, हस्तसाल, शिव विहार, उत्तम नगर, हरिनगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए सेंट्रल दिल्ली और मोरी गेट तक सीधा, किफायती और सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्शन उपलब्ध कराकर आवागमन को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। श्री सिंह ने कहा कि इस मार्ग का निर्धारण राजधानी में दफ्तर जाने वालों, विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वालों की सुविधा को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये रूट दिल्ली के सबसे व्यस्त अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्ट हब में से एक, मोरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डा और कश्मीरी गेट जैसे राजधानी के प्रमुख अंतरराज्यीय परिवहन केंद्रों से सीधी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा ये रूट अंतरराज्यीय बस सेवाओं और दिल्ली रेलवे स्टेशन तक सुविधाजनक और किफायती कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र साउथ दिल्ली मेन पाइपलाइन के रखरखाव कार्य के कारण कल कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जल बोर्ड ने बताया कि इन इलाकों में कल सुबह 10 बजे से लेकर अगले 8 घंटे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रह करने और आवश्यकता पड़ने पर जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने की सलाह दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आज संसद भवन में देश की विभिन्न रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल, श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महामंत्री सुभाष गोयल भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एनडीएमसी ने आने वाले मॉनसून सत्र के लिए सभी जरूरी इंतजाम और तैयारियां कर ली हैं। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत पूरी तरह से तैयार है।
5: एनडीएमसी की तो अपनी सत्र की तैयारी से पहले जो भी रखरखाव व्यवस्था सब चीजें हमारी पूरी तरह तैयार है। माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित नई दिल्ली हर चीजों के लिए तैयार है। मानसून की भी तैयारी हमने पूरी तरह कर रखी।
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की गति और व्यापकता को नई परिभाषा दी है और जन कल्याण को सुशासन का केंद्र बिंदु बनाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात आज रोहिणी सेक्टर 10 स्थित सांवरिया से टेंट में आयोजित सांस्कृतिक संध्या को संबोधित करते हुए कही। उत्तर स्वामी मलाई मंदिर का महाकुंभाभिषेक समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह श्री कांची कामकोटी पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन और उपस्थिति में आयोजित किया गया था। समारोह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने अपनी प्रतिभा और आजीवन साधना से भारतीय लोक परंपरा को नई प्रतिष्ठा दिलाई। साथ ही उनकी कला ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और अनगिनत कलाकारों को प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जाना भारतीय लोक कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना और अधिक सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। श्री मांडविया ने लोगों को फिटनेस की शपथ दिलाई और उनसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया।
6: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज केशवपुरम जोन के गुजरावाला टाउन स्थित एक पार्क का नामकरण प्रख्यात समाजसेवी और क्षेत्र के सम्मानित नागरिक स्वर्गीय डीजे सचदेवा की स्मृति में किया। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर बनाने के उद्देश्य से मिशन कायाकल्प की शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने द्वारका सेक्टर 7 में 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एक वर्ष के लिए ग्रीन कैलेंडर तैयार किया और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये देख कैसे।
8: हैप्पी बर्थडे भाई।
7: दिखा।
9: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
8: हमेशा शॉपिंग।
10: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
11: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
12: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
10: आई नो ना।
12: RBI कहता है,
13: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
14: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए। विगत 25 जून को आकाशवाणी दिल्ली के पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित युवा लेखन श्रृंखला कुछ कहता है दिल के संपादित अंश

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: हाँ जी, कैसे हाल चाल? आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और यहाँ पर जब आनंद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है। और दोस्तों, आज तो मैं भी एक शायर बन के आ गया हूँ। माना कि मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अंदर की जो बातें हैं ना, जो अंदर की फीलिंग्स है, वो निकल जानी चाहिए और अच्छा होता है यार। और आज हमारे साथ में जो शख्स हैं, जो जनाब हैं, वो भी बस इसी के सरताज बनने वाले हैं हमारे स्टूडियो में। आज बहुत सारी बातचीत होगी आपके साथ, आपकी शाम को थोड़ा सा और खूबसूरती के साथ जो है हम ब्यूटीफुल बनाएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाँ जी, फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भावनाएं मिलती हैं सुरों से, कि जहाँ भावनाएं मिलती हैं सुरों से, वहीं शुरू होती है हमारी महफिल, दिलों की बात दिलों के साथ। आपका अपना रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद, जहां पर आज प्यार मोहब्बत इश्क और ना जाने कौन कौन सी बातें होने वाली है, लेकिन जो भी बातें होंगी वो सिर्फ आपके काम की होंगी और आपसे रिलेटेड होंगी, यानी कि आपको एंटरटेनमेंट का डोज भी देंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और अभी मैं अपनी बातों को देता हूँ विराम, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है अब उन्हें नहीं करने देंगे आराम, उनसे बातचीत करना है यार, यही तो हमारा काम है। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेशन में आपका।
5: मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू आनंद जी।
4: जी, हालांकि इनकी आवाज आपने पहले भी सुनी है, लेकिन ये अभी काफी सीरियस होके बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सर, मतलब लंच वंच खा पी के आए हो ना आप स्टूडियो में हमारे?
5: नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, जरा एक शुरुआत होती है तो उससे फिर आगे बढ़ना होता है, तो वही मैं उस इंजन को स्टार्ट करने के।
4: बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आप इंजन स्टार्ट कीजिए, हमने तो पूरी गाड़ी स्टार्ट कर दी है सर। वेल, आगे बढ़ते हैं सर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में हमारी जनता को अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए जरा आपने आपको।
5: जी, मेरा परिचय क्या है कि मैं आप ही के बीच का हूँ।
4: बिल्कुल सर।
5: मेरा नाम मनोज बनु है
4: जी,
5: और शायरी और कविताओं से मुझे निस्बत है।
4: क्या
5: मैं
4: बात है?
5: अपने परिचय के बारे में चार मिसरे ही क्यों ना रखूं?
4: बिल्कुल इरशाद जनाब, मजा आ जाएगा फिर तो। आए हाय,
5: कहता हूँ कि अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है।
4: अरे वाह।
5: अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है, कौन है कैसा खबर है मुझको, सब होशियारी मुझमें है।
4: क्या बात है।
5: पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझमें है। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझमें है।
4: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक। तो मनु जी, एक बात मैं आपसे, मैं आपको मनु जी बोल सकता हूँ ना सर?
5: क्या बात है मेरा
4: सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी आवाज में बेस इतना अच्छा है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना बढ़िया आप डिलीवर कर रहे हैं अपना, लेकिन ये जो आपने अभी अपने आप को भी इन शब्दों में पिरो दिया मुरादाबाद, और फिर अपने आप को भी कनेक्ट कर दिया, तो ये खूबसूरती कहाँ से आती है मुरादाबाद के कलाकारों में? अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, सबका कुछ ना कुछ रहा है मुरादाबाद की चीजों से रिलेटेड, अपने आप को भी उसमें शामिल कर देना, ये मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग जब लिखते हो तो उसके अंदर खुद को फील करते हो क्या?
5: आपने सुना होगा कि अल्लाह अगर तौफीक ना दे इंसान के बस की बात नहीं।
4: एग्जैक्टली,
5: तो ये बस प्रभु का आशीर्वाद है।
4: क्या बात है,
5: जिसने जो शब्द अता किए हैं उनके माध्यम से जो जहन में आता जाता है, उतरता जाता है, वही कहा जाता है। कहते हैं ना कि शेर लिखा नहीं जाता, कहा जाता है, पढ़ा जाता है,
4: पढ़ा जाता है, फील किया जाता है।
5: जी जी, तो बस वही जो वो दे देता है वही हम ले लेते हैं।
4: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया सर। और ऐसी खूबसूरत बातें जो है आज सुनते रहेंगे आप इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आपके शाम को खूबसूरत बना रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोज वर्मा मनु जी, और आज आपकी शाम को स्पेशल बनाने के लिए कुछ तो अपनी डायरी में चिट्ठा लेकर आए हैं, पूरा एकदम भारी भरकम तैयारी के साथ आए हैं। तो सर, शुरुआत कैसे होने वाली है, क्या है जो आप हमारे श्रोताओं को आज की शाम सुनाएंगे? लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं मैं, मतलब बता दूं आपको गाइज, जैसे मनु जी हमारे स्टूडियो में आए तो उन्होंने बोला कि आनंद जी अपनी रफ्तार थोड़ी कम रखिएगा, तो मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई ऐसे में कौन सी एक्सप्रेस में सवार होता हूं जो सर ने मेरे को ये पहले से अलर्ट भेज दिया। ऐसा क्यों बोला सर आपने? माना कि आपका फ्लो वो अपना शायर वाला चलेगा, बट मेरा तो वो जॉकी वाला ही रहेगा ना सर।
5: जी, एक शेर कहा जाता है,
4: हर बार
5: वो बर्क रो था,
4: हाँ,
5: वो बर्क रो था, हाँ, कहाँ रह गया जाने पीछे,
4: हाँ,
5: अब इंतजार करेंगे सकिश्ता पा उसका।
4: हाँ, अरे वाह,
5: सकिस्ता पा, यानी कि जो धीरे धीरे कदमों से चलने वाले हैं,
4: हाँ हाँ,
5: वो इंतजार करते रह जाते हैं।
4: ओके,
5: तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोफेशन है और आप जुड़े हुए हैं, शहर मुरादाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं
4: जी।
5: तो ये एक बहुत, जो उसकी स्पीड है आपकी, वो स्पीड काबिल तारीफ है, लेकिन ये जो शायरी है,
4: हाँ,
5: ये हसास का विषय है,
4: इसमें ठहराव चाहिए,
5: हसासों का विषय है,
4: और इसमें
5: ठहराव की बहुत जरूरत है, बस इसीलिए मैंने आपसे दर्ज की थी
4: कि तो मैंने वो पब्लिकली रख दी ना सर, देखिए इतनी अच्छी बात है, ताकि वो चीज हमें पता तो चले और हमारी ऑडियंस को भी पता चले।
5: नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, जब हम पब्लिक के सामने होते हैं तो हमारा अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ पब्लिक के लिए होता है,
4: क्या ही होता है, उसी के लिए होता है।
5: बेशक इसमें कोई जरा सा भी गुंजाइश नहीं कहने की, मुरादाबाद की और आपके एफएम की जो जनता है, जो श्रोता है, वो निहायत खास हैं, कोई आम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं रेडियो एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज पर।
4: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बोला, और आप भी काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लग रहा है आरजे बन जाएंगे आप भी अगर ऐसी प्रैक्टिस चलती रही तो। खैर आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मनु जी आपसे बातचीत करके, और वैसे तो कई मरतबा मेरी इनसे मुलाकात होती रहती है आते जाते रोड के किनारे, सड़क के किनारे हम लोग गुफ्तगु करने लग जाते हैं जब भी मिलते हैं, लेकिन आज जो ये इंटरेक्शन हो रहा है ना सर, मेरा आपका पहली बार हो रहा है शायद ये कॉन्वर्सेशन ना?
5: जी जी, ये पहली बार ही है जो मैं हिम्मत समेट के आपके सामने हूँ।
4: अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आप हमेशा इतना अच्छा करते हैं, मैं इवन आपकी स्टेटस भी देखता रहता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, आप कनेक्टेड है मेरे साथ, तो जब भी कोई ओकेजन होता है सर का हम देखते रहते हैं, मान सम्मान, और आपकी जो चीजें आप करते हैं मतलब बढ़िया है, और मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास कलाकारी है, अगर वो पहचान के उसमें कुछ अच्छा करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है।
5: सही कहा आनंद जी, ये बिल्कुल आपकी निस्बत है, आपकी मोहब्बत है जो मुझे इतनी आपने सम्मान प्रदान किया है। मैं फिर अपनी दो लाइनें रहूं?
4: जरूर सर,
5: ये यही शेर में दो लाइनें दो मिसरे होते हैं जो आपके साथ साथ हमारे जो सामाईन जो श्रोतागण हैं
4: जी जी,
5: उनके लिए भी है कि मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं,
4: वाह,
5: मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं, उसकी बख्शी हुई नेमत है मेरा कुछ भी नहीं, और चंद मिसरों को जो तरजीह अता करता है, ये तेरा हुस्ने समात है मेरा कुछ भी नहीं।
4: क्या बात है,
5: ये तेरा हुस्ने समात है मेरा कुछ
4: गजब
5: भी नहीं।
4: जी गजब, मुझे लग रहा है कि दोस्तों कल सुबह अगर मैंने उर्दू के कुछ भी शब्द नए बोले तो उसमें सारा योगदान मनु जी का होगा, आज पूरी उर्दू सिखा के जाने वाले हैं, मतलब क्या इनके शब्द है, मतलब तलफ्फुज देख रहे हैं आप इनका कितना गजब का है सर, मतलब
5: उर्दू यार, बहुत बहुत शुक्रिया,
4: मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करते हुए सर,
5: ये कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे लिए,
4: एब्सोल्युटली सर आप डिजर्व करते हैं, और गाइस हम जो है आपकी शाम को ऐसे ही रॉकिंग बनाते रहेंगे, काम करते हैं, रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो सर से कुछ बेहतरीन सा सुनेंगे जो आपकी शाम को और भी बेहतर से बेहतरीन बना देगा। फिलहाल आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है, एक बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैंने कहा जी आपका खैर मकदम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आज मैं भी थोड़ा उर्दू में, थोड़ा शायराना अंदाज में मैं भी कुछ ना कुछ कहता रहूंगा। जब इतने खास लोग सामने बैठे हों शानदार प्रस्तुति के साथ तो फिर वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो मनु जी वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में, और मैं चाहूंगा कि कुछ बढ़िया से अपने अल्फाजों में कुछ बढ़िया से हमारे लिसनर्स को सुना दें आप।
1: शुक्रिया आनंद जी, मैं झिझकता हूँ दो मिसरे
0: जी।
1: तमाशा बन के रह जाए मरासिम,
0: वाह,
1: मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना। तमाशा बन के रह जाए मरासिम, मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना।
0: क्या बात,
1: उसी की जी हुजूरी मार देगी, मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है,
1: मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे भी कुछ लिखते हैं सर या यहीं पे ये लाइन जो है एंड हो जाती है?
1: जी लाइनें तो हैं लेकिन जो मौजू है वही चीज सामने आती है।
0: क्या बात है, लेकिन सर एक बात तो है कि कहीं ना कहीं जो प्यार करने का तरीका होता है, जब आप शेर व शायरी के साथ आते हो तो उसका मजा डबल हो जाता है। आप लोगों तक वो बात पहुंचा देते हो जो एक्चुअली आप जानते हो, और जो सुन रहा होता है ना, जो उसको फील करता है तो वो समझ पाता है, क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना।

0: वो दिल से दिल तक का होता है। और ये बात जो आप अपने अल्फाज के थ्रू कह रहे हैं हमारे लिसनर्स से, जो अपनी शायरियों के थ्रू रख रहे हैं, ये ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे जो दिल से इस चीज को फील करते हो या इस चीज से जुड़े हो कहीं ना कहीं।
1: नहीं, मैं समझता हूँ कि शायरी का जो अपना मकाम है, जो उसकी सफलता है वो भी यही है कि जो मन कह रहा है वो मन सुने,
0: वो मन सुने
1: सामने वाला।
0: वही वही बिल्कुल सही कहा,
1: कनेक्ट करता है, तो ये शायरी वास्तव में अपनी अपनी सार्थकता महसूस कराती है।
0: गॉट इट, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आजकल के प्यार के बारे में कुछ है आपके पास, कुछ इंटरेस्टिंग? आजकल का जो सोशल मीडिया वाला जमाना है, सोशल मीडिया वाला प्यार है, जहाँ एक घंटे के अंदर प्यार हो जाता है, वहीं दूसरे घंटे में लोग ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर कोई नया मिल जाता है, तो इस आजकल का जो जमाना चल रहा है, मैं अगर उसकी बात करूं तो उस पर कुछ अगर आप रखना चाहें।
1: देखिए, चीज तो होती है, दरअसल क्या है, बाकी की चीजें मौका ही नहीं देती। जिंदगी इतनी तेज भाग रही है मौजूदा हालात में
0: 100%
1: कि उसे आप कुछ भी नहीं कह सकते, रोक नहीं सकते। जहां रुकते हैं तो दुनिया आगे निकल जाती है। लेकिन आप इस बारे में ये नहीं कह सकते कि जो कली, जो जो जो एक पौधा, उसके जो बीज मोहब्बत का उस दिल में फूटा था, वो दबके रह गया। हो सकता है वो खत्म हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। उनके लिए मैं दो लाइनें बताता हूँ आपको।
0: प्लीज, श्योर।
1: ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई, ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल ना हुई।
0: क्या बात है,
1: ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है
0: जी।
1: तो जो सच्चाई है वो हमेशा सच्चाई रहती है, बस यही सच्चाई का एक सार्थक गुण है। ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल ना हुई। हमने माना कि तेरा साथ नहीं किस्मत में, मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: क्या बात है,
1: मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, कहते हैं कि सच्चा प्यार वही होता है जो मुकम्मल नहीं होता है, इसमें कितनी सच्चाई है कि सच्चा इश्क वही होता है जो आपको ना मिले? ऐसा बहुत सारे लोगों को कहते मैंने सुना है, इवन मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल एकदम सच्चा वाला प्यार करते हैं, एकदम सत्यवान टाइप वाला, बट उनको जब नहीं मिलता तो वो कहते हैं सच्चा प्यार तो वही है जो नसीब ना हो। क्या सच में इसमें इस बात में सच्चाई है? वैसे आप लोग इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं?
1: सच्चाई क्या है? सच्चाई दरअसल ये है कि जब तक, जैसे मैं एक आपको फिर वही शेर के माध्यम से बताना चाहूंगा
0: जी, प्लीज।
1: हमारे एक उस्ताद शायर ने कहा है
0: जी जी,
1: आ तमन्ना तुझको रोलू वक्त वस्ल।
0: क्या बात,
1: वस्ल यानी कि मिलन का जो समय होता है
0: जी जी।
1: आ तमन्ना तुझको रोलू वक्त वस्ल, आज तू दिल से निकाली जाएगी। यानी कि जो चीजें पूरी हो जाती हैं फिर वो खत्म हो जाती हैं। और जैसे हमारे गालिब चचा ने भी कहा है कि वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर का पार होता।
0: क्या बात,
1: तो जाहिर सी बात है कि जो उस तीर की खलिश है, दर्द है, वो जब तक गड़ा रहता है तब तक मुकम्मल रहती है, लगातार रहती है। यही अधूरी मोहब्बत का सिलसिला भी है, जो पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं लगातार वो अपनी पीस बनाए रखती है, और जो पूरी हो जाती है वो अपना दम तोड़ देती है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसी तमाम जानकारियां जो आज हम सर से निकलवाते रहेंगे, और तमाम ऐसे उनके दिल की फीलिंग्स कह सकते हैं जो आज वो हमारे साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट्स, अपनी बातें, अपनी शायरी, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर आज की शाम हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए, रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद लौट कर आएंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। मेरा नाम आनंद है।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन जिसमें आज हमारे साथ मनु जी मौजूद हैं। ढेर सारी आपको शेर व शायरी के साथ एक कह सकते हैं फ्लो बना रहे हैं आपका और मेरा एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी शाम को खूबसूरत बना रहे हैं। नए नए शब्दों से हमें रूबरू करा रहे हैं, ढेर सारी बातें उनके साथ चल भी रही हैं और उनकी अंदर की जो कलाकारी है वो भी कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से।
1: शुक्रिया। थैंक
0: यू जी। मनु जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, और मतलब पूछना क्या, साफ शब्दों में कहूँ तो सुनना चाह रहा हूँ। शेर व शायरी और ये जो कविताएं हैं जो आप रचनाएं हैं वो तो आप करते ही रहते हैं, इवन आप गीत भी बढ़िया गाते हैं, मैंने आपके सुने हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी आप अच्छा करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ वही नज्म की, क्योंकि शेर व शायरी से हटके कुछ अलग चीज लगती है मुझे नज्म, है ना? तो कुछ अगर आप नज्म पे चर्चा कर लें, कुछ बढ़िया सी सुना दें तो हमारे सुनने वाले श्रोताओं को डबल मजा आ जाएगा।
1: क्या बात है। वास्तव में नज्म अपने आप में एक मुकम्मल चीज है।
0: Absolutely.
1: और शायरी में जहाँ गजलें अपने मुख्तलिफ शेर अलग अलग शेरों में अलग अलग बात कहती हुई चली जाती है, वो कहीं भी हो सकती है। नज्म की खासियत यह है कि ये जब उतरती है तो पहले अक्षर से शुरू होकर अपनी बात मुकम्मल करने तक उतरती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक मेरी एक पसंदीदा नज्म है
0: जी,
1: जिसका अनुवाद मैंने हसरत रखा हुआ है।
0: अरे वाह।
1: मैं आपको और दर्शकों के बीच में रखता हूँ।
0: पक्का पक्का, श्योर।
1: हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे।
0: क्या बात है।
1: ये देखिए एहसास किस तरह से पिरोते हैं एक नज्म के साथ, कैसे बहती है एक
0: फ्लो
1: नज्म है, जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है। हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे, कल मुकद्दर में ना हो मैं न रहूं, दिल के जज्बे जुबा से कहने दे। हाँ तेरी आस में जाने कितने, मैंने लम्हों को जिया सदियों सा, फासला तेरे दरमिया मेरा, फासला जैसे रहा सदियों सा, फासला तेरे दरमिया मेरा, फासला जैसे रहा सदियों सा, कतरा कतरा जो निचोड़ा खुद को, तो यह एहसास बयां कर पाया, देख ले तू जो तेरा जी चाहे, जिंदगी का ये मेरी सरमाया, शर्त वैसे ये नहीं होती, जो तुझे चाहे तू उसे चाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे। मैं जो इस दर्जा चाहता हूँ तुझे, इसके इजहार में हो सकता है, ये जो एहसास है रिफाकत है मेरा, आखिरी आस भी खो सकता है, पर ये उम्मीद के साए भी तो उलझने जीस्त की बढ़ाते हैं, जो महल चुनते हैं रेजा रेजा, और फिर आप ही गिराते हैं, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, मुतमईन हो ले जो भी होना है, दिल के मिटने को या मोहब्बत को, हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे। तो देखा,
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
0: हाँ जी, कैसे हालचाल? आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और
1: मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे। मैं जो इस दर्जा चाहता हूँ तुझे, इसके इजहार में हो सकता है, ये जो एहसास है रिफाकत है मेरा, आखिरी आस भी खो सकता है, पर ये उम्मीद के साए भी तो उलझने जीस्त की बढ़ाते हैं, जो महल चुनते हैं रेजा रेजा, और फिर आप ही गिराते हैं, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, मुतमईन हो ले जो भी होना है दिल के मिटने को या मोहब्बत को, हो भी जाने दे तमन्ना पूरी आज हाथों में हाथ रहने दे। तो देखा आपने कि ये रवानी
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप जो है शब्दों को पिरो रहे थे, और मतलब मैं तो कश्मकश में था कि सर ये मतलब कहाँ क्या क्या फ्लो बना रहे, कहाँ मतलब कहना क्या चाह रहे, और इतनी बढ़िया आपने जो है शुरुआत करी नज्म की और कहाँ से कहाँ आप ले गए, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना मतलब वो शब्द वाला सीन वही था, मतलब मजा आ गया, मैं पूरी गहराइयों के साथ।
1: आनंद जी होता यही है कि जो नज्म है वो उतरती है उसका सच में, उसका जो लुत्फ है वो यही लुत्फ है,
0: कसम से
1: बहुत अच्छा लगा मुझे। आखिरी मिसरे को जाकर ये मुकम्मल कर दे,
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन।
1: तो मैंने आपके बीच रखी और आपको और श्रोताओं को मुझे यकीन है
0: पसंद आई होगी, बहुत मजेदार लग रही है, और आपके जो शब्द हैं आपके जो अल्फाज हैं बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, नो डाउट आप इतना अच्छा बोल रहे हैं। और सर देखिए बातचीत तो चलती रहेगी लेकिन थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को और मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
1: जी प्रोफेशनली मैं ज्वेलर्स परिवार से ताल्लुक रखता हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: और बेसिकली मैं रामपुर जनपद के टांडा का निवासी हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: पिछले 2011 से हम लोग यहाँ पर मुरादाबाद शिफ्ट हुए हैं पीतल नगरी।
0: अरे वाह।
1: और सही कहूँ तो जो मेरी साहित्यिक शुरुआत साहित्यिक जन्म हुआ वो 2006 से मुरादाबाद से ही प्रारंभ हुआ, दादा महेश्वर तिवारी जी
0: जी जी
1: जैसी अजीम नव गीत की जो हस्ताक्षर
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: उनके बीच उनसे मिलना जो हमारे सौभाग्य की बात थी।
0: अरे वाह
1: जी। कृष्ण कुमार नाथ साहब, आदरणीय योगेंद्र वर्मा व्योम जी, मंसूर उस्मानी साहब, इन सब से जब मिलना हुआ इनको सुनना हुआ तो इनको सुनते सुनते धीरे धीरे वहीं से वो अनवरत यात्रा शुरू हुई है। तो वर्तमान में मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा।
1: और जेंडर्स का हमारा वर्क है तो वो चलता रहता है।
0: बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। जैसे वर्मा नाम दिमाग में आता है वो ज्वेलर्स तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, नो डाउट। वेल खैर कह सकते हैं कि एक जी, अपना घर का
1: ही हाँ हाँ
0: वही वही वही वही मतलब एक होता है ना कि आप शुरू से आप चलता आ रहा है एक
1: जी जी हमारा दादा लाई जो कारोबार है वो यही है,
0: वो यही है बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर, और ऐसी खूबसूरत बातें और खूबसूरत जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। आपके हिम्मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, आरजे आनंद के साथ हैं आप।

वेलकम बैक है वंस अगेन श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आरजे आनंद के साथ और ये स्टेशन है दिल से दिल तक वाला। यस ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आज स्टूडियो की शाम को और भी खूबसूरत और रंगीन बना रहे हैं अपनी बातों के साथ मनु वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में है एंड अभी मैं भी उनका साथ दे रहा हूँ, ढेर सारी बातचीत उनसे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप एंजॉय कर रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों इतना और कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है, कुछ बढ़िया कला है, आप लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा सुना सकते हैं, आप अच्छी शायरी करते हैं, जो भी आप करते हैं whatever, आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा सोशल मीडिया का हैंडल आपको मिलेगा एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, या ऑफिशियली अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो वहां के भी आप डीएम कर सकते हैं अगर आप हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं तो, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपका टैलेंट है, जो आप हमारे साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो के नंबर पर आप हमें भेजिए ना अपनी एंट्रीज 9837896896, यानी कि 9837 896896 ये स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर पर आप बिना किसी देरी

0: कि फटाफट से जो भी आप बढ़िया करते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तो ये सबके लिए खुल चुका है। बिल्कुल आप हमें पहुंचाइए अपने प्यारा सा एक मैसेज अपने टैलेंट के साथ, उसके बाद हम आपसे खुद ही कनेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और अभी मनु जी से हमने ढेर सारी शेर व शायरी तो सुन ली है, नज्म हमने सुन ली है, अब बारी है एक ऐसी चीज़ की जो शेर व शायरी से भी परे है। अच्छा सर, शेर व शायरी से मुझे याद आया, शेर व शायरी से हम प्यार मोहब्बत इश्क हर चीज़ की बातें करते हैं शेर व शायरी के माध्यम से, लेकिन अगर हमें कोई सामाजिक मैसेज डिलीवर करना हो, हमें कोई सोशल मैसेज देना हो या आम जनता के हित की बात करनी हो, तो क्या ये भी शेर व शायरी और गजलों के माध्यम से हो सकती है क्या?
1: हम गजल के माध्यम से, शेर के माध्यम से क्या नहीं कह सकते,
0: मतलब वही मैं आपसे जानना, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होती है बहुत सारी चीजें।
1: काव्य की यही खूबसूरती है।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि मेरा जो कविता में भी
0: जी
1: और गजल में भी मैं दोनों को पसंद करता हूँ।
0: क्या बात
1: है, और दोनों का मैं विद्यार्थी हूँ।
0: वेरी नाइस।
1: तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुरातन समय में जो हम वेदों की बात करते हैं, ऋचाओं की बात करते हैं, जो अनुष्टुप छंद में आपने देखा होगा
0: जी,
1: ये काव्य चीज यही है जो हर तरीके का संदेश देता है।
0: क्या बात,
1: हर तरह का संदेश देता है, और इसमें सारी की सारी जो जानकारियां हैं
0: जी,
1: जो हमारे हित के लिए हैं, जो सामाजिक हित के लिए हो सकती हैं, इवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा, राष्ट्र पर, देश पर, विश्व पर, और अपने अंदर के मन पर, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कड़ पर भी, यही चीज आगे बढ़ी है। बस भाषाओं का फेर है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा सर, गजल भाषाओं का,
1: उर्दू से ली गई है,
0: बिल्कुल
1: फारसी से ली गई है, और काव्य का क्षेत्र हमारे सनातन से
0: जी
1: जुड़ा हुआ है, कविता क्षेत्र वही है। मैं आपको दो वानगी इसकी दूंगा।
0: जरूर सर।
1: एक रचना के माध्यम से,
0: हाँ जी
1: ये हिंदी रचना है
0: जी,
1: आप देखें किस तरह का संदेश कैसे देती है, एक सामाजिक संदेश, और वर्तमान में ये बहुत आवश्यक है। बच्चे जिनका अपना एक अलग आइडियोलॉजी है, ये क्या सोचते हैं, जो वर्तमान में हमारा पार का ध्रुवीकरण हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली हमारी हो गई है, ऐसी कंडीशन में ये रहता है कि एक बच्चा या दो बेबी, इस तरीके की कंडीशन हो गई है, तो एक बच्चा क्या सोचता है, ये संदेश बच्चे के माध्यम से बड़े को पहुंच रहा है।
0: क्या बात है,
1: हम उस चीज को देखें, सोचें, महसूस करें
0: जी
1: और कोशिश करें कि हम कैसे बदल सकते हैं। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, ये एक बच्चे की तकलीफ है जो रचना प्रस्तुत कर रही है। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, अलग पले दादा दादी का साथ न मिल पाया, चाचा चाची बुआ सभी का मेहमानी साया, एक अकेली आया है बस रिश्ते नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, रंग बिरंगे फूल तितलियां सब मॉनिटर पर, आभासी दुनिया में जीते हम ऐसे अवसर, रंग बिरंगे फूल तितलियां सब मॉनिटर पर, आभासी दुनिया में जीते हम ऐसे अवसर, धूप सुनहरी क्या वो घर वो अंगने नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
0: क्या बात है,
1: भेंट चढ़ गई प्रदूषण की होली दिवाली, भेंट चढ़ गई प्रदूषण की होली दिवाली, क्या खुशियां त्योहारी सब लगता खाली खाली,
0: क्या बात है,
1: वो त्योहारी रंग बिरंगे सपने नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
0: क्या
1: देखें, लगे हमारे बचपन में अब सुर्खावों के पर, अकेला बच्चा रह गया है, सारी की सारी इंटेंशन उस पर आ गई, और इतना सफिस्टिकेटेड उसे बना दिया गया
0: जी,
1: उसके बचपन का क्या होना है, ये उसका अधिकार सारा छीन लिया गया। आप देखें, हालांकि हम महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चे को इतनी सहूलियतें, इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है
0: जी,
1: लगे हमारे बचपन में अब सुर्खावों के पर, केवल शिष्टाचार ओढ़ जीना होता अक्सर, लगे हमारे बचपन में अब सुर्खा।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
4: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
3: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
3: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
4: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
3: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
4: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
3: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
4: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
3: EKCC, साख से समृद्धि।
4: नियम और शर्तें लागू।
5: महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
5: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
8: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
9: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
8: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
5: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
10: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
5: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर

0: जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी का दिल से स्वागत है संडे के हसीन रात। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 9:06 और बाहर के मौसम की अगर बात करें ना श्रोताओं, तो क्या हो रहा है बाहर, बादल आ जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। सबको उम्मीद है कि बारिश हो जाए और आप सभी का फेवरेट शो लेकर मैं हाजिर हूँ गीत आपके नाम से। साथियों, यहाँ हर धुन किसी की मुस्कान बन जाती है, हर गीत किसी की याद बन जाती है और हर एक ट्रैक जो दिल से दिल तक पहुँचता है, आप भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं श्रोताओं। उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। संडे की बेहतरीन सी शाम। और दोस्तों मुझे बताइए, पूरे हफ्ते सब दूसरों के लिए जीते हैं? जी हाँ, पूरे हफ्ते हम सब दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन आज बताइए संडे आपने अपने लिए क्या किया? कहीं घूमने गए, परिवार के साथ वक्त बिताया या बस अपने लिए दो पल निकाल पाए? बताइएगा कि इस हफ्ते आप इस हफ्ते पूरे डेडिकेशन के साथ आपने अपनी फैमिली को दिया है, लाइक अपने काम में इतना बिजी रहे हैं, लेकिन आज संडे की शाम में आप मुझे बताइए कि आपने क्या स्पेशल किया है? कहीं घूमने गए आप या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया? बताइए बताइए, कॉल कीजिएगा मुझे। दोस्तों, रात की खामोशी में कुछ बातें मुस्कुरा जाती हैं, रात की खामोशी में कुछ बातें मुस्कुरा जाती हैं, जो दिन भर नहीं कह पाते वो रात कह जाती है। और चलिए करते हैं शो की शुरुआत, एक बेहतरीन सा ट्रैक मैं आपको सुनवाती हूँ, उसके बाद आपसे भी गुफ्तगु करेंगे। अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई भी ट्रैक अपनी पसंद का अगर सुनना चाहते हैं, तो इस वक्त आप मुझे कॉल लगा सकते हैं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और ये अमेजिंग सा ट्रैक आप सभी के लिए

हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का नंबर 1 रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी। आपके लिए लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो गीत आपके नाम से। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना सत्वन, साथ में आशीष कौर की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते अल्फाजों से नहीं एहसासों से बनते हैं, कुछ रिश्ते अल्फाजों से नहीं एहसासों से बनते हैं, कुछ लोग किस्मत से नहीं दुआओं से मिलते हैं। जब अपना कोई दिल के करीब हो तो सच में जीने को और क्या चाहिए। और अभी हमारे पास हमारे लिसनर्स का कॉल आया था, लिसनर का कॉल आया था एंड आई रिमेम्बर जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, आई डोंट नो कैसी कॉल उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, बट उन्होंने एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट में बताई थी, तो उस ट्रैक को हम प्ले करेंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे आप बताइए, देखिए पूरे वीक हम अपने कामों में व्यस्त होते हैं, हम सबको टाइम देते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है संडे का जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आज अपने संडे को आपने कैसे स्पेशल बनाया, क्या कुछ किया आपने, क्या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, कहीं घूमने के लिए गए या बस अकेले आज अपने लिए वक्त निकाला, बताइए मुझे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और एक प्यारा सा ट्रैक अभी सुनवाते हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत सा कुमार सानू जी साथ में लता मंगेशकर जी की बड़ी प्यारी सी आवाज़।

हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, समय मैं आपको बता देती हूँ। राइट नाउ वक्त हुआ है 9:22 और

0: आपका फेवरेट शो यहाँ पर चल रहा है, आप उसे कॉल कर सकते हैं अभी राइट नाउ। बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल भी मिस मत करो यार, संडे की शाम है, मुझे पता है आप ऑन द वे कार में हैं। और कुछ अभी आराम से छत पर बैठकर रेडियो पास में रखकर आसमान की ओर निहार रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
1: जी जी मैम, मैं ठीक हूँ
0: जी। अपना नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैम, मैं रहमत नगर गली नंबर 1 से बात कर रहा हूँ, नाम आमिर खान।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप?
1: जी मैम मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं और आपके फैमिली में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी ऑल गुड, बहुत ही अच्छे हैं सब लोग, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा आज संडे का दिन कैसा गुजरा आपका?
1: जी मैम आज संडे का दिन तो वैसे मेरा हर दफा ही ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कामों में उलझ जाते हैं घर के, आज जो है पानी के मोटर में ही लगे रहे, वो खराब हो गई थी इसलिए उसे रिपेयर किया खुद ही घर पर।
0: अरे वाह, आप खुद कर लेते हैं?
1: जी मैम।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताइएगा सर, फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: जी मैम सब ठीक हैं, कल सिस्टर का जन्मदिन था तो इसलिए आज मैं एक सॉन्ग सुनना चाहूंगा, रक्षाबंधन मूवी का सॉन्ग है
0: जी,
1: धागों से बांधा।
0: अरे वाह बहुत ही खूबसूरत सा। कौन से सिस्टर का आपका बर्थडे था बताइए हमें?
1: जी मैम बड़ी सिस्टर है, उनका नाम हिना खान है।
0: अच्छा, तो हमारी तरफ से भी उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक है।
1: जी मैम थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत आपकी पसंद का, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: ओके मैम,
0: ओके। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक रक्षाबंधन का, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है एंड अक्षय कुमार जी ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है ना दोस्तों। मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं बिना किसी देरी के, मैं इंतजार कर रही हूँ। और ये प्यारा सा ट्रैक आप सब सुनिएगा श्रेया घोषाल साथ में अरिजीत सिंह जी की बहुत ही अमेजिंग वॉइस में ये ट्रैक। बस मैं आती हूँ अभी।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: कोई मिल गया,
8: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: देखिए दोस्तों, हर रात अपने आप में बहुत स्पेशल होती है, लेकिन संडे की रात कुछ खास होती है। जब हम अपनों के साथ होते हैं, खुला आसमान हो, फैमिली साथ हो, बातचीत होती है और साथ में खाना, जब एक साथ मिलकर रात का डिनर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। और स्पेशली गर्मियों में जब हम लोग छोटे थे, लाइक अभी भी, लेकिन छोटे जब थे तो उस टाइम पर हम क्या किया करते थे, छत पर सारे लोग इकट्ठा होकर बैठ जाते थे और अंताक्षरी खेला करते थे, बहुत सारे गेम्स हम खेला करते थे रात को, जैसे लाइट चली जाती थी उस टाइम की बात। एंड लेकिन अभी तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन बस अब स्मार्टफोन साथ में आ गया है ना, तो उसकी वजह से फैमिली थोड़ी सी अलग हो गई है। फैमिली के साथ होते तो हैं लेकिन वक्त नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आज संडे की शाम में आप फ्री हैं तो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप फ़ोन को थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखिएगा, थोड़ा दूरी बनाकर रखिए एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि हर एक दिन बहुत स्पेशल होता है। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो हेलो,
1: हाँ जी मैम।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं शारिक मलिक संबल से बात कर रहा हूँ। कैसे मैम? हाय
0: हाय। हेलो शारिक, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा।
1: मैं भी ठीक हूँ मैम।
0: ओके,
1: सब बढ़िया।
0: हाँ जी हाँ जी, सब अच्छे हैं। आप बताइए शारिक, क्या करते हैं?
1: मैम मैं बिजली विभाग में जॉब करता हूँ, SSO सब स्टेशन ऑपरेटर।
0: नाइस। और रेडियो कब से सुन रहे हैं आप? रेडियो को कितने वक्त हो गया है आपसे कनेक्ट हुए? रेडियो मतलब आपकी लाइफ में क्या है, क्या अहमियत रखता है
1: रेडियो? मैम देखो आजकल क्या है ना, सब लोग इंटरनेट से इतना मतलब इधर उधर से गाने सुनते रहते हैं, वो चीज अलग है। हाँ। लेकिन मैम आज ये आप लोग जो होते हैं, इतना एक्सपीरियंस होता है, इतनी अच्छी बातें करते हो, इतनी जानकारी देते हो, नहीं वो चीजें थोड़ा नहीं हो पाती, अब लोग नहीं उस चीज को भूलते जा रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छे से आप इतना समझाते हो सारी चीजों को, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे रेडियो पे।
0: थैंक यू सो मच। यही चीजें हैं जो आपको खींच कर ले आती है। हाँ
1: जी, जी, लेके आते हो हमारे लिए।
0: हाँ जी बिल्कुल। आप बताइएगा आज की शाम आप कौन सा ट्रैक सुनोगी?
1: मैम मन मेरा एक करके ऐसा सॉन्ग है, टेबल नंबर 21, गजेंद्र वर्मा सिंगर है उनके, वो बहुत अच्छा लगता है। 2013 में मूवी आई थी और मैं उस टाइम TIMU में स्टूडेंट था, तो मेरी यादें काफी जुड़ी हुई है मुरादाबाद से, तो हम चाह रहे थे कि सब लोग सुने उसको, थोड़ा अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा लगेगा। या तो सुनवाते हैं ट्रैक आपको। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम।
0: मोस्ट वेलकम, गुड नाइट। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक गजेंद्र वर्मा जी की आवाज़ में। और आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं अभी राइट नाउ, नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है, आपको इस पर कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है, जो आपकी शाम को बनाएगी और भी ज़्यादा हैपनिंग खूबसूरत।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC, साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।

दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और आप सभी का फेवरेट शो लेकर मैं हाजिर हूँ, गीत आपके नाम से। दोस्तों, आप भी मुझे कार्यक्रम में कॉल लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। और इस समय क्या कर रहे हैं आप सब बताओ श्रोताओ। मुझे लगता है कि कुछ तो अंधविकार में हैं और कुछ अभी राइट नाउ कुकिंग कर रहे हैं, तो कुछ डिनर कर रहे हैं सब साथ में बैठकर, और कुछ अभी आराम से हमें सुन रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत ना शोहरत होती है ना दौलत, बस कोई ऐसा हो जो आपकी खामोशी भी समझ ले, फिर हर दिन खास लगने लगता है। तो मैं कहती हूँ, आज की शाम अगर आपको भी बेहतरीन बनानी है तो मुझे कॉल लगाइएगा। और हमारे पास एक मैम का कॉल आया था, उन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, चुनरी चुनरी। तो सुनते हैं, लौट कर आती हूँ मैं।

0: जानती हूँ मैं आपने बहुत सारे डांस कर लिया है, अब थोड़ा सा बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए। और अभी मैं आपको समय बता देती हूँ एवरीवन, वक्त हुआ है 9:49, 9:49। और हमारे साथ में एक और लिस्नर हमारे कनेक्ट हो गए हैं। हेलो।
1: हेलो मैडम।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम
0: जी। अपना शुभ नाम तो बता दीजिएगा।
1: अभी कॉल किया था ना, आप बोले एक मिनट रुको तो मैं लाइन में था।
0: नहीं तो नाम तो बताइए अपना। हे भगवान,
1: रमेश कुमार।
0: रमेश कुमार, ओके, बॉम्बे से बात कर रहे हैं। जी बताइएगा सर, बॉम्बे का मौसम कैसा है अभी राइट नाउ?
1: बारिश हो रहा है इधर।
0: अच्छा, रिमझिम बारिश हो रही है?
1: रिमझिम नहीं, एकदम अच्छा ही बारिश हो रहा है।
0: झमाझम बारिश हो रही है?
1: झमाझम 3-4 दिन से हो रही है।
0: अच्छा, तो रेगुलर बारिश हो रही है? कंटिन्यू
1: रेगुलर हो रहा है अभी 4 दिन से।
0: अच्छा, तो आज
1: पानी भरा है?
0: हाँ, बारिश जब कंटिन्यू हो रही है तो पानी तो भरना संभव है सर। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइएगा, आज संडे का दिन है और बारिश भी झमाझम हो रही है, तो आज आपने स्पेशल क्या बनाया है?
1: स्पेशल चिकन बनाया, बिरयानी।
0: अच्छा, आपको बिरयानी पसंद है?
1: हाँ,
0: ओके। अरे वाह, क्या बात है। तो बताइए आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज की शाम में?
1: राजा मूवी पे अतिया मिलाओ कभी अतिया चुराओ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। अच्छा ये बताइए, मुंबई में कहाँ से बात कर रहे हैं? ओके सर, और हमारे एफएम मुरादाबाद के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: अच्छा लगता है, रोज सुबह आपका सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा,
1: आनंद जी जाते हो सुनता हूँ सुबह।
0: हाँ जी, ओके।
1: 8 बजे आप 10 बजे के बाद में फरमाइश का आपको रहता है।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: 12 बजे तक। उसके बाद 3 बजे फिर वापस आप आती
0: है। बहुत ध्यान से रेडियो सुनते हो आप?
1: हाँ, वो ध्यान से सुनता हूँ, जब तक मुरादाबाद रेडियो सुनने लग गया ना तो दीवाना हो गया इनका।
0: ओके, चलिए ऐसे ही दीवानगी बरकरार रखिए आप।
1: रेडियो के बिना मेरा मतलब दिल नहीं लगता है।
0: हाँ, दिन की शुरुआत ही नहीं होती है जब तक रेडियो ना सुनो, ऐसा लगता है खाली खाली सा।
1: सुबह सुबह मैं लगाता हूँ आप, मतलब आप गाना आता है भक्ति गीत।
0: हाँ जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा गीत। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं रमेश जी की पसंद पर बहुत प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी राजा, और इसमें बहुत ही खूबसूरत अदाकारी ने इसे, मतलब अदाकारी हाँ बोल ही सकते हैं क्योंकि इतनी प्यारी सी अदाएँ हैं, डांस की क्वीन कहने वाली, जी हाँ कहलाई जाने वाली है माधुरी दीक्षित जी, और साथ में संजय कपूर जी की जोड़ी क्या कमाल की थी ना यार। चलिए अभी ये ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद हम आपसे फिर से बात करते हैं।

हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी ये आपने प्यारा सा ट्रैक सुना उदित नारायण साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू। देखिए, मैंने तो कोई जादू नहीं किया है दोस्तों, अब मेरे जाने का भी वक्त हो गया है और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में चाहे कितने भी मुश्किलें आए, अपने हौसलों की रोशनी कभी कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुनहरी सुबह आती है। और याद रखिए दोस्तों, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं और जो हर दिन एक छोटा सा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं। एक दिन मंजिल उसी के कदम चूमती है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, जो भी आपका सपना है उसके लिए मेहनत कीजिए। और आपका ड्रीम जरूर पूरा होगा। फिलहाल अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको सेम टाइम। जी हाँ, अब आप कह रहे होंगे सेम टाइम, अर्ली मॉर्निंग आपको मिलने वाले ना हम सुबह, टुमारो मॉर्निंग 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों के साथ रहिएगा। और अभी आप ऑन द वे अगर कार में हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सर, केयरफुली ड्राइविंग कीजिए एंड सीट बेल्ट जरूर बांध दीजिएगा। और इस समय मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो अगला गाना मैं आप सभी के लिए प्ले कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। इसी ट्रैक के साथ मैं आपसे अब जाने की अनुमति लेती हूँ। बाय बाय, नमस्ते, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड नाइट।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द की नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: कर यार, नाटक ना कर, नाच ना यार, नाच ना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्तर नाचना, भैन की सगाई च भाईनू नचना ही पैंदा है।
1: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।